0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने वाला।
1: तो तुम लोग क्या गया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: माँ कल क्या खाएंगे?
1: तुम भगवान खिलाएंगे, वही खाएंगे। खाओ।
2: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाम बता हम कहां जाएं।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

बोलो प्रेम से बोलो।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैंसी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो। और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला, जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूँ आपका दोस्त आनंद, और आज हमारे साथ हैं रीना। तो रीना, आपका स्वागत है, कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में? आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
4: बहुत अच्छा हूँ। और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको?
5: नहीं नहीं यार, मेरे को सुबह उठने में ना, सच बताऊँ, जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना।
4: मुझे भी लगता है यार, लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा।
5: बिल्कुल।
4: तो देखिए, हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है। जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है। और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जी हाँ। तो चलिए श्रोताओं, आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है। तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है। तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमें संदेश पहुंचाकर, दोस्तों 9837896896। श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधमसिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
6: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीत कर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Monsoon session of Parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of Parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill. Tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. 8 people still missing. U.S. strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
9: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
8: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
10: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
8: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi Police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, the police said that Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. President Draupadi Murmu will hold delegation-level talks with her Moldovan counterpart.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों जैसे तैसे भागते दौड़ते स्टूडियो पहुंचा हूं आपसे मिलने। झमाझम बारिश जो हो रही है बाहर। सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ एक नई ब्रांड न्यू मॉर्निंग मंडे की सुबह। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों आज की सुबह बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ बता रही है। देखिए बाहर झमाझम बारिश हो रही है और मौसम ने पूरे शहर को एक खूबसूरत सी ठंडक में लपेट लिया है। याद रखिए, बारिश सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि मन की थकान को भी मिटा देती है। इसलिए आज की शुरुआत मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि हर बरसात की बूंद एक उम्मीद लेकर आती है। हैप्पी मंडे मॉर्निंग। और बारिश हमें सिखाती है कि आसमान कितना भी बरसे उसके बाद धूप जरूर निकलती है। इसलिए मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए। श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट आनंद और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, जिसे मैंने आपको बता दिया है एक नए सफर पर आपको लेकर चलेंगे। 20 जुलाई की तारीख है आज, मात्र 10 दिन बचे हुए हैं इस दिन को भी जाने में, यानी कि इस जुलाई को भी जाने में अगर मैं बात करूँ तो श्रोताओं देखिए मंडे का दिन है, यानी कि आपको मंडे ब्लूज तो बिल्कुल नहीं होंगे। ऑफकोर्स संडे के बाद जब एक मंडे आता है ना तो फीलिंग थोड़ी सी टायर्ड होती है कि यार कितनी जल्दी वीकेंड चला गया और इतनी जल्दी फिर से मंडे आ गया। लेकिन मंडे मेरी और आपकी दाल रोटी का दिन तो होता है ना, तो मंडे को थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ लीजिए। देखिए जहां छोटे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं अपने मम्मी के साथ पापा के साथ स्कूटी पे बाइक पे छाता लगा लगा के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, हैंड्स ऑफ है उन माता पिता को जो इतनी बारिश में भी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल अपने बच्चों को ले जाने के लिए तैयार होते हैं, तैयार बैठे रहते हैं चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल तक जरूर पहुंचाते हैं। मैंने तो सुबह ही देखा एक अंकल साइकिल पे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो आप यकीन मानिए मन देख के बड़ा खुश भी हुआ कि देखिए ये होती है माता पिता की असली, जो ये कहते हैं ना कि अपनी तरफ से आप कितना अच्छा कर रहे हो। एक सिर्फ पेरेंट्स ही हैं आज की दुनिया में जो आपके लिए इतना अच्छा सोच सकते हैं। श्रोताओं फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ। और ऑफकोर्स दिन इतना खूबसूरत है, मौसम इतना खूबसूरत है, तो यार गाने भी खूबसूरत होने चाहिए ना आज की सुबह। फिलहाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की मॉर्निंग अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं 9837896896 पे। बहुत ही गोल्डन वॉइस वाला ट्रैक, ओल्ड वर्जन आपके लिए प्ले कर रहा हूँ किशोर कुमार की आवाज। I love this track. मौसम इतना खूबसूरत है तो ये गाना भी होना चाहिए। मेरे पास such an amazing track. इस गाने के साथ करेंगे आज की किक स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग, आनंद विद यू। मंडे की सुबह है, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग बोलते हुए आगे बढ़ेंगे।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाजों में बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। एंड आज की सुबह आनंद आपके साथ है। ढेर सारे मैसेज आप लोगों ने सुबह सुबह कर दिए हैं। 8:36 हो रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग है। ढेर सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंचे हैं, खूब सारी पॉजिटिविटी आप लोग हम तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेज पहुंचाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग मेरी यानी आरजे आनंद के साथ। अच्छा, ऐसे ना मजा नहीं आता, एक बार जरा बोल के सुना दो यार। देखो मजा, मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज में ना, हर चीज की वाइब और फील दोनों अलग होती है। जैसे कि मैडम की भी यस, मैं बात कर रहा हूँ शिखा मैडम की। सुबह सुबह जुड़ चुकी है, लिखती हैं, हाय आनंद जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह सुबह बारिश करा दी है आपने। देखिए मैम, बारिश जो है वो कल से ही लगातार बनी हुई है, बूंदा बांदी तो हो ही रही है। मौसम सुहाना हो रहा है, बहुत ही औसम वाला मौसम हो रहा है। ब्रेकफास्ट में अगर आप पकौड़े बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना रहे हैं, कुछ भी आप बढ़िया सा बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसको एंजॉय कीजिए इस बारिश के मौसम में। और इस बारिश के मौसम में थोड़ा सा आपको सतर्क और सावधान भी रहना है दोस्तों। सुबह सुबह का समय है तो हम कोशिश करेंगे हम चारों तरफ की पॉजिटिविटी, चारों तरफ की ऊर्जाएं जो इस ब्रह्मांड से निकल रही हैं आज सुबह सुबह, जी जो ताजगी है, जो पॉजिटिविटी है, वो सब कुछ मैं आपकी झोली में डालने के लिए आ गया हूं आपके रेडियो सेट के माध्यम से। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आती हैं। अगर इंसान को ये जीवन दिया गया है ऊपर वाले के द्वारा, उस अल्लाह वाहेगुरु खुदा ईश्वर के द्वारा ये जो हमें जन्म दिया गया है, हम एक इंसानी रूप में आए हैं, तो ऑफकोर्स हमें सिर्फ खुशियां ही थोड़ी मिलेंगी, थोड़े थोड़े गम, थोड़े थोड़े दुख, सब चीज़ों का जो है, जैसा हर एक मौसम का मजा होता है ना, बरसात, धूप, गर्मी, हर एक मौसम का अलग मिजाज है। वैसे ही हर एक सिचुएशन में जो है हमें खुद को कहीं ना कहीं, वो जो एक कहते हैं ना कि जब आप एक पॉजिटिविटी के साथ गुजरते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। जब आप गम के दौर से गुजरते हैं उसकी फील अलग होती है, जब आप दुखों के पहाड़ों से गुजरते हैं उसका जो एहसास है वो बहुत अलग होता है। तो हर एक मौसम का और हर एक प्रॉब्लम का ना अलग ही जो है आप कह सकते हैं एहसास है। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स के बाद जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आती हैं। श्रोताओं, जैसे हमारे पास ढेर सारे संदेश आप लोगों के पहुंचे हैं, ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है इस वक्त। गुड मॉर्निंग आनंद जी, सुप्रभात, हम सुबह सुबह आपको सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड आप जब रेडियो पर आते हैं तो मॉर्निंग सबके बिंदास बनाते हैं। जी थैंक यू सो मच। और ये मैसेज हमें पहुंचाया है रोहन जी ने, सूर्यनगर से मेरे पास मैसेज आ रहा है। यहाँ पर प्रीति जी का लिखती है, आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह सुबह का दिन है, जय भोलेनाथ, और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, हर हर महादेव। जी आपको भी हर हर महादेव। किसी ने मुझे लिखा है, आनंद जी बिल्कुल सावन वाली फील आ रही है, एकदम से मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मौसम बहुत ही औसम है, और साथ ही साथ आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है। रेवा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे इस वक्त। और इसी बीच एक और संदेश मेरे पास पहुंच चुका है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी एफएम मुरादाबाद सुनने वाले श्रोताओं को इतना ही कहना चाहूंगी कि आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। जैसे ये भीनी भीनी बारिश जो है हमारे मन को खुशी से भर देती है, वैसे ही आरजे आनंद आपका प्रोग्राम और आपकी बातें हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती हैं। अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी ये खूबसूरत सा मैसेज साझा करने के लिए।

हमारे पास ढेर सारे संदेश आ रहे हैं। 8:40 हो गए हैं और आज जो है 20 जुलाई का दिन है और 20 जुलाई का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा खास है। श्रोता हूँ आपको बता दें, 1969 में आज ही इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। जी हाँ, एंड आज ही के दिन इतिहास रचा गया था। आज ही के दिन अपने आप में आज का दिन बहुत ही खास है। आज 20 जुलाई को दुनिया भर में इंटरनेशनल मून डे भी मनाया जाता है ताकि अंतरिक्ष विज्ञान और मानव उपलब्धियों का जश्न सेलिब्रेट किया जा सके। श्रोताओं, आज का दिन और भी तमाम सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। एंड दोस्तों, मैं अभी बता रहा था आज 20 जुलाई है जैसे कि आपको पता है, और आज का दिन 1969 में इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था एंड चांद पर कदम रखकर ही इतिहास रचा था। सो ये आज का दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो आसमान ही नहीं चांद पर भी मंजिल बन सकती है। मेरे दोस्त, थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कौन कौन से महान कलाकार हैं जो आज के दिन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, जिनका बर्थडे हम आज सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। मिस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप सुन रहे हैं आनंद को, जहाँ बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। और श्रोताओं, आप भी अपने प्यारे प्यारे संदेश मुझ तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर। आने वाला बेहतरीन सा ट्रैक फ्रॉम द फिल्म सिर्फ तुम से निकल गया है आपकी रेडियो सेट पर, उदित नारायण की बहुत ही अमेजिंग आवाज। और ये सुबह सुबह सुन रहे हैं आप आरजे आनंद की आवाज, जो आपकी मॉर्निंग को बना रही है और भी सुपर डुपर लाउड एंड अमेजिंग। ये गाना आपको ताजगी से भर देगा और आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर लेकर आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत है, रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा के एंजॉय कीजिए और कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग एंड आई लव दिस मूवी. इतनी बढ़िया मूवी थी, इतने बढ़िया गाने इस पिक्चर के. आप सभी का स्वागत अभिनंदन. 8:55 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को. ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंचे हैं.

बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों इतने सारे और इतने सुंदर मैसेज करने के लिए। और मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कुछ अच्छा शेयर करना चाहते हैं आज की सुबह, कोई विचार है, कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि रेडियो के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जन जन तक पहुँचनी चाहिए, तो बिल्कुल आप पहुँचा सकते हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। इस वक्त हमारे स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 8:56:12। श्रोताओं, दिन है आज बहुत ही खूबसूरत, यानी आज सोमवार का दिन है। हर हर महादेव, प्रभु का नाम लेकर कीजिए ना अपने दिन की शुरुआत। आप सुन रहे हैं आनंद को, और इस वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए बारिश लगातार बनी हुई है, तो ऐसे में आप अगर वाहन चला रहे हैं तो ज़रा संभल के चलाएं। रोड के आसपास ढेर सारे लोग हैं जो अपने काम के लिए निकलते हैं, कुछ लोग पैदल भी चलते हैं, तो कोशिश करिए कि भैया उनके ऊपर छींटा छाटी ना हो, क्योंकि कुछ लोग गाड़ी को ऐसे भगाते हैं पानी में जैसे पता नहीं वो क्या हवा में कोई पतंग उड़ा रहे हैं। तो गाड़ी आप चला रहे हैं जरा आराम से चलाइए, है ना। श्रोताओं, और बताते हैं आपको आज का दिन क्यों खास है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन आज के दिन जन्मे कुछ खास कलाकार हैं जिनकी वजह से ये दिन और ये तारीख अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, इस तारीख के मायने बदल जाते हैं। श्रोताओं, तो दोस्तों आपको बताते चलें आज के दिन के बारे में। तो आज जन्म हुआ था एक ऐसे ही खूबसूरत नाम का जिसके बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगा। यस, आज ही के दिन 1929 में राजेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता हैं। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, अगर हम बात करें एक और ऐसे ही जाने माने नाम की, तो इनका नाम है नसरुद्दीन शाह। इनका जन्म हुआ था सन 1950 में आज ही के दिन। भारतीय सिनेमा के वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी वेरी अमेजिंग बॉलीवुड एक्टर, एंड इनके गाने और इनकी जो एक्टिंग है बहुत ही नेचुरल एक्टिंग ये करते हैं, मतलब इतना मन को आकर्षित करती है। जब आप इनकी फिल्में देखेंगे, इतनी इनकी फिल्में तमाम सारी हैं, मैं मतलब बात करूंगा अगर सरफरोश मूवी की, तो इसमें इन्होंने क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी नसरुद्दीन शाह जी ने। और मैं आपको बताऊं तो नसरुद्दीन शाह अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, और उनको देखकर भी ऐसा लगता है जैसे वो किसी एक रियल इंसान की स्टोरी जो है सुना रहे हैं, मतलब रियल इंसान की स्टोरी वाली एक्टिंग, मतलब इतनी नेचुरल, जेन्युइन जो है उनकी एक्टिंग होती है, देखकर मन खुश हो जाता है। तो हमारे एफएम मुरादाबाद के पूरे लिसनर्स परिवार की ओर से, एफएम मुरादाबाद परिवार की ओर से नसरुद्दीन शाह को उनके जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। श्रोताओं, 20 जुलाई सन 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इनका जन्म हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं। बात करें इनको पुरस्कारों की, तो पुरस्कारों में इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से जो है 3 बार इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। श्रोताओं, तो काफ़ी ज़्यादा जाने माने पॉपुलर एक्टर जो रहे हैं नसरुद्दीन शाह, और ऑफ कोर्स आज का दिन जो है ये अपने आप में ही खास है। आज का दिन नसरुद्दीन शाह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से। श्रोताओं, अगर आज की तारीख में आपका भी बर्थडे होता है तो आपको भी जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं आनंद को। तीसरे घंटे में, यानी कि सॉरी, अगले आर में हम प्रवेश करेंगे 9 बजे वाले में, जो हमारा लास्ट आर होगा। तो आपको भी जो है यही कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आगे भी जुड़े रहिएगा, आपको और भी ढेर सारी जानकारियाँ जो हैं मिलती रहेंगी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत, और आपको तमाम सारी और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आसपास में क्या चल रहा है ये सब कुछ आपको बताएंगे। मुरादाबाद में क्या चल रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आने वाला एक बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाजों में। एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। मंडे की सुबह एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

वेरी गुड मॉर्निंग है, दिस इज माय लास्ट। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, दिल की बाहों से स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9:06 हो रहे हैं, कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी निकल जाती हैं जुबान से कि मतलब जैसे हमारी स्क्रिप्ट में नहीं था और फिर भी जो है हमने मतलब बोल ही दिया। वेरी गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल ऑफकोर्स आप बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं। 9:06 हो गए और एक बार फिर से आपको बताते चलें, देश भर में मानसून एक बार फिर से जो है विकराल रूप लेने को बताया जा रहा है, भैया तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें मौसम विभाग ने 22 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर सहित कई सारे ऐसे राज्यों में जो है बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। स्पेशली उत्तर प्रदेश में भी बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ समय के साथ मध्यम बारिश होती रहेगी और हवाएं भी जो है काफी तेज रफ्तार में चलने की संभावनाएं हैं और ऐसे में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बता दें आपको, अपने जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार में भी भारी बारिश तथा आंधी तूफान का भी खतरा जो है बताया गया है, इसका भी अलर्ट जारी किया गया है। बाकी इसके अलावा जम्मू कश्मीर और भी तमाम सारे अलग अलग राज्यों में जो है राजस्थान, MP, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में जो है बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को जो है मतलब सुरक्षा की जो है सलाह दी कि आप लोग सुरक्षित रहें और जब ज्यादा बारिश हो तो जो लोग आसपास नदी के आसपास रहते हैं, जो लोग गंगा वगैरह के आसपास रहते हैं स्पेशली, उनको तो बहुत खास करके जो है सलाह दी गई है कि आप ज्यादा तेज वाली बारिश में घर से बाहर ना निकलें। बाकी मौसम की कड़क अपडेट के लिए ऐसे स्टे ट्यून रहे आनंद के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यह है आपके शहर का अपना देसी रेडियो, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर आप होते हैं, हम होते हैं और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। श्रोताओं, अभी हमारे पास ढेर सारे संदेश भी पहुंचे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सुचारिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, साथ में अपूर्वा का मैसेज पहुंचा है। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आई होप आप भी अच्छे होंगे। श्रोताओं, आपको बता दें पहाड़ जो इस वक्त पहाड़ी इलाके हैं वहां पर रेड वार्निंग लगा दी गई है, यानी कि कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूं, देहरादून, हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में जो लोग पहाड़ों पर इस वक्त घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है अभी थोड़े टाइम के लिए रोक लग सकती है, क्योंकि ऐसे में जो है खतरा काफी बना रहता है। इसी वजह से जो है चेतावनी जारी की जा रही है कि भैया जितने भी आसपास के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभी कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपकी मतलब जो लोग ट्रैवल जो लोग करने आते हैं, जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, हो सकता है वहां पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको और भी तमाम अपडेट है जो समय के साथ देते रहेंगे। आगे आगे एशिया कप 2027 का शेड्यूल जारी हो गया, 18 जून से इसका आगाज होगा। आप सभी को एक हैप्पी वाली मॉर्निंग, ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है। जिंदगी में ईमानदार वही लोग बन पाते हैं जो सबके लिए अच्छा और बढ़िया सोचते हैं। क्या बात है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे यू नो मेरे को मैसेज करते रहा करो, मेरे को अच्छा लगता है यार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मुरादाबाद में क्या चल रहा है मैं इसके बारे में डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। नशरुद्दीन शाह का बर्थडे है, उन्हीं की फिल्म का एक गाना निकाल रहा हूँ आपके रेडियो सेट पे, बहुत ही बढ़िया गाना है और इसको सुनिए, इश्किया का एक गाना, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, सुखविंदर सिंह और मीका सिंह की आवाजों में बहुत ही प्यारा गाना है, गुलजार साहब ने लिखा है, विशाल भारद्वाज का म्यूजिक है, बहुत ही प्यारा ट्रैक। अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: तुमकी पुलिस को पता है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉल को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: प्यार में बिलीव करती हूँ, बस प्यार में बनने में बिलीव नहीं करती। जो जब तक है तब तक

0: सच अमेजिंग सॉन्ग यार, कॉकटेल टू का ये गाना माशू का बहुत ही प्यारा गाना, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम से लेके रेडियो तक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वेलकम बैक वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद। हेलो जी, कैसे हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना यार? देखो बढ़िया ही चलना चाहिए, हमारी तो बेस्ट विशेष आपके साथ है। बाबूजी क्या मैसेज किए हैं लोगों ने मुझे, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार, इतने प्यारे मैसेज देख के मजा आ जाता है। अच्छा चलो मुझे बताओ, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपके साथ, फिर देखता हूँ कितने लोग दिमाग लगाएंगे। सुबह 10 से 12 आपको खूब सारी बातें बताती है, ढेर सारी आपके चेहरे पर खुशियां लेकर आती है, 3 से 5 आपके गाने बजाती है, हेलो फरमाइश में आपका खूब एंटरटेनमेंट करती है और आपकी सुबह से लेकर दोपहर तक दोनों को बहुत ही स्पेशल बनाती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जरा बताओ। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ढेर सारी बातचीत जो है लगातार हमारे साथ चल रही है और आप इसमें हमारे साथ शामिल हैं, ढेर सारी संदेश आपके लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं, जैसे कि ये भूपी जी की वॉइस नोट आ गई है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: राधे राधे जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत
1: आशा करते हैं अच्छे होंगे।
0: हाँ जी,
1: आज की बारिश, आज के मौसम की आपको शुभकामनाएं। एक बात हमेशा याद रखना, एक समय के बाद सुंदरता नहीं बल्कि संस्कार और मर्यादा आकर्षित करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से एक नई सुबह हमारा स्वागत कर रही है। रात की अच्छी नींद और सुखद सपनों के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पास पर्याप्त भोजन है, स्वच्छ पानी है, पहनने को सुंदर वस्त्र हैं, आने जाने के लिए वाहन हैं, जेब में पर्याप्त पैसे हैं। इस सब के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, मैं आपका दोस्त रूपी शर्मा, नगर पंचायत पाकबरासी। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद, जिसको बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है और मुस्कुराना पड़ता है। भेजते रहिए अच्छे अच्छे वॉइस नोट, अच्छे अच्छे मैसेज, नंबर 98-378-96-896। जी हाँ, यही नंबर आपको मिलाएगा, आपको अपने लोगों से, अपने मित्रों से, आपकी आवाज़ के जरिए, और यही मैसेज आपके पहुंचेंगे सारे देश में, सारे संसार में। राधे राधे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी।
2: आनंद भाई गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग
2: बिंदास मॉर्निंग।
0: हाँ जी,
2: मैं भी जुड़ गया हूँ।
0: अरे वाह,
2: मौसम अंसारी बनारस से।
0: अरे वाह क्या बात है।
2: एफएम मुरादाबाद।
0: हाँ जी,
2: जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
0: अरे वाह,
2: और बेहद पसंद आता है जब इतने अच्छे अच्छे सुबह गाने आते हैं तो सुन के मूड फ्रेश हो जाता है।
0: अरे वाह,
2: और आनंद भाई का अंदाज ही लाजवाब है प्रोग्राम पेश करने का, तो दिल से धन्यवाद आनंद भाई आपको। मैं मौसम अंसारी बनारस से, मैं भी ड्यूटी पे निकल चुका हूँ और साथ में प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ, और मेरे यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा है और सुबह का मौसम और नज़ारा देखने लायक है बनारस का।
0: थैंक यू सो मच। सुबह सुबह बनारस से लोग जुड़ गए हैं, मुरादाबाद से लोग जुड़ गए हैं, और क्या चाहिए यार। और एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग, हैदराबाद से आपको सुन रहे हैं, नमस्ते, हाय माय नेम इज प्रकाश। हाय प्रकाश, गुड मॉर्निंग, हैदराबाद से आप जुड़ गए हो यार, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ही अमेजिंग मैसेज करते हो यार। आने वाला गाना जो आपको बनाएगा और भी दीवाना, दिस इज वेरी वेरी फैबुलस ट्रैक राइट हियर, बिजली का मंडोला से निकाल रहा हूँ ये गाना, बहुत प्यारा गाना है। इस गाने को रेखा भारद्वाज ने गाया है।

0: नहीं यार, मैंने दिल की बाजी बिल्कुल नहीं मारी है। आने वाला गाना जरा सी देर में आपकी रेडियो पर पहुंचेगा, आप कहीं मत जाइए। 10 से 12 आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देती है, 3 से 5 आपके गाने बजाती है। किसकी बात कर रहा हूँ बताओ जरा?
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: नीरज श्रीधर के बाद साथ में नीति दे रही थी साथ, बहुत ही बढ़िया गाना भी आपने सुना। और भैया ये जो आवाज सुन रहे हैं ना आप, ये आनंद की आवाज है। वेरी गुड मॉर्निंग है आप सभी का, स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है 89.6 और शो चल रहा है सच अमेजिंग एंड फैबुलस मैसेज। बहुत बहुत थैंक यू, ढेर सारे वॉइस नोट आपके लगातार मुझ तक आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस के साथ साथ ढेर सारी बातें आप लोग मुझ तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहता हूं यार। और इतने आउटस्टैंडिंग वाले मैसेज,
1: चार दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वो लोगों के लिए बहुत अहम है, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश ना जमाना बदला, ना रुकी वक्त की गर्दिश ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कुलदीप गुप्ता धौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: थैंक यू सो मच। कुलदीप जी जुड़ चुके हैं धौली बाराबंकी लखनऊ से मेरे साथ। देखिए ना, हमारे साथ सिर्फ मुरादाबाद से नहीं, हमारे आसपास के एरिया से भी लोग जुड़ते हैं, देश भर से जो है हमारे साथ, हमारे प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़ते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी होती है कि तमाम लोग हमारे साथ जो है रेडियो के माध्यम से जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। ढेर सारे लोगों ने आरजी खुशी को बर्थडे विश किया है, हैप्पी बर्थडे आरजी खुशी, हमारी तरफ से खुशी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऑफ कोर्स उसका शो थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तो आप खुशी को ही सारी ब्लेसिंग्स पहुंचाइएगा, बाकी कोई नहीं, आप मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं, मैं खुशी को आपके सारी मैसेजेस पहुंचा दूंगा। विकी सागर जुड़े रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग, एंड साथ में आरजी खुशी को ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आरजी खुशी, आरजी आनंद मेरी तरफ से खुशी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू विकी भाई, रेडियो की खुशी को इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए उसके बर्थडे पे। हाय गुड मॉर्निंग, खुशी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आरजे खुशी। थैंक यू सो मच। एक मैसेज और आ गया है, आज रेडियो की खुशी यानी आरजे खुशी का बर्थडे है, तो आरजे आनंद हमारी तरफ से आरजे खुशी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच यार इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, आप लोग कितने प्यारे हो, सच ही माइंड ब्लोइंग, सारे लोग बहुत प्यारे हैं। एक आपसे पहेली पूछने वाला हूँ, फटाफट इसका आंसर करिएगा, बहुत सिंपल पहेली है, आपके दिमाग का 32 गुल मीटर चालू करने के लिए लेकर आया हूँ। दिमाग के घोड़े दौड़ाने का टाइम है, कसरत कराना बहुत जरूरी है। तो बताइए वो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा वो कौन सा काम है जो इंसान हमेशा दूसरों को देखकर ही करता है। इसका मैसेज जो है आप मुझे करके बताइएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से सवाल मेरा, बेसिकली एक ये छोटी सी पहेली है या एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि वो ऐसा कौन सा काम है जो इंसान हमेशा दूसरों को देखकर करता है। क्या लगता है आपको, जरूर मुझे व्हाट्सएप करिएगा अपने नाम के साथ अपना जवाब 9837896896 पे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन, वो ऐसा कौन सा काम है जो इंसान हमेशा दूसरों को देखकर करता है। अगर आपको पता है इसका जवाब तो मुझे मैसेज करो ना यार। बाकी जो लोग खुशी को बर्थडे विश कर रहे हैं उनको ढेर सारी दिल से थैंक यू सो मच वाली वाइब, आई मीन थैंक यू यार, दिल से थैंक यू, वड्डा वाला थैंक यू। चलो जी, मंडे मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं आनंद को, जहां भी आप निकल चुके हैं ऑल द वे बेस्ट। बारिश हो रही है ना बाहर, एंजॉय करते रहो, नहीं भी हो रही तो मौसम अच्छा हो रहा है यार। मैं जरा मौसम चेक करके आता हूँ, आप ही

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: यार मुझे नहीं पता प्यार कितनी बार होता है, मुझे तो कभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ मुझे आप लोगों से प्यार है और आपको भी मेरे से प्यार है। वेरी गुड, इसी बात पे फिर तो गुड मॉर्निंग मंडे की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद की। एंड ऑफकोर्स हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर होती हैं, हमारे साथ डॉक्टर राखी जी होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ी सी कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही है। एंड एवरी मंडे आप सुनते हैं चेक योर लक विद डॉक्टर राखी। मैं ट्राई करूंगा, अभी 10 बजने में टाइम है कि मैं उनको जल्दी से लेकर आऊं और किसी दो लक्की कॉलर को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूँ। अर्चना का मुझे लखनऊ से कॉल आया, एंड अर्चना शी इज़ वेरी एक्साइटेड, एंड वो मुझे इंस्टाग्राम से देख के उसने मेरा नंबर रेडियो का निकाल के मुझे कॉल किया, एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एंड वो मुझे वहाँ लखनऊ में बैठ के अभी सुन रही। तो अर्चना थैंक यू सो मच हमारा शो सुनने की, आप लखनऊ में बैठ के हमें सुन रही, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। एवरीबडी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मैंने एक पहली आपसे पूछी थी, आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं यार, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच। अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। आपको बता दी भाई साहब, मुर्गियों की तो है डाइट थोड़ी महंगी होगी, जिसकी वजह से अंडों के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। अगर आप रोज अंडे शंडे खाते हैं तो भैया आपके लिए खबर थोड़ी सी यू नो ऐसी वाली हो सकती है। क्या क्या वो वाली? हाँ जी, तो देश भर में अंडों की कीमतों को जो है बताया जा रहा है कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसमें, यानी कि बढ़ रहे हैं, एंड कई जगहों पर तो अब अंडा जो है और भी ज्यादा महंगा हो गया, यानी कि अब 9 रुपये तक में जो है एक अंडा मिल रहा है, एंड इसकी जो बाकी और चीजें हैं जो लोग एग से बनती हैं वो और ज्यादा महंगी हो गई हैं। एंड बताया जा रहा है कि जुलाई की आखिर से जो है कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। तो भैया जो लोग ये अंडे शंडे खाते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल, चलो भाई बता देते हैं कि थोड़ी सी महंगी शहंगी होगी भैया डाइट आप लोगों की। हाँ, जो लोग जिम शिम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा यू नो रहता है भाई कि हाँ अभी अपन आ रहे हैं तो अपन को ये चीज़ लेनी है। आपको बता दें भाई साहब, वंदे मातरम जो हाँ जी जो वंदे मातरम है उसकी तैयारियाँ होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपको पता है ना इंडिपेंडेंस डे आने वाला है वेरी वेरी सून। और बाकी RBI ने जो ये शुरू किया है, अभी बताया जा रहा है कि एक नया फैसला आने वाला है जिसकी शुरुआत जो है अब होने वाली है, और शुरुआत में 10 और 20 के नोटों से जो है ओपनिंग हो सकती है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भारत में जल्द ही एक ऐसे नोट छापने की तैयारी हो गई है जो ना कभी भीग सकता है ना कभी ख़राब हो सकता है, एक बहुत ही अलग तरीके का नोट जो है आने वाला है अपने इंडिया के अंदर। इसकी शुरुआत 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों से हो सकती है। ये जो प्लास्टिक के नोट की बात कर रहा हूँ यार, और इसकी शुरुआत अगर होगी तो वो 10 रुपये और 20 रुपये के नोट से ही होगी। ये वाले नोट आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे अपने इंडिया में। भैया अगर घर पर अचानक से मेहमान आ गए और सिलेंडर खत्म हो गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना गैस सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने आपको ये पहले लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि भैया अगर आप जो है सिलेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आप टेंशन में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि अब जो है LPG सिलेंडर डिलीवरी की सर्विस जो है वो शुरू हो गई है। और ख़ास बात यह कि अब आपको कनेक्शन की भी नीड नहीं पड़ेगी, आप 5 किलो 10 किलो वाला सिलेंडर भी जो है ऑनलाइन अपने घर पर मंगवा सकते हैं। 2027 के वनडे विश्व कप में जो है अब ये बताया जा रहा है कि महामुकाबला होने वाला है, और इस बार जो है बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है भैया कि अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक हल्का सा डाउन हुआ है, जिसकी वजह से तमाम यूज़र्स को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चलाते हुए। अगर आपका भी इंस्टा या फेसबुक थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है तो समझ लीजिए सर्वर थोड़ा डाउन हो चुका है। तो ये कुछ कड़क अपडेट मैंने आपको फटाफट से बता दी है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। हमारी तो भैया कोशिश होती है कि हम आपको फटाफट से वो सारी इन्फॉर्मेशन से रूबरू करा सकें जो कहीं ना कहीं देश भर में चल रही हैं। अब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे मुरादाबाद में क्या चल रहा है, इमीडिएटली मैं आपको बताता हूँ। एंड अभी एक कड़क सवाल भी होगा जिसका जवाब देकर आप बनेंगे आज की सुबह मेरे शो के सुपरस्टार। एंड अभी हमारे साथ अलका वर्मा जी जुड़ी है, इन्होंने एक वॉइस नोट साझा किया है, जरा सुनते हैं ये क्या पहुंचाती है।
1: राधे राधे। राधे राधे आनंद जी, आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है। आनंद जी आज आरजे खुशी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से उसको विश कर दीजिएगा। और मैं यही कहना चाहूंगी, खुशी हमेशा खुश रहो, अपना माता पिता का नाम खूब आगे बढ़ाओ बेटा, खूब तरक्की करो, भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशी।
0: थैंक यू सो मच अलका जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स, मजा आ गया, इतनी प्यारी दुआएं सुबह सुबह अगर आप लोग दोगे तो ऑफकोर्स सबकी मॉर्निंग जो है झकास हो ही जाएगी ना चाहते हुए भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा से गाना आपके लिए निकाल रहा हूँ आज की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, मंडे की सुबह है। ऑफकोर्स अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो फटाफट मुझे मैसेज करो ना यार, इतना क्यों सोच रहे हो। 9837896896 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आने वाला गाना झिंगाच, धड़क का ट्रैक। सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा गाना है, गुड मॉर्निंग।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
6: लेकिन सोनिया
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
6: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: लहंगा।
1: हाय हाय भैया जी, डिमांड लेकर आ गए। भाई मुझे नहीं पता पैसे कितने लेके जाने हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दो यार। मैं बहुत ही सिंपल सवाल लेकर आया हूँ आज की सुबह आपके लिए। अगर आप मुझे इसका जवाब पहुंचाओगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। एंड आज का सवाल बहुत सिंपल है यार, बस आपको क्या करना है, आपको मेरे को ये डायलॉग बताना है। डायलॉग जो भी मैं प्ले कर रहा हूँ, ये डायलॉग बेसिकली कौन सी फिल्म का है। ओके ठीक है, डन। सो 3-2-1 को स्टार्ट। ये रहा मेरा आज का डायलॉग, आप पकड़ो, बताओ कौन सी फिल्म का है।
2: इस कुत्ते को मार, कुत्ते को मार, अक्षय कुमार।
3: कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
1: आप मेरे को मैसेज करके बताइएगा अभी जो आपने डायलॉग सुनाया हो, कौन सा फिल्म का डायलॉग है। जो आपके रेडियो पर सुनाई दे रहा है आपको, कौन सी फिल्म का डायलॉग है। आपको उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, कौन सा है ये डायलॉग, आई मीन डायलॉग कौन सी फिल्म का है। कभी कभी मेरी भी जुबान फिसल जाती है यार, समय के साथ ना मैं ज्यादा हो जाता हूँ ओवर एक्साइटेड। एनीवेज बैक टू पॉइंट, आपको बताना है अभी जो डायलॉग प्ले कर रहा है आनंद वो कौन सी फिल्म का है, विच मूवी ये जो डायलॉग है वो कौन सी फिल्म का है, आपको बताना है मुझे। अगेन रिपीट कर देता
2: हूँ, कुत्ते को मार, कुत्ते को मार, अक्षय कुमार।
3: कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
1: व्हाट्सएप करके मुझे बताएं जरा अभी आपने जो डायलॉग सुना है वो कौन सी फिल्म का डायलॉग है जो अभी आपने सुना, जो इस वक्त आरजी आनंद आपसे सवाल पूछ रहा है वही आपको मुझे आंसर करना है। अपना नाम, अपने शहर का नाम, विच सिटी एंड अपना करेक्ट आंसर, उसको जल्दी से सेंड करो 9837896896 पे। व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो।

0: एक्शन। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं आनंद को, एंड अभी आपने बहुत अच्छा गाना सुना है। आज 20 जुलाई 2026 यानी 20 जुलाई मंडे मॉर्निंग है, और ऑफ कोर्स यहां पर आनंद आपके साथ रेडियो पे है। ढेर सारी बातें जो है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या चल रहा है आपके दाएं बाएं, पूरी कोशिश होती है। हाय मॉर्निंग, आज नेशनल मून डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि चांद वाला दिन आज मनाया जाता है। 20 जुलाई है, अपने आप में बहुत स्पेशल दिन जो है सेलिब्रेट होते हैं। आज फ्रेंड्स डे मनाया जाता है, यानी कि दोस्तों के साथ रहने वाला दिन आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आज नेशनल लॉलीपॉप डे मनाया जाता है। यू नो, बचपन में बहुत ज्यादा खाए होंगे ऑफकोर्स आपने, मैंने भी खाए यार, बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। तो आज नेशनल लॉलीपॉप डे मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड जंपिंग डे आज मनाया जाता है। जो लोग आसमान में कूदते हुए सेल्फी सेलिब्रेट करते हैं, खींचते हैं, अपलोड करते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जो बहुत अच्छी जंपिंग करते हैं, उनके लिए आज का ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आज वर्ल्ड जंपिंग डे जो है एकदम वो जंप जंप जंप करने वाला दिन होता है। जंपिंग करते हैं, जंप कर रहे हैं अपन, जो दगड़ा वाला जंप करते हैं ना, उनके लिए आज का ये दिन है। एंड इसके अलावा आज और क्या सेलिब्रेट किया जाता है, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। डन टन कुछ और स्पेशल दिख नहीं रहा यार। हाँ, आज ग्लोबल हग योर किड्स डे, यानी अपने बच्चों को गले लगाने का दिन आज मनाया जाता है। कितने सारे डेज जो है हर दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब इतने डेज कि शायद मैं उनके बारे में बताऊंगा तो मेरा टाइम ही कम पड़ जाएगा दोस्तों। मतलब इतने सारे दिवस जो है हर दिन मनाए जाते हैं। कैन यू इमेजिन यार कि कितनी सारी चीजें एक साथ चलती हैं। फिलहाल यहाँ पर सुबह के 10 बज चुके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, आप निकल चुके हैं ना मॉर्निंग शिफ्ट पे, ऑल द वेरी बेस्ट। आप चाहे डेली रोड हो या कार रोड या हो स्टेशन रोड या हो, आप कोई सी भी रोड पे हो यार, आप जिधर भी हो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एंड ऐसे ही आप मुस्कुराते हुए और एंड फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ ऑफिस पहुंचते रहिए। सो हे, हाय, गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हाल चाल है। एक वॉइस नोट ढेर सारे आ रहे हैं मेरे पास। पल्लवी जी ने एक बड़ा सुंदर वॉइस नोट भेजा है, मैं डेफिनेटली उसको प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा जल्दी से प्ले करता हूँ आज का डायलॉग। आई मीन टू से आज का मेरा कड़क क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ जरा ये जो डायलॉग है वो कौन सी फिल्म से है। बाजी बोलो।
1: इस कुत्ते को मार, कुत्ते को मार, अक्षय कुमार, कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
0: कौन सी फिल्म से डायलॉग फटाफट से आप मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे 9837896896 पर, आप देंगे राइट आंसर तो हम आपको देंगे राइट वाला यहाँ पर एक टैग। अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपना नंबर 9837896896, ये नंबर है जिसपे आपको मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है फटाफट से मेरे सवाल का राइट आंसर। ठीक है जी, अभी लौट के आता हूँ, उसके बाद ये वॉइस नोट भी प्ले करूंगा और एक लकी कॉलर को भी शॉर्टलिस्ट करूंगा जो होगा आज की हमारी मॉर्निंग शो का लकी कॉलर। हो सकता है वो कॉलर आप बन जाए। अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया है तो फटाफट मुझे आप जो है व्हाट्सएप तो कर ही दो, और कर दिया है तो फोन के थोड़ा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ फोन के। फिर ऐसा होता है ना, हम आपको फोन करते हैं, आप उठाते नहीं हो, पता चल रहा है आप नहाने चले जाते हो, कुछ लोग ब्रेकफास्ट बनाने चले जाते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता यार। हम टाइम निकाल के फोन करते हैं आपको, हैं तो जरा फोन के करीब ही रहिएगा। कोई एक आप में से लकी वन होगा मेरे साथ शॉर्टलिस्ट आज की सुबह 10:01। गुड मॉर्निंग, ये है मंडे मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
9: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
10: गुड मॉर्निंग है की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10:06 हो गए। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, एंड इसके ढेर सारे मैसेज आप लोगों ने कर दिए हैं। आपका दिल से थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ। शो है यहाँ पर, आप जो है ढेर सारे मैसेज पहुंचा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए मंडे मॉर्निंग में ये गाना तो ऑफ कोर्स आपके लिए बनना चाहिए। आज की सुबह मेरी तरफ से आप सभी के लिए घिंचाक वाला ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर। होय होय होय होय होय होय होय होय, मंडे मॉर्निंग। लेकिन उससे पहले एक लकी कॉलर को हमने अपने साथ शॉर्टलिस्ट कर लिया है आज की सुबह। एक बहुत ही सिंपल डायलॉग पूछा था मैंने आपसे और आपको बताना था वो कौन सी पिक्चर से है, एंड सच में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, थैंक यू सो मच यार। और लकी कॉलर जुड़ चुकी है, उनसे बात करते हैं। हाय हेलो, गुड मॉर्निंग।
11: गुड मॉर्निंग सर।
10: गुड मॉर्निंग जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, अपना नाम बताएं, कैसे हैं आप?
11: जी मेरा नाम है पल्लवी दीक्षित।
10: पल्लवी दीक्षित, कहाँ से जुड़ी है पल्लवी जी आप?
11: जी मैं रामलीला ग्राउंड मुरादाबाद से।
10: अरे वाह, रामलीला ग्राउंड में तो अच्छा खासा पानी भर गया होगा आई थिंक अभी। हाँ
11: अभी तो नहीं हुआ, हो जाएगा लेकिन।
10: अच्छा हो जाएगा। अभी मौसम कैसा है, बारिश हो रही है रुकी हुई है?
11: नहीं अभी तो रुकी हुई है।
10: चलो थैंक गॉड। आपको बारिश पसंद है पल्लवी जी?
11: मुझे बहुत पसंद है।
10: क्या अच्छा लगता है आपको बारिश में करना, ये बताओ आप फटाफट मुझे। कुकिंग करना, चाय पकौड़े,
11: बारिश में नहाना।
10: अरे वाह, मैं सुबह ही नहा के आया, वैसे मैंने किसी को बताया नहीं था ये।
11: बस बैठ के बालकनी में देख के रहना।
10: वेरी नाइस, वेरी। और साथ में हरे हरे पौधे आपके आसपास लगे हो?
11: हाँ मैंने छत पे भी लगाए हुए हैं, तो उनको देखना अपना बढ़िया लगता है।
10: क्या बात है। और आप रेडियो कब से सुन रही हैं? रेडियो पे आपको क्या अच्छा लगता है जरा ये बताओ आप।
11: रेडियो पे सुबह के टाइम मूड फ्रेश हो जाता है, तो सुबह में सुनती हूँ मैं, और दिन में तो टाइम नहीं मिलता।
10: ओके। सुबह में आप क्या मतलब,
11: अच्छी अच्छी बातें होती
10: हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको मॉर्निंग बिंदास अच्छी लगती है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जो पल्लवी जी, अभी मैंने एक सवाल पूछा था दिमाग का टेस्ट लेने के लिए, वो कौन सी फिल्म का डायलॉग था?
11: मूवी है।
10: अच्छा आपने ये मूवी कितनी बार देखी, चलो पहले ये बताओ सही सही।
11: मैंने एक या दो बार।
10: अच्छा अच्छा,
11: हाँ, एक दो बार देखी है।
10: आपको अच्छी लगी मूवी?
11: अच्छी मूवी है। हाँ,
10: अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल पल्लवी जी सही जवाब दिया है, जोरदार तालियां आपके लिए। कंग्रेचुलेशन, आज की सुबह आप बनती है हमारी शो की विनर। बहुत सारे लोग आपके सुन रहे हैं, ऑफकोर्स सुपरस्टार तो आप बनी गई हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा आज की सुबह आपको कॉल आएगा रेडियो से, या फिर आपने सोच लिया था कि आज मैं ही विनर बनने वाली हूँ?
11: नहीं ऐसा तो नहीं सोचा था।
10: ऑलराइट, लेकिन अब आपको सोचना ही पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आप रेडियो पे आप लाइव हो, आज क्या कर रहे हो आप सुबह सुबह ये बताओ पहले, इनका सच निकलवाते हैं जरा।
11: आज तो फ्री हूँ, कपड़े धोने का काम नहीं है, बारिश पड़ रही है।
10: और बच्चे स्कूल गए या नहीं आज सुबह सुबह?
11: आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए तो सब अपना फ्री मूड में
10: है। अरे वाह, वेरी गुड, सब एंजॉय के मूड में है, राइट? बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा तो पल्लवी जी, आप मुझे कुछ कहना चाहती हो? तमाम सारे लोग रेडियो सुन रहे हैं, आई मीन रेडियो के जरिए आप कोई मैसेज देना चाहती हो तमाम लोगों को?
11: हाँ हाँ जी बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ
10: जी।
11: देखिए मेरा पर्सनली भी मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने लाइफ में ना बहुत पुरानी चीजों को ले लेके सोचकर काफी टाइम खराब मैं कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ये पर्सनली मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि जो हो चुका है उसके बारे में सोचना बिल्कुल बेकार ही है, यूजलेस है। और आने वाले के जो टाइम है वो तुम्हें पता ही नहीं है क्या होने वाला है।
10: Absolutely.
11: तो अपने बहुत सी लेडीज भी और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके और पता नहीं क्या क्या चीजें सोचते रहते हैं, तो वो ना सोचे तो बेटर है। अपना जो चल रहा है उसे अपना एंजॉय करें, अपना मेहनत करते रहो, जो भी तुम काम करना चाहते हो, बाकी जो चल रहा है वो अच्छा ही है, जो हुआ ठीक ही हुआ, वहाँ पे काफी कुछ लेसन देकर ही गया है।
10: हर चीज हमें लेसन देके जाती है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, नो डाउट है ना। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, हर या तो कुछ सिखा कर जाती है या फिर हमें ये बता कर जाती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है।
11: जी
10: बिल्कुल, पलवी
11: जो भी तुमने किया है सीखा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा काम आ ही जाएगा।
10: करेक्ट करेक्ट,
11: मुझे लगता था कि इतनी पढ़ाई थी ये की हो गया वो सब वेस्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है।
10: आ ही जाता है 100%। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं पल्लवी जी, आप जुड़ी, बाय बाय,
11: थैंक यू,
10: बाय, ऑल द बेस्ट। ये पल्लवी जी थी हमारे साथ, इनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आज के दिन ये बनती है हमारी सुपरस्टार। चलो जी, आप सभी के लिए भी अच्छा सा गाना और जोरदार तालियां, थैंक्स अ लॉट, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाने का समय हो गया है, फिलहाल खुशी ये स्टूडियो में आ गई है, हैप्पी बर्थडे आरजे खुशी को मेरी ओर से भी, हमारे तमाम सुनने वाले लिसनर्स की ओर से हैप्पी बर्थडे खुशी को ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच। भारती जी जो कभी नहीं हारती जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं, हेलो जी, आई वांट टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय लवली ब्यूटीफुल भाभी अंशिका जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आज अंशिका जी का बर्थडे, आज बॉलीवुड के नशरुद्दीन शाह का बर्थडे, आज हमारी रेडियो की आरजे खुशी का बर्थडे, तो कितनी सारी चीजें चल रही ना एक साथ। हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे आरजे खुशी, आप मुस्कुराती रहे, थैंक यू वेरी मच। ये सपना जी का मैसेज आ रहा है मेरे पास,
1: मुझे प्यार हो गया।
10: एंड हाय, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। सना तुर्क मेरे साथ जुड़ी है, साथ में नाजिया तुर्क लिखती है, बारिश हो रही है और एफएम मुरादाबाद के लिए मैंने गाना क्रिएट किया है, अरे वाह, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच इस गाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी है, गुड मॉर्निंग, गौरव टेलर नवीन नगर से जुड़े हैं मेरे साथ, एंड बहुत सारी बातें लिखते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, इनको अच्छा लग रहा है, शुक्रिया सर। एंड साथ में हमारे पास मैसेज आ गया, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, सभी बहुत ही बढ़िया है। हेलो आनंद जी, कैसे हैं आप? ललिता कश्यप नवीन नगर से खुशी जी को हैप्पी बर्थडे पहुंचाती हैं और साथ में ढेर सारी एकदम राइट वाली बातें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे रही है। अलीशा ने सही जवाब दिया है मेरे पास, लक्ष्मी जी सही जवाब पहुंचाती हैं, एंड एक और अलीशा जुड़ी है मुरादाबाद से ही, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त सही जवाब के साथ अलका वर्मा जी, एंड बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, साथ ही साथ सही जवाब पहुंचाने रिजवान खान साहब जिला ग्राम बीजना, जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से लिखते हैं, हेलो जी गुड मॉर्निंग, कल तो सारा दिन आपके इंतजार में निकल गया, जल्दी आपके गांव आएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे आपसे। ये मोहसिन अंसारी से जवाब दे रहे हैं मुझे, बनारस से मेरे साथ जुड़े हैं, साथ में हैप्पी बर्थडे पहुंचाते हैं आरजे खुशी को भूपी शर्मा जी, थैंक यू सो मच। एक मैसेज आ गया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, जय माता दी, आपको भी जय माता दी, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, रामपुर से शमा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ प्रोग्राम में, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है डॉक्टर सुरेश? आई एम गुड। ये हमारे साथ दुर्गेश सैनी जुड़े हैं, साथ में नीतू सिंह जुड़ गए हैं लाइन पार ढक्का से, लिखती हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत प्यारा है, आप एफएम में आए हैं, आपको सुनकर बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ये लिखती हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह 10 से 12 और 3 से 5 खुशी रेडियो पर बात करती है, बहुत प्यारा जो है खुशी का शो लगता है, थैंक यू। मयंक शर्मा पीतल नगरी से जुड़े हैं, बबली अनजान गीता कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, चमन लाल साहब जुड़े हैं, राजा कश्यप जुड़े हैं, साथ में शबीना खान जुड़ी हैं रहमत नगर से, रणवीर जेठालाल जुड़े हैं, एंड इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंच गया है, हाय गुड मॉर्निंग, ढक्का से मैसेज आ रहा है हमारे पास, गुड मॉर्निंग, रामपुर से अयूब अली जुड़े हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर गुड वाली मॉर्निंग जी, ये मैसेज मेरे पास आ रहा है मोहम्मदपुर बस्तूर से हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, क्या नाम है सर का, अतर सैनी, साथ में मुन्नी देवी और साथ में पवित्रा एंड अजय आचल सैनी, साथ में आकांक्षा सैनी, आकाश, ये सारे लोग जुड़ चुके हैं पूरे परिवार के साथ, थैंक यू सर। भूपी शर्मा साथ में जुड़े थे हमारे, ये सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस, मोहन स्वरूप रामपुर से जुड़े, हैप्पी बर्थडे पहुंचाते हैं हमें यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है मित्रपाल जी, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू।
12: बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं गाइस, थैंक यू सो मच। 10:15 हो गए, कल मिलते हैं। एंड बाकी खुशी को आप जरूर बर्थडे विश करिएगा, उसका शो है वो ऑफकोर्स आगे ही प्रोग्राम लेके। जिन लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। आप लोग ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सभी का दिल से थैंक यू सो मच। मैं तो कल मिलूंगा, बाय। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हैव अ ग्रेट एंड फैबुलस मॉर्निंग, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल मंडे।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा डिंपल दीक्षित उर्दी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: कोई मिल गया,
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
8: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। नई सुबह, नया हफ्ता और नई उम्मीदें, वेलकम टू मंडे। कई लोग मंडे को मंडे ब्लूज कहते हैं, लेकिन सोचिए अगर हर सोमवार हमें एक न्यू बिगनिंग का मौका देता है तो इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता है एवरीवन। और आज का मोटिवेशन कोट सक्सेस, जी हाँ, उन लोगों को मिलती है जो बहाने नहीं बल्कि कोशिश चुनते हैं। छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं। और दोस्तों याद रखिए, कल की गलतियों को पीछे छोड़िए, आज की मेहनत को अपनाइए और आने वाली कल को शानदार बनाइए। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन। और आज खुद से एक वादा जरूर कीजिए, मैं हर चुनौती का सामना पूरी कॉन्फिडेंस के साथ करूंगा या फिर करूंगी, क्योंकि मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और आपका ये पूरा हफ्ता खुशियों, सफलता और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं मंडे की शुरुआत। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, मैं हूँ आपके साथ आपकी खिलखिलाती सी चुलबुली सी आरजी खुशी। और वक्त हुआ है अभी 10:30। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू। और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। देखिए मंडे की सुबह है और मंडे जब आता है और महादेव जी का दिन स्पेशली होता है, तो मैंने कहा चलिए शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

शर्मा तो जाती हैं जब सोनी सोनी कुड़िया अच्छे से तैयार होती हैं और खुद को मिरर के सामने निहारती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को ही खुद की नजर लग जाती है, तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, इतनी प्यारी सी हैं, जब तैयार होती है ना तो मैं कहना चाहूंगी कि काला टीका जरूर लगा के रखा करो। हम नहीं चाहते कि हमारी प्यारी प्यारी डियर लिसनर्स को नजर लगे। वंस अगेन वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है जी खुशी करती है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा से ट्रैक सुना एंड सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तो मैंने कहा चलिए हमारे श्रोता भी मतलब इस गाने को हम सुनवा देते हैं, वो भी थोड़ा सा डांस कर लेती हैं। एंड आपको पता है आजकल मतलब कोई भी चीज़ एक बार जब चल जाती है ना तो मतलब कभी सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप ऑन करें या फिर यू नो इंस्टाग्राम ओपन करें, फेसबुक ओपन करें, जहाँ भी देखते हैं यही गाना नज़र आता है। तो मैंने कहा अपने श्रोताओं को भी सुनवा देते हैं, मंडे की सुबह है। और दोस्तों समय मैं आपको बता देती हूँ, 10:40 हो चुके हैं और आपकी खूबसूरत यहाँ पर मैसेज आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, और हमारे पास इतने मैसेज आ गए हैं, क्या बात है, मंडे तो अमेजिंग हो ही जाना है जब इतने प्यारे प्यारे दोस्त हमारे साथ हमारी कनेक्ट होते हैं। और तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं, जो हमारे पास मैसेज आए हैं उनको मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं शपना साथ में भूपी शर्मा जी का, एंड ये कहते हैं हैप्पी बर्थडे आरजी खुशी, आप हमेशा मुस्कुराती रहिए, प्रभु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, थैंक यू सो मच मैम, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और जो हमें मिलती हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विकी सागर जी का हिमगिरी मुरादाबाद से, कहते हैं खुशी जी सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये कहते हैं कि आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और आज हमारे छोटे भाई का भी बर्थडे है, अरे वाह क्या बात है। अच्छा ओके, सिस्टर इन लोगों का बर्थडे है आज इनकी, फिर तो डबल सेलिब्रेशन हो गया सर। हाँ एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मुरादाबाद से हरिओम महेश्वरी जी, और ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच सर। जब अपना जन्मदिन होता है ना तो बड़ी खुशी होती है ना एवरीवन, एंड बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मंडे का भी दिन है, बहुत ही खूबसूरत हो गया है मेरे लिए, महादेव जी का दिन, ऊपर से बर्थडे भी, ओए होए होए चार चांद लग गए हैं आज के दिन। और आप सबसे मुलाकात भी हो गई, देखिए आप सबसे कनेक्ट हो गए हैं आज हम। दोस्तों आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको बताएगी खुशी, बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपनी थॉट एंड अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाएगा। हम इंतजार हैं आपके प्यारे प्यारे मैसेजों का, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और प्यारे से स्माइल प्यारे से चेहरे पर रखिएगा, तभी तो ये चेहरा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेवर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

देखिए दोस्तों, बर्थडे पे ना मुझे तो कोई बड़े बड़े गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और आपका साथ यूं ही बना रहे हमारे लिए सबसे अनमोल गिफ्ट है. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. इतने सारे विशिंग मेरे लिए आ रही हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज, OMG मेरा दिन बन गया है सच में दोस्तों. और अभी मैं आपको कुछ अपडेट भी दे देती हूँ दोस्तों. सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में निम्न जनपदों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावनाएं. जी हां, संभावनाओं के ऑरेंज अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं

0: एंड दोस्तों कहाँ कहाँ पर ये संभावनाएं कौन कौन सी सिटी में बताई गई हैं मैं आपको बता देती हूँ। अमरोहा, भदोही, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर। अगले 24 घंटे में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावनाएं जताई गई हैं दोस्तों। एंड ऑरेंज अलर्ट की सूचना भी प्राप्त हुई है, तो बाहर जाने से आप अवॉइड करें। अगर कोई काम नहीं है तो घर पर ही रहिएगा, और अगर जा भी रहे हैं दोस्तों तो रेनकोट हमेशा अपने साथ में रखें अभी, क्योंकि मानसून आपको पता ही है स्टार्ट हो चुका है, और छाता भी। और अभी आपको हम समय भी बता देते हैं, वक्त हुआ है 10:57। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है भूपी शर्मा जी का नगर पंचायत बागवाड़ा से, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन करके हमें फोटो भेजी है हमारी, एंड इतना ब्यूटीफुल, OMG, थैंक यू सर, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये आपका अनमोल सा, ये आपने जो बनाया है ना पिक, बहुत ही प्यारी है। कहते हैं कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आरजे खुशी। थैंक यू सो मच सर। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं कश्मीर से महराजुद्दीन जी। कहते हैं आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर गौरव ट्रेनर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से। कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, आपका कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और जानकारियाँ भी बहुत ही अच्छी प्राप्त होती हैं। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि भगवान महादेव आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया मयंक शर्मा जी का पीतल बस्ती से। कहते हैं हैप्पी बर्थडे अरजी खुशी, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों अभी कुछ और भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक। पर खुशी आपसे बात करेगी, आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और अपने मैसेज जिना अपने संदेश हमें जल्दी से पहुंचाइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। और अभी कुछ शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है,
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: दोस्तों गुड मॉर्निंग। नो डाउट जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आती है। और हमारे पास यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है एंड ये मैसेज हमें मिला है कुलदीप गुप्ता जी का धूली बाराबंकी से। और इन्होंने आज की सुबह एक थॉट भी हमारे साथ शेयर किया है। आज की सुबह बहुत ही प्यारा विचार, कहते हैं कि 4 दिन गायब होकर देख लीजिएगा, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। एंड इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए बहुत अहम है, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदे ने भी ठिकाना बदला। सुप्रभात आरजी खुशी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत ही प्यारा आपका थॉट था सो। एंड उसके अलावा सर ने हमें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहुंचाई हैं, कहते हैं आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों से परिपूर्ण रहे। आपके जीवन का प्रत्येक नया वर्ष सफलता सम्मान और आनंद लेकर आए। जन्मदिन के इस पावन अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और ये हमारे पास योगेश जी का भी मैसेज आया है छत्तीसगढ़ से। थैंक यू सो मच सर, इतनी दूर दूर से मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। और हमारे पास वॉइस नोट भी आया है तो मैं उसको भी क्विकली प्ले करती हूँ यहाँ पर। और सुनते हैं उनकी मीठी सी आवाज, मैम ने आज की सुबह क्या पहुँचाया है हमारे पास। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं बिना किसी देरी के एंड आपको भी सुनवा देते हैं। वैसे हमारे श्रोता जानते हैं मैम को, लेकिन अगेन हम उनकी आवाज आप तक पहुंचा देते हैं।
1: राधे राधे खुशी खुशी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा। खूब खुश रहो, नाम कमाओ, खूब आगे खूब बड़ी तरक्की करो और इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहो। भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। खुशी ये गाना सुना देना।

0: प्रेम का संदेश बरसारी।
1: अरे वाह, क्या बात है मैम, आपने तो गुनगुना कर शो में चार चांद लगा दिए हैं। थैंक यू ओलका मैम, बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपने हमें भेजा।

और आज मेरे जन्मदिन पर आप सभी ने अपने प्यार दुआओं एंड ब्लेसिंग्स और खूबसूरत विशिंग से मेरा दिन सच में बहुत स्पेशल बना दिया है। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हर मैसेज ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी है और दिल को खुश कर दिया है। थैंक यू सो मच। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग माय बर्थडे टू ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल। लॉट्स ऑफ लव एंड जितना मैं बोलूँ ना कम है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास और मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है शमा का रामपुर से एंड कहती हैं, खुशी जी कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ डियर। आज तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार होकर आए हैं। देखिए रेगुलर आते हैं तैयार होकर, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही तैयार होके आए हैं। हाथों में बैंगल्स पहने, आंखों में काजल लगाया है। चलो अभी गाना सुनो, उसके बाद और भी गुफ्तगू करेंगे आपसे।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

सच में दोस्तों मौसम बाहर का बहुत ही औसम है, बहुत ही सुहाना है और सुहाने से मौसम में हर चीज बड़ी खूबसूरत लगती है ना दोस्तों। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। खुशी आपके साथ है दोस्तों। एंड आज 20 जुलाई है और आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। एवरीवन, इंटरनेशनल मून डे आज सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। आज ही के दिन 20 जुलाई 1969 को मानव इतिहास का वो सुनहरा पल आया था जब इंसान ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा और यही दिन हमें याद दिलाता है कि अगर सपने बड़े हों और हौसले बुलंद हों तो आसमान भी मंजिल बन जाता है। हमारे भारत ने भी अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। चंद्रयान मिशन ने ये साबित किया कि भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ चांद को निहारते ही नहीं बल्कि उसे यह भी सीखते हैं कि अंधेरी रात में भी अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगाया जा सकता है। हैप्पी इंटरनेशनल मून डे एवरीवन। अपने सपनों को भी चांद जितना ऊंचा रखिए क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें देखकर देखने का एहसास भी होता है। और दोस्तों यहाँ पर अभी समय हुआ है 11:36 और हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी आए हैं, व्हाट्सएप मैसेज आए हैं एंड टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं। हमारे पास यहाँ पर मुजफ्फरनगर से मैसेज आया है लाइबा काजमी का और ये हमें जन्मदिन की शुभकामनाएं पहुँचाती हैं। थैंक यू सो मच डियर, इतना प्यारा आपने मैसेज भेजा है आज की मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सबा खान जी का और ये कहती हैं हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू ए हैप्पी बर्थडे एंड फिलिंग विद हैप्पीनेस, ब्यूटिफुल मेमोरेबल मोमेंट एंड एवरी थिंग यू लव। थैंक यू सो मच।

इतना प्यारा यू नो आपने मैसेज भेजा है, थैंक यू सबा। देखो दोस्तों का प्यार, दोस्तों की ब्लेसिंग्स एंड यही सब चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, ये सबसे अनमोल गिफ्ट है मेरे लिए। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है बबलू सैनी जी का, मुंबई महाराष्ट्र से। कहते हैं, गुड मॉर्निंग जय श्री राम, खुशी मैम कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। कहते हैं, खुशी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपको हमेशा खुश रखें, आप यूं ही हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करें, धन्यवाद सर। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का। कहते हैं, हमारी तरफ से भी खुशी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अलीशा का मुरादाबाद से मैसेज पहुँचाती हैं, कहती हैं, हैप्पी बर्थडे खुशी मैम, एक मुझे गाना सुनवा दीजिएगा, तुमको बारिश पसंद है मुझको बारिश में तुम। अरे वाह, चलिए सुनवाते हैं ये गाना। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, बर्थडे गर्ल आरजी खुशी मैम को हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, साथ में उस्मान खान जी हैं, दीपक हैं, और कहते हैं, खुशी जी एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा। श्योर सर, मैं पूरा प्रयास करूंगी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है राधिका का, कहती हैं, खुशी जी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हाय एवरीवन। एंड उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आया है यहाँ पर रानी नांगल से रिहाना जी का, कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, जन्मदिन के लिए खास लम्हे मुबारक, आंखों में नए ख्वाब मुबारक। ओ हो, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, वो तमाम खुशियों की हंसी सौगात मुबारक। थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत मैसेज भेजने के लिए, शुक्रिया। एंड उसके अलावा और मैसेज हमारे पास बैक टू बैक आ रहे हैं। दोस्तों मैसेज तो हम सभी के रीड करके जाएंगे, आप टेंशन ना लें, लेकिन हाँ प्यारा सा गाना आज के मॉर्निंग आप सभी के लिए यहाँ पर सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे भी करेंगे बातचीत बहुत सारी। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और हाँ, अगर आप अभी कार चला रहे हैं, ऑन द वे हैं, अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो केयरफुली गाड़ी चलाइएगा सर। और ये गाना आप सभी के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो सिर्फ गड्डी लेकर निकल रहे हो ना, आराम नाल गड्डी चलाओ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बिल्कुल दोस्तों, जब आपके मैसेज आ जाते हैं ना तो हमारा दिन बन जाता है और चेहरा खिल उठता है खुशी का। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज यहाँ पर भेज रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो दिन बन गया है यहाँ पर। और हमारे पास अभी हमारी प्यारी सी लिसनर का कॉल भी आया था, ललिता जी का। कहती हैं कि मैम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने सोचा कि चलिए खुशी जी को सब मैसेज कर रहे हैं, हम कॉल कर देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने मैम, काम में व्यस्त थी लेकिन फिर भी कॉल किया, इतने प्यार के लिए दिल से थैंक यू एंड लव यू सो मच मैम। उसके अलावा और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं करूला मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में शहीद अंसारी कली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं लदावली से। कहते हैं खुशी जी हैप्पी बर्थडे, लॉन्ग लाइफ टू यू, एंजॉय योर स्पेशल डे, गॉड

और अभी रिटर्न आएंगे एक ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पर, तब सुनवाएंगे, सॉरी गाने तो सुनवाएंगे ही, लेकिन हाँ आपको जो आपने टेक्स्ट मैसेज भेजे है ना, मैं उनको भी शामिल करने वाली हूँ. ठीक है, अब हैप्पी हो जाओ जल्दी से और ये गाना एंजॉय करो. आपके सपने में भी कोई आता है? ओ हो आता है. अच्छा चलो, मुस्कुरा गए हमारे श्रोता. हाँ

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

दोस्तों देखिए, मैं तो आपकी पासी हूँ और आप सभी का बिग थैंक यू सो मच, बड़ा वाला थैंक यू मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैंने शो स्टार्ट किया है बहुत सारे थैंक यू बोले हैं, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है, जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है. एंड आई एम रियली हैप्पी एवरीवन, आज आपने हमारा दिन बना दिया है और खुशी तो हमेशा खुश रहती है. एंड प्रार्थना यही करती है ईश्वर से कि आप भी हमेशा खुश रहें, अपनों के साथ रहें और सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6. दोस्तों अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति. देखिए, जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है. जब मैं मतलब यहाँ पर आती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं ढेर सारी बातें आपसे करूँ, आपको छोड़कर ना जाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, वादा मैं आपसे करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी आपसे मुलाकात करूँ, फिर से बातचीत करेंगे आप एक नेक्स्ट शो में. जी हाँ, शो का नाम तो आपको पता ही है, हेलो फरमाइश 3 से 5 आता है एवरी वी डे. हम आपके लिए वो शो प्रस्तुत करते हैं 3 से 5, तो आप उस शो में जरूर जुड़िएगा, मुझे कॉल भी कीजिएगा, करेंगे ढेर सारा फन, ढेर सारी मस्ती एंड कुछ एक्टिविटीज भी हम उसमें करने वाले हैं. क्या कुछ होगा वो आपको दोपहर को पता चलेगा. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एवरीवन, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6. बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन थैंक यू.

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कह रहे कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्भ से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण की डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है। माँ भी ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया,
2: यही तो होता है। और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें, हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर है? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनकी शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करे?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं भरोसा देने वाली हो, उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं समझा कर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है, यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा आता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं, जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी हो।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च सब। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और कितनी गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सिहतिया सिंह जी और साथ में टीकन देवी जी। सिहतिया सिंह जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर सरल भाषा में समझाइए।
1: जरूर आरजे खुशी, जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10.9 ग्राम के बीच हो जाता है तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच होता है तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है और 7 ग्राम से कम हो जाता है तो गंभीर एनीमिया माना जाता है।
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतना ही ज्यादा चिंता।
1: बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाएं और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ सकता है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं।
2: यह कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे। थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी। घर का काम भी मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भ अवस्था में ऐसा तो होता ही है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई। रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझाया गया, आगे की सलाह दी गई। परिवार को भी बताया गया कि यह केवल कमजोरी नहीं बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है। यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: सिहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाए तो डॉक्टर किन बातों पर ध्यान देते हैं?
1: डॉक्टर सबसे पहले स्थिति की गंभीरता को देखते हैं। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर एनीमिया में आयरन की गोली कम असर या ज्यादा सुधार की जरूरत की स्थिति में डॉक्टर IVFCM जैसे नसों के रास्ते से दिए जाने वाले आयरन का उपचार पर विचार कर सकती है।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: बिल्कुल सही आरजे खुशी, IVFCM हर किसी के लिए नहीं, यह एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
0: अब जरा IVFCM को और आसान भाषा में समझाइए।
1: देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM ये कोई अलग दवा है या कोई बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझे तो यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है जिसमें आयरन नसों के रास्ते से दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गर्भ आयरन या डिफेंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि बहुत तेजी से सुधार जरूरी है, तब इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
0: यानी ये सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है।
1: बिल्कुल आरजी खुशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिलाओं की स्थिति समझी जाती है, उसके बाद ही डॉक्टर कोई निर्णय लेते हैं।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है?
1: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यह दिया जाता है। इसके बाद कुछ ही सड़क महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे।
0: क्या यह अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
1: जरूरी नहीं है, लेकिन यह हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
0: तो अपने मन से ये उपचार करवाना ठीक नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में होगा।
2: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगी, कई बार परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावित उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। सिहतिया सिंह जी, एक बात और, कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
1: क्योंकि मध्य गंभीर अनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, यह माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसीलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्द ही प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वह IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सके।
2: और मैं यहाँ परिवारों से कहना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी ले, सवाल पूछे और स्वास्थ्य कर्मी की बात समझे।
0: सिहतिया सिंह जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिलाओं की कमजोरी दूर करना है?
1: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य है माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना। जब अनीमिया के समय इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
0: इन्हीं फायदे केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से ले। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेकर जाए, उसमें देरी ना होने दे। तीसरा, जांच में साथ जाए। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करे। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराए। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करे। सातवा, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए। और आठवा, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष ना दे।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरी परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
1: इलाज के बाद भी फॉलोअप बढ़ जाता है। इलाज के बाद फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की पुण्य जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी।
1: गलत। IVFCM निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगाने का मतलब ये नहीं है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए?
2: गलत। IVFCM हर महिला के लिए नहीं है, यह केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किस जाँच या फॉलोअप की जरूरत नहीं होती?
1: बिल्कुल गलत। फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच की निगरानी में की जाती है।
0: IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: गलत। यह हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है।
0: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
1: गलत। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होगा।
0: धन्यवाद। इसके साथ ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं।
2: और मेरी तरफ से एक संदेश, खून की कमी को लंबा मत खींचिए, समय पर जांच कराइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिलाओं को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए।
1: याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य के परिणाम संभव है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव की अवस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे की जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है, अनुमति। तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रीना। सेहत से लाभ कई के श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज बहुत खास प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम

0: बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं? इस सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में सेहत की बात पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद अर्जुरीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब आपके साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए अर्जुरीना, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। अब आप सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और ये समझें कि हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल के दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ स्ट्रेंथ विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ विद साइंस तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लेते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है ये घरेलू नुस्खा अपना लो, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट स्वास्थ्य दिल्ली के 100 झंडे से चलाए जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाए और लोगों की जेबों पर से स्वास्थ्य का खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरत के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत ही जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास का वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा हो, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आज जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं। कई बार छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं गए। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, जैसे वैक्सीन से नुकसान होता है या कुछ बीमारियों का इलाज घर में ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
0: भाभी, ये यूनिवर्स हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जांच, इलाज और बाद की देखभाल, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोग उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या कौन कौन सी है?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां हैं। सबसे पहले आती है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस बात पर ध्यान नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जब मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत और आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीवी जैसी बीमारियां भारत में बहुत ज्यादा हैं। और जीवन शैली की बीमारियां तो 60% मौत का कारण बन रही हैं। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सुधार हुआ है, लेकिन हर राज्य में समान नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।
0: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, रक्त शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इन सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
0: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे अहम भूमिका होती है। हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहां HO होते हैं, जहां रोज मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त जाता है। बहुत सी दवाइयां मिल जाती हैं और बहुत सी जांच हो जाती हैं। इसके बाद प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहां अच्छे डॉक्टर, दवाइयां और जांच की सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोगों को सिस्टम पर भरोसा होगा तभी वो समय पर इलाज करा पाएंगे।
0: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे सच पाए?
1: RJ रीना, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होती है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र। यही वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहां ANM, आशा कार्यकर्ता और कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयां देते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे रेफर करते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां थोड़ी ज्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहां भीड़ बढ़ेगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की जरूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएंगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की?
1: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगहों पर अभी भी डॉक्टर की कमी है, दवाइयां समय पर नहीं पहुंचती, यहां जांच की सुविधाएं सीमित नहीं होती, लेकिन सरकार लगातार इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों के मन में पहले से ही एक धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता और वे बिना कोशिश किए ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने उन भरोसा करने की जरूरत है।
0: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुविधा कर रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
1: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। के तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, वो भी बड़े अस्पताल में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है जिसे दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएं जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जांच और सलाहें भी मिलती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो इस आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
0: आजकल डिजिटल चीजों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
1: हाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इससे फायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराने इलाज और रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UWIN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जिससे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोगों को समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगना है।
0: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
1: हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार ये अफवाह फैल जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे जमाने में तो टीका नहीं लगाया फिर भी हम ठीक हैं। इसलिए आज के बच्चों को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोस की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
0: तो इन बातों का सच क्या है?
1: सच ये है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द हो सकता है लेकिन वह सामान्य है और ये दिखाता है कि शरीर अंदर मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे जमाने की बात है तो उस समय बहुत से लोग बीमारियों से मर भी जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था। हाँ, या हमें सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें ये ताकत दी है कि हम बीमारियों से पहले ही बचाव कर सकें।
0: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
1: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए भरोसेमंद स्त्रोत्र पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच न माने, पहले पूछें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति ही समझदारी पूरे गांव को सही दिशा दे सकती है।
0: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है अपने लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं और सबसे जरूरी है सही जानकारी पर ही भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना रहे होते हैं।
0: दोस्तों, आज की बात से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं तो सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जाँच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत से लाभ गई और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनना न भूले FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: हाय, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए, अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची, मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
3: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडमिक होती ही रहती है। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी, आपको क्या लगता है?
4: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी लाइक सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना, एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
3: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन हमने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए एकदम क्विकली. वो उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है. आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है होम डिलीवरी सर्विसेज तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए ये ब्रिंग इट से. तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है इवन यंगस्टर्स में भी. और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है.
2: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है. लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे. और पता है जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है. पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे तो उससे खेलते थे और उसमें ना एक अपनापन होता था. हम जैसे सारे बच्चे मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए.
3: आजकल तो आपको पता है बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें. बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको.
2: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उसपे कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
3: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी.
2: और हम बच्चे खुद का मतलब अब क्या है इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो. और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे.
4: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना. आगे आप राजी क्या कहना चाहते हो,
2: तुम बताओ पहले तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी. मैं तो सच बताऊं मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे. और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर में जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली हैप्पी दिवाली मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे.
4: अमेजिंग टाइम था. आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं.
2: हाँ, और जो साइकिल के जो टायर होती थी ना, हाँ, उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी.
4: हाँ, वो
2: हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा.
4: चलाया प्राची ऐसा वाला,
2: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम. आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
4: नहीं बढ़ती और प्रॉब्लम्स कितनी है बच्चों के, बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं.
2: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए. मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेके जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं. अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी. मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं.
3: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है. तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरमेंट चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं. अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं. पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी अब यू नो अब ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
4: जुड़े नेचर से जुड़े. दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं.

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा, तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें, आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल।

0: हाँ जी, वेलकम बैक है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए, जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए, अब क्या है, बच्चों को ना सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते, या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देख कर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है, और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी जड़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए। क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है, ताकि उनको भी पता रहे। अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी,
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है। जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है, कोई आवाज नहीं लगा रहा, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: हाँ, तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है, बातचीत करता है, तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले आप उनको फोन मत दीजिए। एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं। इसीलिए 12th के बाद फोन दीजिए, क्योंकि पहले के बच्चे भी तो, हम सब ने भी तो पढ़े हैं, यानी कि हम, सच बताऊं मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला, ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े हैं बिना फोन के, बिना ना, हमें भी तो नॉलेज है।
1: पर वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जिस जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: हाँ, इसीलिए
0: तो इसीलिए श्रोताओं, बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों, फूलों, तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए, क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस।

0: की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
2: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान दे। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
1: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
2: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
1: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
2: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
1: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
2: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तिल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तिल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
1: भाभी, पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
2: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियाँ, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहाँ उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
2: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
1: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
2: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को
1: मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
2: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
1: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
2: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
1: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
2: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
1: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
2: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
2: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दे तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
1: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
2: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
2: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
1: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
2: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
1: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
2: फायदा सीधा है। स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र क्रिया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
2: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
1: और डिजिटलकरण क्या होता है?
2: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
2: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।

0: दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
0: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: नमस्कार आपके लिए और हमारे लिए। हाँ जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोता? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है दोस्तों? फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है, बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें, बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें, OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें, ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें, फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओ, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद, अपने आप गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें, और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात

0: यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
3: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
2: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
3: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बोतल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊ, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है रीना।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या है ना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं। और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूजे, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं, और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए। सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और एक प्यारे से हेलो। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश शो, जहाँ गानों की फरमाइशें भी होंगी, ढेर सारी बातें भी होंगी और मुस्कानों का सिलसिला भी चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों आज का दिन है बहुत ही प्यारा सा, मंडे का दिन है, अपने आप में बहुत प्यारा है। और समय मैं आपको बता देती हूँ, 3:10 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि काम की टेंशन को ना थोड़ा सा साइड में रखिए, गुड वाइब्स एंड मूड को ऑन कर लीजिएगा। कहते हैं ना कि जिंदगी में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी खुशियों को भी बड़े दिल से सेलिब्रेट करना। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक प्यारी सी लिसनर के साथ, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। जानेंगे उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हेलो, कैसे हैं आप बताइएगा।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ दी, आप बताओ आप कैसी हो।
0: आई एम फाइन, बताइए क्या नाम है आपका।
1: दी मैं आपका विकनपुर जिला मुरादाबाद से रुकैया फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: रुकैया फातिमा जी बात कर रही हैं, बताइए रुकैया फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर।
1: सभी बहुत अच्छे हैं दी, आप बताओ स्टूडियो में सभी कैसे हैं।
0: ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस प्यारे से मौसम में आप।
1: कुछ नहीं दी, अभी तो बैठे थे पर हाँ तैयारी कर रहे हैं, आलू के पराठे बनाएंगे आज।
0: अच्छा, आलू के पराठे बनाने की तैयारी चल रही है ना।
1: हाँ दी।
0: अब टेस्टी लगते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए।
1: हाँ दी, मेहनत तो बहुत होती है पर हाँ टेस्ट के आ गया ना मेहनत भूल जाते हैं।
0: हाँ, फिर मेहनत फीकी, मतलब ना मेहनत लगता है कि हाँ चलिए कामयाब हुई, सफलता हमें मिल चुकी है। जब टेस्ट जब खाते हैं गर्मा गर्म होए होए मजा आ जाता है।
1: हाँ दी, तो बताए दी अफरोज अपनी ना आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती
0: है। अच्छा, आपकी दीदी आलू के पराठे अच्छे बनाती है।
1: हाँ दी, बहुत अच्छे बनाती
0: हैं। अरे वाह,
1: आप आएंगी ना तो आपको बना के खिलाएंगी वो।
0: हाँ बिल्कुल, वो उसमें प्यार जो घूलती हैं इतने प्यार से वो बनाती हैं।
1: हाँ दी, बहुत टेस्ट है उनके हाथों में।
0: हाँ होता है यार। आप बताओ आप क्या अच्छा बनाते हो।
1: मैं क्या अच्छा बनाती हूँ।
0: यस yes?
1: मैं फिलहाल तो थोड़ा बहुत ऐसे आता है, ज्यादा नहीं आता दी।
0: अच्छा, आप कहना चाहती है मैं बातें बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अरे मजाक कर रहे हैं।
1: हाँ दी, मैं मैगी और मैक्रोनी बना लेती हूँ।
0: अच्छा, ये आपको पसंद है इसलिए आप अच्छा बना लेती हो, राइट।
1: हाँ बहुत पसंद है दी मुझे।
0: समझ गए हम आपकी पसंद, आपके बनाने के तरीके से पता चल गया है हमें कि आपको ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो चीज हमें ज्यादा पसंद होती है ना वो हम ज्यादा बनाते हैं।
1: हाँ दी, ज्यादा बनाते हैं। पर तो, अभी मैं छोटी हूँ ना इसलिए मैंने अभी बनाना सीखा नहीं है।
0: अच्छा कोई बात नहीं है, सीख लेना, अभी टाइम है, अभी इंजॉय करो।
1: हाँ दी, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, आगे को देखेंगे।
0: हाँ बिल्कुल, अभी बड़ी दीदी है ना तो इसीलिए आप हाँ। टेंशन नहीं लेते हो ज्यादा।
1: हाँ दी,
0: बताओ आप क्या सुनोगी आज।
1: दी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, ये दुनिया पर आई है बस एक अपना है तू।
0: ओके, और ये गाना किनके लिए सुनना चाहते हैं आप।
1: दी मेरी बेस्टी है द्रक्षा फातिमा, उन्हीं के लिए है और उन्हीं की पसंद का सॉन्ग है ये।
0: अच्छा तो ठीक है, सुनवाते हैं ये गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू दी, बाय
0: बाय, टेक केयर। हाँ टेल मी।
1: पिछले हफ्ते ना मेरी दोस्त ने कुछ बोला था रेडियो में, तो मैं उसी का जवाब देना चाहती हूँ।
0: ओके हाँ, आई रिमेम्बर, राइट।
1: मैं दरअसल फातिमा से आई लव यू बोलना चाहती हूँ, आई लव यू टू।
0: हाँ आई लव यू उन्होंने बोला था, लव यू टू आपने बोल दिया, प्यार का इजहार हो गया है।
1: हाँ दी, उन्होंने बोला था ना, मेरी कॉल पहले लग गई थी और मेरी बाद में लगती ना कॉल, मैं उसी दिन उनको जवाब दे देती।
0: अच्छा चलिए, आज फाइनली सब्र का फल मीठा होता है, अब उनको पता चल गया, इंतजार का फल मीठा होता है, आपको मिल चुका है रिप्लाई दरक्षा को।
1: दी पता है मेरी जिंदगी में जब से वो आई है ना मैं इतनी खुश रहती हूँ ना, बहुत ही ज्यादा खुश रहती हूँ मैं।
0: चलिए हमेशा ऐसे ही खुश रहिए एंड थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू दी, बाय
0: बाय। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896, 8 9 6 98 3 98 96

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है हेलो फरमाइश। बाहर का मौसम भी ऐसा है कि कभी बारिश हो जाती है हल्की बूंदाबांदी, तो कभी उमस हो जाती है। मानसून स्टार्ट हो गया है एवरीवन। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा एंड रेनकोट छाता अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर अभी फ्री हैं राइट नाउ तो मुझे कॉल भी लगा सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना आतिफ असलम जी की आवाज में, फ्रॉम द मूवी टू फ्लाइट से। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। जय श्री महाकाल।
0: जी जय श्री महाकाल, क्या नाम है आपका सर?
1: मैम शिवा लोहार, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: हम बढ़िया मैम, आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बताइएगा आप, कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: मैम ये समझ लीजिए बारिश नहीं हुई है लगभग 15-20 दिन से, और किसानी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, फसल कड़ी कड़ी सूखने लगी है मैम।
0: अच्छा, अभी तक बारिश नहीं हुई आपकी साइड?
1: फसल जो है वो मैडम सूखने लगी है, मतलब कीड़े पड़ने लगे हैं उसमें।
0: ओके, वर्षा ना होने के कारण राइट?
1: जी
0: यस। ओके, तो हम भी प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आपकी साइड भी बारिश हो जाए। बताइएगा आप कौन सा गाना सुनेंगे सर?
1: मैम मूवी का नाम है तुम बिन, और उसमें एक गाना रहेगा तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए शिवा। तो एवरीवन आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमें फोन लगाते रहिए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और मैं आपको समय भी बता देती हूँ। दोस्तों वक्त हुआ है 3:29। और अभी आपने गाना सुना तुम बिन, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। और इस खूबसूरत से गाने को गाया था अनुराधा पाटवाल, साथ में उदित नारायण जी ने। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जाने की उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हो?
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा अपना नाम।
1: हैप्पी बर्थडे मैम।
0: थैंक यू।
1: आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियाँ आए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा सा आपने जो ये ब्लेसिंग्स दी है ना हमें, तो अब तो पक्का खुशियाँ आ जाएंगी
1: इंशाल्लाह मैम, जरूर।
0: हाँ जी, अपना नाम तो बता दो यार।
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ।
0: दरक्षा फातिमा बात कर रही हैं, और बताइएगा दरक्षा, फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: हाँ जी मैम, माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं। आप बताएं।
0: हाँ जी, स्टूडियो में सब बहुत अच्छे हैं।
1: और आपकी फैमिली में?
0: हाँ, मेरी फैमिली में भी सब बहुत अच्छे हैं, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं
1: जी।
0: आप बताइएगा आप क्या कर रहे हैं?
1: मैं इस टाइम आपसे बात कर रही हूँ और बैठी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बैठी हुई बस।
0: अच्छा, ओके, तो बातें घूम घूम के भी होती है ना, इधर उधर, कभी इधर टहलो कभी उधर टहलो।
1: हाँ मैम, ऐसे भी होती है।
0: ओके, लेकिन सुकून से बैठकर बात करने में अलग ही मजा है।
1: हाँ मैम, बैठ के बात करने में बहुत ही मजा है।
0: तो आप बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: आज मैं सॉन्ग सुनूंगी, थोड़ा सा गुनगुना के बताना चाहती हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल सुनाइए, हम सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर।
1: मेरी दोस्त ना बहुत खुश हो जाएगी।
0: हाँ, बिल्कुल सुनाइए यार।
1: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, बस इतने याद है मैम।
0: अरे बहुत प्यारा है यार, क्योंकि दिल से कोई चीज अगर हम करते हैं ना, तो वो भी बहुत प्यारी होती है, डिपेंड नहीं
1: जी
0: करता। फिर हमने छोटा सा गुनगुनाया है,
1: हाँ,
0: तो ये किसके लिए गुनगुनाया था ये तो आपने बताया नहीं है।
1: ये रुकैया फातिमा के लिए।
0: अच्छा, रुकैया के लिए आपने गुनगुनाया है।
1: जी
0: ओके, बहुत प्यारा गुनगुनाया है आपने, तो सुनवाते हैं है ना।
1: मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो इतनी प्यारी है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही प्यारी है।
0: आज बता ही दो कितनी प्यारी है।
1: मैम बहुत प्यारी है।
0: अच्छा, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। हाँ
1: जी
0: ओके, तो बहुत प्यारी दोस्ती है आपकी, और बस ऐसे ही आपकी दोस्ती हमेशा रहे, किसी की नजर ना लगे। और बाकी प्यारा सा गाना सुनो, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ
0: जी, बताइएगा।
1: जैसे मेरी दोस्त रुकैया फातिमा और अफरोज फातिमा है, लाइबा काजमी है।
0: ओके ठीक है,
1: और सभी सुनने वाले। ओके
0: हाँ,
1: मैम बाय।
0: ओके बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा बिना किसी देरी के।

0: Hey, hi everyone, good afternoon, welcome है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना, ये वादा रहा 1982 में फिल्म आई थी और आशा भोसले साथ में किशोर कुमार जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। म्यूजिक डायरेक्टर थे आरजी बर्मन जी एंड गुलशन बाबरा जी के लिरिक्स थे और ये प्यारा सा गाना हमने सुना, पुरानी यादों में चले गए थे ना। लेकिन सच में यार गाना बहुत ही खूबसूरत था। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अगर कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं ना तो सोचिए मत, मुझे कॉल लगा दीजिएगा। माना नंबर थोड़ा बिजी आ रहा है लेकिन आप ट्राई तो करो, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे आपको ये पास कॉल लग पाएगा। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना एवरीवन कि कोशिश के बिना कुछ भी नहीं हासिल होता है, तो आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, मुझे यकीन है। आप भी खुद पर यकीन कीजिए और फटाफट से मुझे कॉल मिलाइए, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून डियर, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: आई एम रियली रियली हैप्पी, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ।
1: मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी आपसे बात हो रही है एंड मैं आपके स्पेशल डे में आज आपके साथ शामिल हो चुकी हूँ।
0: बिल्कुल, आप हमारे साथ शामिल हो गई, तभी तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं।
1: बिल्कुल मैम, सेम, मैं भी, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे लगा कि आज मैं कॉल करूँ आपको एंड आपको लाइव बर्थडे विश करूँ। वैसे तो मैं कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सबके सामने भी कर देना चाहिए।
0: ओके ओके, श्योर, थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाल के हमें कॉल किया।
1: नहीं नहीं मैम, मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: एंड मैं तो आंटी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि भाई उन्होंने इतनी प्यारी सी क्यूट सी एंड्रेस इस दुनिया में लेकर आई और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वैसे।
0: हाँ यार, सच में मेरी पेरेंट्स हमेशा रेडियो सुनते हैं और वो बहुत खुश भी होते हैं, बहुत प्राउड करते हैं।
1: हाँ, तो मैं तो उनको एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि बाकी मैं उन इतना अच्छा गिफ्ट देना, ये कि शायद भाई लाइफ टाइम दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है कि वो मतलब अच्छा ही रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने लाइबा, और इतनी प्यारी प्यारी बातें की है ना, आज तो मम्मा डबल खुश हो जाएंगी और मुझे आज शाम को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है।
1: हाँ बिल्कुल भाई, आपने आपका सरप्राइज प्लान हो रहा होगा, इससे आपको बहुत खुशी हो रही होगी, है ना, वेट भी नहीं हो रहा होगा।
0: हाँ, इंतजार तो नहीं हो रहा है बट करना पड़ रहा है।
1: हाँ, वो क्या होता है ना कि जब ये होता है ना कि सरप्राइज तो इंसान ये सोचता है कि क्या सरप्राइज हो सकता है।
0: हाँ, और लेकिन जो भी होता है ना, कहते हैं भी हैं लाइबा, और होता भी है कि सब्र का फल मीठा होता है, मैं यकीन करती हूँ, इंतजार करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है।
1: भी आपको तो आज सब्र का फल की जगह केक मिलेगा।
0: ओके, उस केक में से थोड़ा सा वाइट आपके लिए भी है, ठीक है?
1: हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा तो वैसे भी फेवरेट है।
0: ओके, तो आपके हिस्से का भी मुझे ही खाना पड़ेगा ना, मैं मोटी ना हो जाऊँ, मुझे डर लग रहा है।
1: नहीं नहीं, वैसे भी आप कितनी भी हेल्दी हो जाओ ना तब भी क्यूट लगोगे, आप इतने प्यारे हो आप।
0: ओह माय गॉड, सच ए वेरी क्यूट यार, इतनी प्यारी प्यारी लाइनें बोल के ना ये लड़की मुझे अपने पास बुला लेगी, मुझे जाना पड़ेगा फिर मुजफ्फरनगर।
1: बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ आप मुरादाबाद से खींचे चले आए और मुजफ्फरनगर एंड ले लूं।
0: ठीक है, जल्दी बहुत जल्द आएंगे यार आपसे मिलने के लिए, और आप भी आना मुरादाबाद, आपको मोस्ट वेलकम है।
1: हाँ बिल्कुल, मेरा तो भाई पक्का मन है कि मैं आऊँ, मेरी दोस्त खुद वेट कर रही है कि वो साथ में जाएगी, गुस्सा भी करती है।
0: ओके, कभी कभी होता है ना कि हम जैसा चाहते हैं वैसी चीजें नहीं हो पाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं।
1: ये तो हकीकत है, मैं पता है कितने दिन से वेट कर रही हूँ कि मैं आपको सरप्राइज करूँ लेकिन पता नहीं क्यों रुकावटें आ रही है।
0: कोई बात नहीं, शायद कुछ जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है।
1: अच्छे के लिए, कभी आप देखिए बोले अच्छा ये मेरी फ्रेंड है।
0: हाँ अच्छा, बताओ लाइबा, आज आपने इतना वक्त निकाला है और हमें कॉल किया, आपको यकीन था कि कॉल लग जाएगा आज, क्योंकि बहुत टिपिकल होता है।
1: मैं जब भी कॉल करती हूँ ना, मतलब मैं पूरे यकीन के साथ लगाती हूँ, मेरी लग भी जाती है, मतलब नंबर बिजी बनता है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो, और शिद्दत मेरे अंदर वैसे भी बहुत शिद्दत है।
0: हाँ,
1: तो मैं जिस चीज को सोच लेती हूँ उसे कर ही देती हूँ।
0: हाँ, और वो चीजें होती भी है, उसमें आपको सक्सेस भी मिलती है।
1: हाँ ये तो है।
0: तो बताइए कहाँ
1: करते हैं ना, चाहिए
0: हाँ एग्जैक्टली राइट यार, आई एग्री विद यू. आप कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: मैम एक सॉन्ग है, मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से.
0: चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से.
1: हाँ बिल्कुल, मैंने आपको किस्मत की लकीरों से ही चुरा रखा है फिलहाल.
0: ओके थैंक यू. वैसे ये चोरी नहीं हुई, चोरी क्योंकि चुपके चुपके करते हैं, आपने सबके सामने बोल दिया है.
1: अच्छा मैंने तो आपको वैसे चुपके चुपके भी बोल रखा है, सामने तो पता है. मैंने इसलिए बोला है यार अच्छा लगेगा, मेरी दोस्त भी सुनेगी एंड आपको भी अच्छी वाइब आएगी कि हाँ बंदी ने कॉल करी है.
0: हाँ यार सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपने कॉल किया. मैंने सोचा था कि कॉल आएगा, मुझे उम्मीद थी वैसे, और आपने किया.
1: हाँ देख लो मैं उम्मीद पे एकदम पूरी 100% निकलती हूँ पूरी.
0: हाँ वो आपने कहा था ना कि दिल से दिल का रिश्ता है.
1: हाँ जो आप सोचोगे वो फुल फुल हो ही जाएगा और मेरी तरफ से तो पूरा हो जाएगा.
0: हाँ थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डियर, और हमेशा अभी ऐसे ही हैप्पी रूल आए बा.
1: बिल्कुल मैम, ये सॉन्ग स्पेशली आपके लिए है. एंड मैं कुछ नाम ले लूँ आपके?
0: हाँ
1: तो
0: श्योर श्योर बताइएगा.
1: मोहम्मद कारण, शबनम भी मेरी बहुत ही प्यारी से दोस्त है, अफरोज फातिमा एंड दक्ष फातिमा एंड रुकैया एंड नजमा भी एंड काव्या.
0: ओके तो आपके सभी प्यारी प्यारी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना, एंड अगेन थैंक यू सो मच.
1: एंड आपको भी हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट.
0: थैंक यू,
1: बाय
0: बाय, टेक केयर. तो चलिए विवन सुनते हैं प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं. तब तक आप भी कॉल लगाना बिल्कुल मत भूल जाना, नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896.

0: 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: और एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई जिग करो स्वच्छता की जिद करो

हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और आप इस शो को सुन सकते हैं एवरीडे। जी हाँ दोस्तों, मंडे टू सैटरडे ये शो आता है फोन इन कार्यक्रम। यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं या फिर किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। कोई ट्रैक आपको लगता है कि आपके बहुत स्पेशल कोई पर्सन है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो एंड या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो, जो आपके अपने करीबी हैं, आप उनको भी डेडिकेट कर सकते हैं। वो ट्रैक अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी कर सकती हो। और दोस्तों, हेलो फरमाइश सिर्फ गानों के नहीं, रिश्तों का भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर किसी को थैंक यू, सॉरी, मिस यू या फिर लव यू कहना चाहते हैं ना, तो बेझिझक कॉल मुझे कर सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर मैं बता देती हूँ अगेन, 9837896896।

0: वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हो? अच्छी
0: हाँ जी, आई एम हैप्पी।
1: बात है, आज तो और भी ज्यादा हैप्पी होगी दी।
0: हाँ,
1: इतना अच्छा तो दिन है आपका।
0: एग्जैक्टली राइट। लेकिन मैं बताए आपको, मैं हर दिन खुश रहती हूँ जब आप सबसे बातचीत होती है ना, तो
1: हाँ
0: खुशी।
1: दी, ये तो है, पर आज थोड़ी ज्यादा खुशी है ना।
0: हाँ, आज थोड़ी नहीं, आज बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं
1: हाँ दी,
0: और आप सबका इतना सारा प्यार। थैंक
1: हमेशा रहेगा दी।
0: यू सो मच। अपना नाम बताइएगा
1: दी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से निखत फातिमा आपसे बात कर रही हूँ। सभी
0: जी। बताइएगा निखत फातिमा जी, फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: ठीक है दी, आप बताइए फैमिली में कैसे हैं?
0: हाँ जी, हमारे यहाँ पर तो सब बहुत ही अच्छे हैं। और आप बताओ, मौसम कैसा है आपके साइड?
1: मौसम तो बहुत अच्छा है दी, गर्मी से थोड़ी राहत है। हाँ
0: अच्छा, गर्मी से राहत है। ओके, तो
1: दी
0: बताइएगा आज आप क्या सुनेंगी?
1: दी मैं सॉन्ग सुनूंगी, तुमको देखा तो क्या ये हो गया, आपको
0: ओए होए होए, किसको देखा आपने
1: दी, और आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ।
0: जी? बिल्कुल कहिएगा।
1: सारी दुनिया की चरागों से ये प्यारी आंखें, मेरी मंजिल का निशान है ये तुम्हारी आंखें, तेरे मासूम से चेहरे की जियारत के लिए मैंने मांगी है फरिश्तों से उधारी आंखें, छीन लेते हो जो दीद की दौलत हमसे, हमको बेनूर सी लगती है हमारी आंखें, मुझको दुनिया का कोई हुस्न दिखाई न दिया, मेरे आसाब पे रहती है तुम्हारी आंखें।
0: अरे वाह, क्या बात है यार,
1: दी
0: लाजवाब।
1: आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच, मैं तो खो गई थी आपकी बातों में। इतनी प्यारी लाइनें थी आपकी, बहुत ही खूबसूरत।
1: आपके लिए लिखी थी मैंने ये।
0: शुक्रिया बहुत बहुत दिल से। थैंक यू एवरी यार, थैंक यू सो मच। तो
1: और
0: निखत,
1: मेरे साथ में है
0: हाँ
1: मेरी भांजी सारा फातिमा, कसब फातिमा, और मेरी छोटी सी भांजी आयशा फातिमा।
0: आयशा जो अभी न्यू बीबी है वही ना?
1: हाँ दी, ओके
0: ओके, हमारी तरफ से भी ढेर सारा प्यार उन बच्चियों के लिए।
1: थैंक
0: मोस्ट वेलकम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और ये सुनवाते ही प्यारा सा ट्रैक, तो दोस्तों आप भी मुझे कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्दी से कॉल लगाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। और अभी गाना सुनो।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों अभी आपने ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना सुना और खुशी फिर से हाजिर हो गई है आपका अपना फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश। यहाँ पर समय हुआ है 4:04। बात करते हैं अपनी अगली कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। थैंक यू सो मच मैम, इतने प्यार से विश करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी क्यूट सी जो बेबी गर्ल बोल रही है ना, उनको भी थैंक यू।
1: वेलकम दीदी, कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, अपना नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम है ललिता कश्यप, नवीन नगर मुरादाबाद से।
0: ओके, और आपकी डॉटर का क्या नाम है? वो भी तो पीछे पीछे बातें कर रही है मम्मा के साथ में।
1: बड़ी वाली बेटी का नाम है, प्यार से बोलती हूँ, नोनू। अदिति कश्यप नाम है, और छोटी वाली का नाम है बीबू कश्यप।
0: ओके, दोनों का नाम बहुत ही प्यारा है, दोनों बहुत नटखट हैं, शरारती भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं, ये जब बचपन में होते हैं ना, छोटे होते हैं, तो बहुत ही प्यारा टाइम होता है, थोड़ी शरारती करनी भी चाहिए।
1: यही तो दीदी बचपना होता है अपना।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर तो यादें ही रह जाती हैं।
1: बच्चे बड़े कब हो जाते हैं पता नहीं लगता।
0: पता नहीं लगता है जी। और आप बताइएगा, आपकी तबीयत ठीक है मैम?
1: हाँ ठीक है दीदी। आप लोग और परिवार में सब बढ़िया?
0: हाँ जी हाँ जी, ऑल गुड। ललिता मैम आप बताइएगा, कैसा मौसम है नवीन नगर में?
1: नवीन नगर में हल्की बौछारें हो रही हैं।
0: अच्छा,
1: कभी तेज हो जाती है बारिश, कभी हल्की हो जाती है।
0: जी तो बताइएगा आज आप क्या सुनेंगी मैम?
1: आज हम सुनेंगे हरियाणवी सॉन्ग खुशी मैम के लिए, चटक मटर। और थोड़ा सा खुशी मैम डांस करना, ठीक है? मैं भी करूंगी इधर से।
0: थोड़ा नहीं, फिर हम पूरा डांस करेंगे, ठीक है?
1: हम पार्टी घर पे सेलिब्रेट करेंगे खुशी मैम की, है ना?
0: थैंक यू सो मच ललिता मैम, आपने हमें कॉल किया। और
1: बहुत मेरी तमन्ना थी कि मैं दीदी से बात करूंगी, काफी टाइम से ला रही है सब कॉल तो मैं।
0: अच्छा देखिए, आपने प्रयास किया और आपका कॉल भी लग गया।
1: ये तो कॉल इनके डैडी ने लगा के दी, तो हमारी लग गई कॉल।
0: अच्छा सर को भी थैंक यू हमारी तरफ से बोलिएगा, उन्होंने कॉल लगाकर आपको दिया।
1: उनकी तरफ से आपको भी हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी।
0: थैंक यू।
1: भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। FM मुरादाबाद 89.6 MHz खुशी के लिए ऐसी गुनगुनाते रहें, ऐसी बजाते रहें हमारे FM वाली पूरी टीम को।
0: थैंक यू सो मच इतने प्यार से बोलने के लिए। और पूरा मतलब मैम ने ना जुबान पे, मतलब कहते हैं ना कि रेडियो बजाते रहो गुनगुनाते रहो, वो जुबान पर है और इतने प्यार से उन्होंने बोला है 89.6 MHz रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बहुत सारे श्रोता तो सोचते हैं कि कैसे बोले लेकिन मैम ने बोला, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा हरियाणवी गाना, रेणुका पवार जी की बहुत प्यारी आवाज। लौट कर आती हूँ मैं अभी।

जगाती है कयामत कोई।

0: नहीं नहीं दोस्तों, जान नहीं देनी है आपको, बस कॉल करना है, छोटा सा काम करना है आपको। जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, आपको बस उसी फोन से हमें नंबर लगाना है। और ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना एवरीवन, आनंद राज आनंद साथ में ऋचा शर्मा जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज। और चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश
1: जी मैम, नमस्कार। राधे राधे।
0: आपको भी राधे राधे। सो क्या नाम है आपका?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सुनील जी आप?
1: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम, फोन लगा रहे थे मैम, फोन भी लग गया मैम।
0: जी बताइएगा, कैसा मौसम है एमपी का?
1: जी अभी तो बारिश हल्का फुल्का चालू है मैम हमारे यहाँ।
0: अच्छा, एमपी में बारिश चालू है?
1: जी जी जी मैम।
0: ओके सर, बताइएगा क्या कर रहे हैं आप?
1: अभी तो रेडियो सुन रहे हैं मैम अभी।
0: अच्छा अच्छा, ओके बताइएगा अभी आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, आज आपने कॉल किया है।
1: जी आज गाने के बोल है मैम, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती क्या? अभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
0: हाँ दोस्तों के नाम तो ले लीजिएगा, लेकिन पहले ये बताइए नींद क्यों नहीं आती आपको?
1: जी बारिश हो रहा ना मैम, तो नींद नहीं आ रही।
0: तो बारिश में तो नींद अच्छी आती है सर, बारिश में तो नींद अच्छी आती है।
1: नहीं अभी तो नींद नहीं आ रही पीने अच्छा। में उसमें पानी का फुहारा पड़ रहा तो नींद कहाँ आएगी मैम।
0: लेकिन जब बारिश का वेदर होता है ना, तो मौसम अच्छा हो जाता है, तो उस समय तो नींद अच्छी आती है। चाय पकौड़े भी खाइए और आराम से सो जाइए। हाँ तो आपके दोस्त कौन कौन है बताइए जरा।
1: कितने रेडियो लाइट सुनते हैं, तभी तो हमारे दोस्त है, तो
0: ओके तो चलिए जितने अभी लाइव श्रोता हमें सुन रहे हैं उन सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनील जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, नींद नहीं आती मुझे। लेकिन दोस्तों हमें तो बहुत नींद आती है, सच्ची बता रहे हैं। 10 से ही रात के 10 बजते हैं ना, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली ना मतलब बंद होना स्टार्ट हो जाती है 10 बजे। मैं तो सोने चली जाती हूँ और क्या, बस 10 बजे सो जाती हूँ मैं। आगे कुछ नहीं, ये गाना सुनो, लौट कर आती हूँ अभी।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और शो चल रहा है आपका फेवरेट हेलो फरमाइश। यहाँ पर अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना, नींद नहीं आती मुझे, अमेजिंग ट्रैक। और दोस्तों, इस गाने को गाया था उदित नारायण जी, साथ में साधना सरगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, आनंद मिलन जी का था म्यूजिक। एंड अभी बात करते हैं और अगले कॉलर से जानेंगे उनकी भी फरमाइश। यहाँ पर दोस्तों, आप अगर हमें सुन रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका फेवरेट गाना हम प्ले करें, तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, अपना फोन उठाना होगा और हमें नंबर लगाना होगा, तभी तो बातचीत हो पाएगी ना हमारी और आपकी। तो जल्दी से कॉल लगाइएगा। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया, आप बताइए मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आपका नाम बताइएगा।
1: मैं रामपुर से शमा बात कर रही हूँ मैम आपसे।
0: शमा जी, आज आवाज आपकी बदले बदले क्यों लग रही है?
1: मैम फीवर है।
0: OMG, ओ हो, कब से फीवर हो गया आपको?
1: 2-3 दिन हो गए आज।
0: तो तबीयत ठीक नहीं है अभी?
1: अब थोड़ी ठीक है।
0: अच्छा, पहले से राहत है ना?
1: पहले से लेते हैं।
0: ओके, तो दवाई वगैरह लिया आपने, मेडिसिन?
1: जी मैम, मेडिसिन नहीं।
0: ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है और जल्दी से आराम आपको हो जाएगा। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। शमा बताइएगा, आप क्या सुनेंगी आज?
1: मैम मुझे सॉन्ग सुनना है, रुपोश मूवी है और सॉन्ग है उसमें हुई जी इश्क में हमराजी।
0: ओहो, ये बात है।
1: नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, बस सॉन्ग पसंद है मुझे, मूवी बहुत अच्छी लगती है।
0: नहीं, आपकी जो चॉइस है ना, ट्रैक बहुत अच्छी सुनती हो आप।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। और कुछ कहना चाहते हो आप?
1: नहीं मैम कुछ नहीं कहना चाहती हूँ।
0: चलो ठीक है,
1: मौसम बहुत प्यारा हो रहा है।
0: हाँ मौसम प्यारा है, लेकिन इस मौसम में अपना ध्यान भी अच्छे से रखो, ठीक है?
1: बिल्कुल मैम,
0: बिल्कुल। ओके बाय। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। मोबाइल नंबर हमारा है 98-378-96-96 और ये खूबसूरत सी गाने का सब मिलकर लुफ्त उठाते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आपने खूबसूरत से गाना सुना और मैं आपको समय बता देती हूँ। यहाँ पर वक्त हुआ है 4:34। आपके पास अभी भी टाइम है, आप हमें कॉल लगा सकते हैं निश्चिंत होकर। और हमारे पास यहाँ पर हमारे एक कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी बहन प्रणाम नमस्कार, मैं राजू यादव ग्राम का श्रीरामपुर डेरा सरीना राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइएगा कैसे हैं सर आप?
1: मैं तो बहना जी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, गिरस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ और आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ।
0: धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैं आज आपकी ही पसंद का गीत सुनूंगा।
0: अच्छा, आज हमारी पसंद का गाना सुनेंगे आप?
1: जी बहन जी जी।
0: ठीक है सर, तो सुनवाते हैं आपको हम अपनी पसंद का गाना।
1: कुछ मित्रों को भी नाम लेंगे बहन।
0: हाँ जी हाँ जी, बताइएगा।
1: हमारे मित्र हैं श्री परवेज अहमद जी बनारस से, इस समय आपका कार्यक्रम दिल से सुन रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है उनकी कॉल शामिल हो जाए।
0: जी सर, तो सुनवाते हैं प्यारा सा गाना, आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। आपको भी प्रणाम नमस्कार। तो दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी दम लगाई के आयशा। बहुत ही प्यारा गाना है और इस खूबसूरत गाने में है आयुष्मान खुराना साथ में भूमि जी, एंड आज उनका बर्थडे भी है। आज बहुत सारे हमारे जो लिसनर हैं उनके रिलेटिव का भी बर्थडे है, एंड उसके अलावा आज नेहा कक्कड़ बहुत ही ब्यूटीफुल सिंगर हैं, उनके भी आज मामा का बर्थडे है। तो बहुत सारे सेलिब्रेशन आज होने वाले हैं और ये प्यारा से गाना सुनिएगा।

0: क्या बात है दोस्तों, अभी आपने एक खूबसूरत से गाना सुना, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करार। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हमारा दिल तो खिल उठता है, मुस्कुराता है, क्योंकि आप सब बहुत प्यारे हैं। और ये प्यारा से गाना अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी दम लगाए के हर्षा, एंड इस खूबसूरत गाने को गाया था कुमार सानू साथ में साधना सरगम जी ने। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: जय श्री कृष्णा।
1: जय श्री कृष्णा। हैप्पी बर्थडे दीदी।
0: थैंक यू सो मच। तुम्हें केम छो
1: मजा मा
0: जी बताइएगा।
1: जालिया अस्तगिरी तालुका पाली थाना गुजरात से माधुबा चौहान बात कर रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइए कैसा है गुजरात का मौसम सर?
1: गुजरात का मौसम तो दीदी अभी थोड़ा थोड़ा बारिश चालू हुई है।
0: अच्छा बारिश चालू हो गई है?
1: जी हाँ।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: दो दिन से धीमे धीमे बारिश हो रही है।
0: अच्छा धीमे धीमे बारिश हो रही है?
1: जी हाँ।
0: जी तो बताइएगा आज आपने हमें फोन किया है गुजरात से, सर क्या सुनेंगे आप?
1: आज आपको डेडिकेट करना है गाना, आपका बर्थडे है इसलिए। हाँ। हम अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, वही पुराना वाला गाना है दीदी।
2: अरे वाह, तो सर वैसे भी लड्डू मिलते हैं ना।
0: हाँ आप आइएगा, आपको लड्डू भी मिलेंगे और गुलाब जामुन भी मिलेंगे।
1: जी जी जरूर आऊंगा दीदी।
2: देने वाली आज।
0: अरे वाह, थैंक यू।
1: आपके पड़के जो दीदी बैठी है उसको मेरा प्यार भरा नमस्कार कहना।
0: ये जो बैठी है इनका नाम रीना है।
1: रीना दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
2: आपको जी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ दीदी,
0: थैंक यू कॉल करने के लिए। सर सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। जी तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का। और अच्छा लगता है जब अलग अलग स्टेट से हमारे पास कॉल आते हैं। तो एवरीवन आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, जल्दी से कीजिएगा, अभी वक्त है आपके पास।

0: होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती है।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: दोस्तों अभी आपने प्यारा से गाना सुना फ्रॉम द मूवी दूर की आवाज जो 1964 में आई थी। आशा भोसले साथ में मोहम्मद रफी जी और मनाली जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा से गाना आपने सुना। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। वैसे दोस्तों बचपन की बात ही अलग होती है, वो एक्साइटमेंट, वो सारी चीजें कितनी अच्छी लगती है ना। जब स्कूल हम छोटे थे तो जैसे हमारा बर्थडे होता था तो हम क्या किया करते थे कि मम्मी को पहले बता दिया करते थे कि मम्मी हम कल स्कूल जाएंगे तो आप हमें ना चॉकलेट लेकर आ जाना हमारे लिए, हम सब अपने फ्रेंड्स को बांटेंगे क्योंकि कल हमारा जन्मदिन है। तो मम्मी कहती थी ठीक है हम लेकर आएंगे आपके लिए, तो वो लेकर आती थी और हम तैयार होकर जाते थे अच्छे से काजल वजल लगा के, दो चोटी बांधकर, एकदम प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बनकर। तो सब कहते थे कि क्या बात है आज तो बहुत प्यारी लग रही हो आप, तो हम कहते थे आज हमारा बर्थडे है तो आप ट्रॉफी लीजिएगा। तो सब हमें बर्थडे विश करते थे, थैंक यू हम उनको बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था वो टाइम। लेकिन आज का टाइम भी बहुत प्यारा है क्योंकि दोस्तों समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं और बदलाव बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो चलो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, कैसी हैं आप मैम?
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? शबनम जी बात कर रही हैं, बताइए कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? और एफएम मुरादाबाद में सभी लोग कैसे?
0: एफएम मुरादाबाद में सभी बहुत अच्छे हैं, इतने प्यार से इतना मुस्कुराकर जब आप पूछती हैं ना हाल चाल तो हम अच्छे हो जाते हैं।
1: जी दीदी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बताइएगा आप चुप क्यों हो गई?
1: नहीं दीदी चुप नहीं हुई, मैं सुन रही हूँ।
0: अच्छा आप हमें सुन रहे हैं, तो बताइएगा शबनम जी आज आपने हमें कॉल किया है, बर्थडे भी विश किया है, क्या सुनेंगी आज आप?
1: दीदी आज ये लगाइए सर, 3 बजे से नंबर ट्राई कर रही हूँ लेकिन अब आके कॉल लगी, आज दिल से दीजिएगा मैं आज बात करूंगी, मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था लेकिन भाई के नंबर से कॉल कर रही हूँ आज।
0: अरे इतनी मोहब्बत के लिए बिग थैंक यू मैम
1: जी, इतनी मेहनत कभी नहीं करनी पड़ी है, आज तो हाथों की उंगलियों में भी दर्द होने लगा।
0: तो आ जाइएगा, हम आपके आज हम आपको पार्टी देते हैं जम के, फिर वो जो दर्द है ना वो दूर हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, हम यहीं से खुश होंगे दीदी।
0: अरे मोस्ट वेलकम है मैम, कभी आइएगा स्टूडियो ठीक है?
1: जी बिल्कुल
0: जी। बताइएगा आज क्या सुनेंगी आप?
1: आज गाना सुनूंगी मैं दीदी, आज हमारी प्यारी सी दोस्त का बर्थडे है तो यही गाना सुनूंगी मैं, मुबारक हो जन्मदिन तुम्हारा।
0: शुक्रिया मैम, आपने इतने प्यार से विश किया और इतना प्यारा गाना हमें डेडिकेट किया, शुक्रिया आपका।
1: जी दीदी कुछ नाम है?
0: हाँ हाँ बताइएगा।
1: रामपुर से नेहा, लायबा काजमी, आप और हम।
0: ओके मैम चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना आपको, शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत, आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। देखिए वक्त तो कम है लेकिन शायद कोई एक तो बनेंगे आज हमारे लास्ट की लकी कॉलर।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल ऑफ लिसनर्स. वेलकम है आपका हेलो फरमाइश शो में. और श्रोताओं, भी वक्त हो गया है स्टूडियो की घड़ी में. राइट नाउ 5 बज चुके हैं और ये वक्त होता है न्यूज का. तो आपको सारी चीजों से अपडेटेड कराना हमारा काम है. तो दोस्तों, अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति. मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 से 12. तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6. नेक्स्ट शो होने वाला है रीना जी का मस्ती इवनिंग, एंड उसमें वो आपको मस्त मस्त गाने तो सुनवाएंगे ही, लेकिन आपको सारी अपडेट भी वो देंगी. आज क्या कुछ स्पेशल है, क्या कुछ होने वाला है, सब आपको धीरे धीरे

0: लगेगा। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 एंड हमेशा खुश रहिए और अपनों के साथ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। चाहे आप सफर में हो या फिर घर में हो या शॉप पर हो, जहां भी आप रहें, बस हमेशा खुश रहें, खुशी यही चाहती है। एंड अगेन थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
1: खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
7: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
6: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
7: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
6: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
7: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और श्रोताओं, कहते हैं ना, इंसान जब बाहर से आपको अच्छा दिखाता है, लेकिन मसला होता है कि अंदर से भी क्या वो इतना ही सॉफ्ट है, उतना ही अच्छा है जितना वो बाहर से आपको दिखा रहा है। तो बस मसला इस चीज का होता है कि वो इंसान अंदर से भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। फिलहाल मेरे स्टूडियो से आपको पन्नी की आवाज आ रही होगी। वो पन्नी की आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि आज खुशी का बर्थडे है, तो ये बहुत ज्यादा खुश है, शाम को पार्टी देने वाली है। और रेडियो मैंने इनको तो वैसे 12 बजे विश कर दिया था, बट रेडियो पे विश कर देती हूँ, हैप्पी बर्थडे खुशी।
1: थैंक यू सो मच रीना, आज की पार्टी मेरी तरफ से आपके लिए।
0: और तुम यूं ही खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, और अपनी शादी में जल्दी जल्दी बुलाओ मुझे, मुझे लड्डू खाने।
1: नहीं, पहले शादी आपकी है भैया, मैं पहले आपकी शादी
0: गाइस कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए, कल पता चले खुशी की शादी हो गई है, ये बल्ले बल्ले खाए।
1: इतनी जल्दी तो नहीं होगी, बट हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली शादी रीना की होगी, हम रीना की शादी।
0: आई डोंट नो गाइस, जिसकी भी हो पार्टी क्या करते हैं,
1: नहीं नहीं
0: लड्डू खाने चलेंगे।
1: हाँ, मैं सोच रही हूँ कि रीना की शादी में हम रीना से ही लहंगा लेंगे।
0: मेरी शादी में मुझसे ही लहंगा लोगी
1: पहनने के लिए,
0: तो इसका मतलब तुम शादी में अपनी शादी मुझे दिला देना।
1: नहीं, तुम तो ऑलरेडी ले चुकी होगी ना, फिर इतने लहंगे।
0: अरे नहीं, अरे बात वो अलग होती है, शादी हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसकी शादी हो तो सबको कपड़े दिलाता है, ये बात होती है।
1: अच्छा ठीक है, तो पहले तुम दिलाना,
0: तुम पहले साइन करके जाओ भैया कि मेरी शादी में तुम्हें कपड़े दिलाऊंगी।
1: अच्छा
0: गाइस, आज के टाइम पे मौखिक पे प्रूफ नहीं करते, लिखित पे प्रूफ करते हैं।
1: अच्छा ठीक है, तो हम लिख के दे देते हैं,
0: साइन करके दो कि मैं तुझे अपनी शादी में लहंगा दिलाऊंगी।
1: ठीक है, पर वो डिपेंड करता है कि पैसे मेरी मर्जी के, लहंगा तुम्हारी मर्जी का।
0: पैसे भी तुम्हारी मर्जी से होंगे, लहंगे मेरी मर्जी से होंगे।
1: अरे बाप रे, फिर तो लड़की जेब खाली करा देगी मेरी।
0: तो गाइस, अभी बाहर का वेदर ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ और नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। लेकिन हल्की हल्की रेनिंग बारिश हो रही है इतना मुझे पता है, लेकिन जहां जहां तेज हो रही है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। और इस यानी कि मौसम में आपने क्या करना है, जो सड़कें हैं वो बड़ी चिकनी हो जाती है, तो इसमें आप स्कूटी खासकर आपने ज्यादा वे में नहीं चलाना है, ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी, क्योंकि स्कूटी के जो पहिया होता है वो बहुत स्लिप खाता है। इस टाइम आपने संभल कर चलाना है गाड़ी। और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रही, फिलहाल एक गाना।

0: या सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत अब गाना एंजॉय कर रहे हैं। तो रे क्या बात है श्रोताओं, कुछ गाने इतने सुंदर होते हैं, इतने लाजवाब होते हैं ना, जिन्हें सुनने के बाद बड़ा ही सुकून मिलता है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और यही अगर मैं समय की बात करूं तो समय हो चुका है 5:23 और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं। और ये समय है यानी कि हर कोई ऑफिस से घर की तरफ निकल चुके हैं। और देखिए बारिश में ना कीचड़ हो जाती है ना, और सड़कों पर यानी कि ट्रैफिक सिस्टम तो लग ही जाता है। और इस बरसात के मौसम में आपने क्या करना है श्रोताओं, आराम से गाड़ी चलाना है क्योंकि कीचड़ भी ज्यादा है। और अपने आस आमने सामने जो पैदल यात्री है, ई रिक्शा वाले हैं, बाइक पर है, स्कूटी पर है, उनका भी हमें ध्यान रखना है। पता चले कि कीचड़ उनके ऊपर जाके गिरे और फिर वो आपको मतलब पीछे से देखे कुछ भी बोल दे, आपको पता नहीं चलेगा ना। इसलिए हमें अपने साथ साथ आसपास का भी ध्यान रखना होता है। और देखिए शाम बड़ी सुहानी हो जाती है मौसम वाले दिन, तो बस आराम से सफर करिए और अपने घर पहुंचिए। अगर आप ऑन द वे हैं और कहीं ट्रैफिक में हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, नंबर है 9823789689 ताकि उस रूट से जो भी जाने वाले हैं वो थोड़ा सा बच जाए। और कहीं कहीं पानी भर गया है तभी आप बता सकते हैं, ताकि मैं और श्रोताओं को बता सकूं कि इस रास्ते से आप जा रहे हैं तो आपको पानी मिलेगा सड़क पे। क्योंकि जब भी बरसात आ जाती है तो सड़कें भी ऐसा लगता है कि भैया तालाब है। चलिए गाइस अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और लौट कर आते हैं। और फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, कनेक्ट रहिए आरजे रीना के साथ, रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमानी आपने, बस ट्यूनिंग करके रखना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी, जो आप सभी के लिए इतने शानदार शानदार गाने और बातें लेकर आते हैं। तो जब आप कनेक्ट रहेंगे ना तो बातें और भी खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो चलिए जी लौट कर आते हैं।

कर करे नमन। और एक हमारे पास मैसेज आता है, विश यू हैप्पी बर्थडे खुशी जी। खुशी जी तक आपका मैसेज है सर, वो पहुंच गया है। और खुशी जी के लिए बर्थडे वाला गाना, बिल्कुल जी, हम आपकी तरफ से बर्थडे वाला गाना जरूर चलाएंगे उनके लिए। और इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन इनका लास्ट 4 डिजिट है, यानी कि 4455।

0: क्या सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: हेलो जी, गुड अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 और समय की बात करो श्रोताओं तो 5:33 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में। और वेदर की बात करूं तो मुरादाबाद की वेदर तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुहानी है, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो वेदर है भैया, यानी कि यूपी बिहार पहाड़ों की जो इलाका है उस तरफ तो बहुत, पहाड़ों की तो क्या ही बात करूं, मतलब उधर तो इतनी तेज बारिश है कि पहाड़ भी गिरने लगे हैं। तो अभी आप मौका बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि पहाड़ों में घूमने के लिए, तो अभी मत जाइए। जब बारिश नॉर्मल हो जाए तब आप जाइएगा घूमने के लिए, क्योंकि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी बिहार और पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। और कल को भी यानी कि बारिश बताया जा रहा है कि कल भी बारिश पूरी पूरी आने की संभावना है। तो अगर बरसात के समय आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ छाता, रेनकोट जरूर लेकर जाए। और जो बाइक पर जाते हैं, ऑफिस, स्कूटी पर जाते हैं, उनके लिए तो खासकर भैया रेडी होकर जाते हैं इतने अच्छे से, और बीच में ही बारिश आ जाए तो गीले हो जाते तो फिर वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए अपने लिए आप रेनकोट जरूर रखिए। रेनकोट तो आपको हर टाइम रखना चाहिए, कब किस टाइम मौसम खराब हो जाए आपको भी नहीं पता होता। इसीलिए आंधी तूफान की भी बहुत ही तगड़े वाली, झटके वाली बताई गई है कि पहाड़ों के इलाकों की तरफ बहुत तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। और वेदर अभी ऐसा ही रहने वाला है कुछ टाइम, मतलब 2-3 दिन के लिए। तो 2-3 दिन के लिए सतर्क रहिए, संभल कर रहिए, बाहर जा रहे हैं तो अपना ध्यान जरूर रखें। और आपको जहाँ पे काफी ज्यादा पानी भर चुका है वहां पर आपको जाने से थोड़ा सा बचिए। सोचिए अगर आप गाड़ी लेकर भी जा रहे हैं, बाइक भी लेकर जा रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी, बाइक, स्कूटी बीच में ही रुक जाए तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं ना। इसीलिए जहाँ पे पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है उस इलाके में जाने से बचिए, उस सड़क पर जाने से बचिए, किसी और रूट को पकड़िए और अपने घर आसानी से पहुंच जाइए। ठीक है जी, ये बरसात है वो हमें सुकून तो देता है, गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। जो इस टाइम बारिश का मौसम, यानी कि खेत के जो फसलें हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो किसान अभी तक फसलें बो रहे थे वो ट्यूबवेल से पानी चलाकर बो रहे थे, लेकिन बारिश के मौसम में जब बारिश आ जाए और खेतों में फसल उगाए जाए तो और फसलों की ना उनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो मौसम बदलता रहेगा, लेकिन अर्जुनीना आप सभी के साथ यही कनेक्ट रहेगी, अपडेट आप सभी तक पहुंचाती रहेगी, बस यही कनेक्ट रही। और अगला गाना शानदार है, इसी गाने के साथ आएंगे, दोबारा कनेक्ट होंगे श्रोता आप सभी के बीच।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ। और समय की बात करूँ श्रोता हो तो 5:53 हो चुके हैं। और आज की तारीख यानी कि 20 जुलाई बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज है इंटरनेशनल मून डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। 20 जुलाई का दिन इतिहास, विज्ञान और बुद्धि महानताओं तीनों को मनाया जाता है। 20 जुलाई यानी कि 1969 को पूरी दुनिया ने वह ऐतिहासिक पल देखा था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। वही दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय संतरंज दिवस जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर चाल सोच समझकर चलनी चाहिए। तो आज यानी कि आसमान की चांद ऊंचाइयों से लेकर सतरंज की बिस्तर तक यही सिखाती है कि आगे बढ़िए और इसी खूबसूरत सोच के साथ अपने पल को एंजॉय करते रहिए।

0: तो आज का दिन हमारे लिए बेहद खास, यानी कि इंटरनेशनल मून डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, यानी कि चंद्रमा पर उतरने की याद दिलाता है जब पहली बार जब उतरे थे। तो कुछ पले और कुछ इतिहास के पन्ने हमारे लिए इतने ज्यादा खास हो जाते हैं ना, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता होता है। और यह पल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 में घोषित इसी दिन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान और चंद्रमा के संत अवशेषण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप जो भी करना चाह रहे हैं इतिहास में, जो भी आप कर रहे हैं, वो अच्छे से लगन से करिए। जो मेहनत करते ना श्रोताओं, वो आज न कल तो रंग जरूर ला देता है। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी में यूं ही खुश रहिए और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और फिर करते हैं ढेर सारी बातें।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल है, क्या अब वंदे भारत यानी कि वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है? अब सवाल ये आ चुका है, तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या होता है, क्या नहीं होता है। सबसे पहले ये समझिए कि अभी यह कानून नहीं बना है। सरकार संसद के मानसून सत्र में एक संशोधन
1: कठिन मुड़ पुलो रखता हूँ रावड़ वे
0: संशोधन विधेयक बिल यानी कि लाने जा रही है। अगर यह बिल संसद के पास हो जाती है और तो अंतरराष्ट्रीय की मंजूरी मिल जाती है, तभी यह कानून लागू होएगा। यानी कि अभी इस पे चर्चे चल रहे हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भैया, इस बिल के प्रस्ताव है यही है कि वंदे मातरम को भी यही कानूनी सुरक्षा मिलेगा जो कि आज राष्ट्रीय गान, तिरंगे और संविधान को मिलती आई है। यानी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, इसके जो गायन है, जो गायक है इसके, उस पे कोई बाधा डालता है या फिर कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सजा के तौर पर 3 साल तक के जुर्माना यानी कि भरना पड़ जाएगा और जेल भी जाना पड़ जाएगा। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम यानी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहचान रहा है, इसीलिए इसकी 150वीं वर्षगांठ के अनुसार इसे अधिक कानूनी सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इस प्रस्ताव पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, यानी कि फिलहाल इस मुद्दे पर अभी थोड़ा सा रुकावटें आ रही हैं, और जिस दिन ये पास हो गया तो वंदे मातरम जो गाना है, जो गायन है, अगर उसके ऊपर कोई अपमान करता है तो भैया सोच समझ कर अब करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, क्योंकि कोई भी चीजें हैं, जैसे ये हमारे राष्ट्रीय गान है, हम उनको भी इतना सम्मान देते हैं, वैसे ही सम्मान मिलना चाहिए। तो चलिए एक प्यारा सा गाना, उसके बाद 6 बजे कनेक्ट होते हैं और देश का ही गाना सुनते हैं। भैया बहुत ही शानदार वाला।

0: प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: क्या बात है जी। गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ श्रोताओं। और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:09 हो चुकी हैं। और कल का मैच देखिए, हमारी टीम इंडिया तो हार गई यानी कि 27 रन से, लेकिन मैच वाकई में बहुत ही शानदार था, बहुत ही प्यारा था। हार जीत तो लगी रहती है श्रोताओं, हार जीत का क्या है, जब जो दो टीम मैदान में उतरती है तो एक नए की तो जीत पक्की होती है, लेकिन हमारी टीम इंडिया ने भी कम दमदार मैच नहीं खेला है, यानी कि इतना दमदार मैच खेला है कि भाई कुछ नहीं कह सकते। यानी कि वही हिटमैन रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो 100 बॉल में 138 रन, यानी कि जब हम मैदान में उतरते हो ना श्रोता, जब हमारी टीम मैदान में उतरती है तो वो सिर्फ अपने लिए मैच नहीं खेलती, अपने देश के लिए मैच खेलती है। उनके पीछे लाखों करोड़ों की आबादी होती है, उनकी उनकी जीत होती है। लेकिन अच्छा मैच रहा और बस थोड़ा सा दुख हुआ लास्ट में कि हमारी टीम इंडिया हार गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर मौके मिलेंगे, आगे फिर मैच होंगे और हम तो है ही अपनी इंडिया टीम के लिए सपोर्ट करने के लिए उनको। जब तक देखिए हारता हुआ इंसान भी जीत जाता है जब आपकी तालियों की फटकार होती है, इसीलिए अपने आसपास भी कोई इंसान अगर हारता हुआ हो तो उसका हौसला बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि वो आपके हौसले से तालियों के जो फटकार है और आपको हौसला देंगे उससे वो बहुत आगे बढ़ सकता है। चलिए कुछ मैसेज आए हैं उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। और ये मैसेज आते हैं हमारे पास, विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, बारिश का कोई प्रोग्राम नहीं है लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा है, क्या बात है जी, मौसम ठंडा है, मौसम अच्छा रहना चाहिए, बस फिलहाल गर्मी से हमें राहत मिल जाए और इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। और इनका कहना है कि और बताइए क्या हाल चाल है, बहुत अच्छे हैं जी। और स्टेशन की तरफ हल्का फुल्का जाम है अभी, ओके, लेकिन स्टेशन की तरफ हल्का फुल्का जाम बस कुछ देर के लिए होता है क्योंकि वहाँ हमेशा आपको ट्रैफिक जाम तो मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए आराम से सफर करिएगा। और जो आजकल के जैन जी है उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सफर में हैं तो ज्यादा रफ्तार में अपनी गाड़ी नहीं चलानी है, आराम से गाड़ी चलानी है क्योंकि थोड़ी देर की लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाता है, इसीलिए आराम से गाड़ी चलाइए। और फिलहाल अगला और मैसेज आता है मेरे पास, हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं? बिंदास है जी, आप बताइए कैसे हैं? और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी, मैम चाय पी लीजिए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल जी, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है और आज हमारी प्यारी सी खुशी मैम जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, विश यू हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच जी। और मैम आज पार्टी होगी, हाँ जी आप भी आइएगा पार्टी में जरूर, हम आपका शो सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, खाना भी बनाने जा रही हूँ, अच्छी बात है जी, खाना पकाइए क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और हर कोई बस शाम के टाइम में ना हर किसी की टेंशन होती है यार क्या बनेगा खाना, ऊपर से जो हमारी प्यारी मम्मियां है ना वो कभी अपने पसंद का खाना तो देखे बनाती नहीं गाइस, वो खाना बनाने से पहले बच्चों से पूछेंगी, पापा से पूछती हैं, बड़ों से पूछती है, अरे क्या खाना है क्या खाना है, उनको सब कुछ और टेंशन ना हो लेकिन खाने की बड़ी टेंशन होती है, अगर खाना उन्होंने कुछ और बना दिया किसी और को पसंद नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए खाने की बड़ी टेंशन होती है। फिलहाल अगला मैसेज आता है, हाय जय श्री राम रीना जी, जय श्री राम जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से। चलिए फिलहाल एक और गाना, उसके बाद लौट कर आते श्रोताओं, आप भी मैसेज करते रहिए, कड़क सवाल भी लेकर आने वाले आप सभी के लिए।
1: तैयार हो जाओ
0: जी, बिल्कुल तैयार हो जाइए जी।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

हाय हाय, लड़की ब्यूटीफुल कर गए चुल। हेलो, गज वाली इवनिंग है जी। और समय की बात करूं तो 6:20 हो चुके हैं श्रोताओं। मौसम ने इतना ज्यादा तहलका मचा रखा है ना भैया, ये यानी कि अभी बताया जा रहा है कि 8 घंटे के अंदर यानी कि 17 राज्यों में मूसलाधार वर्षा आने की संभावना है। और वही अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में यानी कि बहुत ज्यादा बारिश आने के कारण सड़कें हैं वो थोड़ा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से यानी कि 12 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा हो रही है ना कि हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो देखिए भैया, अभी भी मैं कह रही हूँ आपसे, पहाड़ों में अगर घूमने की प्लानिंग आप बना रहे हैं तो थम के बरस यानी कि थम के गरजिएगा, क्योंकि

गरज गए अच्छे से तो बरसते भी बहुत अच्छे, श्रोता हो, इसीलिए अभी नहीं जाना है आपने। और फिलहाल वैष्णो देवी की अगर प्लानिंग कर रहे तो वहां तो अभी मत जाइए, क्योंकि 2 दिन से वहां अभी बंद कर दिया गया है रास्ता। और जैसे मौसम अच्छा होता है आप एंजॉय करिए, घूमिए, खूब मस्ती करिए। इसी के साथ एक और गाना और लेकर आएंगे इसके बाद क्या जी, कड़क सवाल लेकर।

हेलो जी, घट वाली इवनिंग है आरजू रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और इसी के बीच आप सभी के बीच में लेकर आ गई हूँ भैया कड़क सवाल। और बहुत आसान, सच में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो ये है कि चाहे मैन हो, चाहे विमेन हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉय हो, हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन इस्तेमाल वही करता है जो हार मान जाता है। आखिरकार वह क्या है जो हार मानने पर ही इस्तेमाल किया जाता है? हर किसी के अंदर बराबर होता है, गर्ल्स बॉय विमेन मैन हर किसी के अंदर बराबर होते हैं भैया। आखिरकार क्या है वो जो जिंदगी में एक बार हार मान जाते हैं? कौन है वो? सोचिए और हमें मैसेज करिए। नंबर है 9823789689। फॉर एग्जाम्पल बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना आपको कि लेकिन इस्तेमाल वही करता है जो हार मान जाता है अपनी जिंदगी में। सोचिए। फिलहाल एक और गाना आप सभी के बीच लौट कर आ गई भैया।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: जैसे नींद की है।
1: क्या गाना भी बहुत अच्छा है ना गाइस, यानी कि देखिए गुलाबी कलर, ये बोलते हैं कि लड़कियों का फेवरेट वाला कलर होता है गुलाबी कलर। लेकिन गुलाबी के साथ साथ एक और बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, अगर आपको वो पता है तो मैसेज करके बताइए जी। नंबर है 98, तो थोड़ा ये 7 8 9 6 8 9 6। जरूरी नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ पिंक कलर ही बहुत ज्यादा पसंद हो, उसके साथ एक और कलर है जो बहुत ज्यादा पसंद होता है, बहुत बहुत ज्यादा, यानी कि दो का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रहता है लड़कियों के पास। तो आपको पता है तो मैसेज करिए। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान मैंने पूछा है आप सभी से, लेकिन उससे पहले एक अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी सेहत से रिलेटेड होता है। देखिए सेहत ठीक है ना तो हर चीज ठीक है, आप हर काम आसानी से कर पाएंगे। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो आप बिस्तर से अच्छे से उठ भी नहीं पाएंगे गाइस, और सिर्फ ये है कि मिलावट। अब हर चीज में देखा जाए तो मिलावट इतनी ज्यादा आ रही है कुछ कर नहीं सकते। अब वही ऑयल, कच्चे धाने का, सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, यानी कि खाना सब्जी उसके बिना बनते नहीं है। पूरियां तलो, पकौड़े तलो, उसके बिना बिल्कुल भी नहीं बना पाते हैं। अगर उसी में मिलावट आ जाए तो क्या कर पाएंगे आप? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे बस, है ना। तो हम उतने ही पैसे के हम यानी कि पैकेट वाला बॉटल खरीद के लाते हैं सरसों का तेल, क्यों ना हम उतना ही यानी कि क्या बोलते हैं उसको, राई सरसों बोलते हैं, वो आप खरीदिए, फिर उसका तेल निकालिए, वो शुद्ध तेल आप अपने घर में यूज करिए, सरसों लाइए, साबुत सरसों लेकर आइए, उसको मशीन से निकालिए उसका तेल, फिर घर में यूज करिए, उससे आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहले के टाइम में कभी आपने सुना कि किसी को तेल से खाने से दिक्कत आती है, मोटापा बढ़ता है? कुछ भी नहीं होता था पहले, क्योंकि मेहनत करते थे, वही सरसों लेके उनका मशीन से तेल निकलवाते थे और वही यूज करते थे और वो फिट भी रहते थे। तो अब क्यों नहीं, हम अभी भी कर सकते हैं। उतने का हम पैकेट वाला तेल, डिब्बे वाला तेल भी तो लेकर आते हैं ना, उतना ही कि आप खरीदेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि देखिए हर चीज ठीक है, लेकिन बॉडी अगर आपकी ठीक नहीं, आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ श्रोताओं, पैकेट वाला जो भी चीज आप लेकर आते हैं सोच समझ कर खरीदिए, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज में मिलावट है। कहीं भी आप जाए तो देखा होगा आपने, बहुत से बोल देते हैं कि मोटापा चुरा है तो यार ऑयली खाना मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। पहले सब कुछ खाते थे इंसान जब भी फिट रहते थे, अब क्यों? आखिरकार ये रीजन क्या आ गया है? एक तो हमारे अंदर आलस इतना हो गया ना कि कुछ नहीं कर सकते, सबसे बड़ा रीजन है आलस का। दूसरा खाना, हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड की तरफ थोड़ा सा कम जाइए। देखिए खाना खाने के लिए किसी को भी आप मना नहीं कर सकते, जो जिसका मन है वो जरूर खाएगा, लेकिन थोड़ा सा संभल के खाइए। पैकेट वाली चीजें उस पर थोड़ा कम फोकस रखिए। और आज का कड़क सवाल यही है, चाहे विमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉय हो, हर किसी में बराबर होता है जी, लेकिन इस्तेमाल वही करता है जो अपनी जिंदगी में हार मान जाता है। आखिरकार किस चीज का, अभी फॉर एग्जांपल नहीं बता पाएंगे गाइस, मेरे मुंह से ना आंसर स्लिप हो जाता है सच में, कभी कभी मैं आंसर रिवील कर देती हूँ लेकिन आप सबको पता ही नहीं चलता है तो मुझे अभी चुप होना पड़ेगा, फिलहाल आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कॉमन है जो हर चीज में बराबर होता है। कोई वो वही इंसान कोई आगे काम करने जा रहा है या कोई आपको कोई काम देता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए? इतना तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या करते हैं, क्या रीजन देते हैं, वो आप सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9 8 2 3 7 8 9 6 8 9 6, जो कि सब में बराबर है लेकिन इस्तेमाल वही करता है जो जिंदगी में हार मान जाता है। किस चीज का इस्तेमाल करता है सोचिए सोचिए। फिलहाल अगला गाना भी बहुत ही शानदार है भैया, बहुत ही शानदार गाने के बाद फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के बीच।
2: जो मर भी मैं भूल गई,
3: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है ऐसी जगह,
2: जो मैं भूल गई।
1: हाय हाय क्या भाई, अनार
3: का नीचे चलते ना, बटुक का तो बुरा मान जाए, चलिए ना।

0: क्या बात।
1: कहना चाहूंगी, आजकल एक प्रथा चल चुकी है, आज से नहीं काफी टाइम से चला हुआ है, कि शादी में अगर आप जा रहे हैं तो खाना खड़े होकर खाएंगे। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, शादियों में यानी कि बैठकर खाना खाते थे और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब क्या है, हम शादी में जाते हैं खड़े होकर खाना खाते हैं, ऊपर से जल्दी जल्दी खाते हैं, क्यों, इतने सारे मटेरियल होते हैं भैया, हर चीज को चखना होता है। और ये भी ध्यान रखते भाई कोई देख ना रहा हो, बस ये ना बोल दे कि यार कब से खा रहे हो तुम, इसीलिए जल्दी जल्दी खाते हैं। वही खाने का रीजन है जो एसिडिटी हमें बनाता है, परेशान अंदर से बॉडी को हार्म पहुंचाता है। लेकिन वही खाना आप प्रेम से बैठ कर खाना खाते हैं तो आपकी पाचन अच्छी रहती है, आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। और खाने को देखिए जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए, हमें खाने को आराम से खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि आपकी जो पाचन क्रिया है वो स्वस्थ रहे और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ना बने। दूसरी बात ये कि खाते खाते बहुतों की आदत होती है, खाना तो कम खाएंगे, एक दो रोटी खाएंगे लेकिन पानी 4 गिलास पी लेंगे, ये सबसे बड़ी गलती बात गलत है। देखिए अगर पानी पीना चाहते तो खाने से आप 2-3 मिनट पहले पी लीजिए, 1 गिलास पानी पीना है पी लीजिए। अगर बीच में कभी कभी अगर आपको धसका लग जाता है उस टाइम आप पानी पीजिए, अदरवाइज खाना खाते समय तो पानी हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के जस्ट बाद भी नहीं खाना पानी हमें पीना चाहिए, आधे घंटे का वेट करना चाहिए तब पानी पीना चाहिए। क्योंकि जब आप खाना और पानी एक साथ पीते हो तो जो आपका जो खाना है वो पचने में लेट होता है, और दूसरी बात गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनाता है, जलन आपको महसूस कराता है अंदर से, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। फिर यही कहते हैं यार हमने ओवर ईटिंग कर ली है, वो ओवर ईटिंग नहीं होता है, वो हमारी गलती की वजह से होता है, हमारी लापरवाही की वजह से होता है। इसीलिए अपने आप से वादा करिए कि चाहे शादी में जाए, चाहे आप घर रहे, चाहे ऑफिस जाए, कहीं भी जाए, खाने को आराम से खाएंगे, बैठ कर खाएंगे, चबा कर खाएंगे, चाहे कितना भी क्यों ना लेट हो जाए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। और खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पियेंगे। अगर आपको धसका लगता है तो थोड़ा 1-2 गिलास 1-2 घूंट आराम से सिप करके पीजिए, तब देखिए आप कैसे स्वस्थ रहते हैं। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोता, और आप सभी के मैसेज है वो भी शामिल करने हैं। और आज का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है कि जो विमेन है, चाहे मैन है, चाहे गर्ल्स है, चाहे बॉय है, हर किसी के अंदर वो आदत ना बराबर होती है, और इस आदत का इस्तेमाल वही करता है जो हार मान जाता है, आखिरकार क्या है, आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896, क्योंकि अगली बारी आपके मैसेज की ही है।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

दिल जुड़े। आय हाय क्या बात है, बड़ा खूबसूरत पल है। और शाम का मौसम है भैया, मौसम भी बड़ा ही सुहाना है, बड़ा ही औसम है। अगर आप मोहतरमा के साथ बाहर निकल गए भैया तो विलियन बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए जिंदगी में। चलिए फिलहाल मैसेज की बारी है भैया, इनका क्या मैसेज आया है चलिए देखते हैं। आज का कड़क सवाल मैंने यही पूछा है आप सभी से, चाहे मैन विमेन गर्ल बॉय, हर किसी के अंदर एक ही आदत होती है, इस्तेमाल वही करता है जो जिंदगी में हार मान लेता है, आखिरकार क्या है चलिए देखते हैं।

0: कैसी है तेरी बेवफाई, ओ यारा मेरी जान पे बनाई। ये गाना सुनना चाहते हैं सोनू गौतम जी, राजेंद्र गंगवार जी, मौसम।
1: अरे अरे सर, देखिए ये जो बेवफा वाला गाना है, वो वैसे भी शाम के टाइम हर किसी का दिल टूटा हुआ होता है। अब काहे आप बेवफा वाला गाना सुनना चाहते, बताइए जरा। बेचारों के दिल पे मलहम लगा नहीं है, आप उनको घाव भरने घाव को फिर से दोबारा उजागर करना चाहते, बताइए। गलत बात है सर, गलत बात है एकदम। सर कोई तड़कता भड़कता गाना बताइए, वैसे भी मेरा शो का टाइम खत्म हो गया है। तो कल आपके जो गाने कल प्ले करेंगे हम, बस बिंदास वाला गाना बताइएगा। इस टाइम मत ऐसे मत करिए, बेचारों का बहुतों का दिल टूट गया होगा इस टाइम। वो मलहम लगाने के समय आप सोच रहे कि वो जले पर नमक छिड़के, वो तो गलत बात है सर। मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते, आपका सवाल का जवाब है हिम्मत। अगर हिम्मत होता सर तो काम करके जरूर दिखा देता। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, भाभी लक्ष्मी कश्यप जी का जवाब है ताकत। ओ माय गॉड, इतना ताकत लगाते हैं भैया। चलिए फिलहाल अगले मैसेज, एक वॉइस मैसेज आया एक और मेरे पास।
0: क्या मैं भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो सकता हूँ?
1: श्योर, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते सर। किसी के लिए यहाँ पर कुछ भी मना नहीं है, बिंदास है, वेलकम है आपका। अगले मैसेज की बात करूं, ललिता जी का कहना है कि पिंक कलर के साथ कौन सा, व्हाइट। ओके, व्हाइट के साथ एक और है जी, नेवी ब्लू। और इनका कहना है कि बारिश तेज हो चुका है मैम, देखो। अरे क्या बात है भैया, बारिश तेज हो गई है, बल्ले बल्ले मजा आ गया, कति एकदम झकास वाला। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। करुलाया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं इरशाद हुसैन अंसारी जी, इनके परम मित्र है सैयद शारिक अली। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। और इवनिंग मस्ती शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सॉन्ग भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, मौसम बहुत ही औसम हो चुका है, क्या बात है जी। विक्की सागर जी का कहना है
2: ये पुराने सदाबहार गीत।

0: देखिए विकी भैया, आप जो कहना चाहते हैं हम समझ गए हैं और जरूर बताएंगे आपको। और फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि टेक्स्ट मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है श्रोताओं। बताइए, वो भूल जाएंगे तो समझिए हम कैसे भूल सकते हैं आपको। तो चलिए फिलहाल मैसेज देखते हैं हमारे पास किन का मैसेज आया है। हेलो रीना मैम, खुशी दी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा। ये कार्तिक जी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, बिल्कुल जी हम खुशी मैम तक आपका जो मैसेज है वो पहुंचा देंगे, इनफैक्ट उन्होंने सुन ही लिया होगा। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राहुल जी मुरादाबाद से। गुड इवनिंग मैम, और जो आपने सवाल पूछा है आज बहुत आसान है, बहाना होता है। जो इंसान बहाने, जो मतलब हार मान गया जिंदगी में, वो बहाने मारता है, क्योंकि जो इंसान हार नहीं मानता वो बहाना कभी नहीं मारता। करेक्ट आंसर दिया है सर आपने, क्या बात है जी। आप बनते हैं इवनिंग शो के विनर, आप ही है सर विनर। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो विवेक जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि देखिए मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, और सभी से यही कहना चाहूंगी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना रेनकोट जरूर लेकर जाइए। बिल्कुल जी, रेनकोट लेकर जाना चाहिए और आगे यूं ही बढ़ना चाहिए। फिलहाल श्रोताओं समय हो चुका है 7:01, यानी कि न्यूज का समय हो चुका है। अब मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें। बाय।
1: फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्य

0: सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारी सीफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनौ में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रही हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है।
2: सुनो

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंद, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जब जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वादों की नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाय डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहां पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। ये है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्क्ड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करेंगी, उनकी आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? सो गाइज, आई होप आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानती
0: हैं।
1: एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने
0: जमाने में बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 ईयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल जल्दी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
1: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड,
0: वेरी बैड।
1: तो इन्वेस्टिगेशन एंड टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच। आजकल के लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप और उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर,
0: ठीक है।
1: ठीक है, अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर, ठीक है। इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है,
0: ठीक है।
1: ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
0: एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे, ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंट तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रूपए की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर हैं तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन, ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें, प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
0: ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है, आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए।
0: Absolutely.
1: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
1: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज HPV का वैक्सीन आप जरूर कराएं, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारी यू नो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना। जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी।
0: Correct.
1: मंदिर ऊपर हुआ करते थे
0: right.
1: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माय डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माय मदर, ठीक है, मम्मी जब होती हैं तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माय होम आई फॉलो माय रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं?
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमिनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है, विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s के एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
0: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही है. बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चन के आंसर मैम यहाँ पे कर रही है. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
4: अच्छा,
3: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी। आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जलभराव वाले हॉटस्पॉट पर नालों की सफाई की स्थिति की समीक्षा की गई। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा।
7: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
6: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
8: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
6: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा विस्तार से हुई। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों या कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं या अपुष्ट सामग्री पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली के 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया, जिससे 15 लाख लोगों को राहत मिल सके। श्री बिधोड़ी ने कहा कि वर्ष 2010 में जिन क्षेत्रों को ओजोन में डाला गया उनमें दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम मंदिर, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज और डीडीए द्वारा नियोजित ढंग से बनाई गई मदनपुर खादर पुनर्वास कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांव को भी ओजोन क्षेत्र में डाला गया। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को ओजोन से हटाने की मसौदा अधिसूचना भी जारी कर दी थी। श्री बिधोड़ी ने सरकार से अनुरोध किया कि इस सभी क्षेत्रों को ओजोन से हटाया जाए, जिससे उन्हें नियमित किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम किया जा सके।
9: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत यदि कोई वाहन मालिक अपना BS4 या उससे नीचे का हल्का मालवाहक वाहन को स्क्रैप करा के वैसा ही नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 10 वर्षों के लिए 100% मोटर वाहन कर में छूट और 100% पंजीकरण शुल्क माफी दी जाएगी। इसके साथ ही ब्याज में 5% की सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8% की छूट और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि यदि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है तो लाभार्थी को 10 वर्षों के लिए 50% मोटर वाहन कर में छूट, ब्याज में 5% की सब्सिडी और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ दिया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना में पुरानी BS4 या उससे नीचे की बसों को भी शामिल किया गया है। इन बसों को भी मालवाहक वाहनों के समान सभी लाभ उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों को एक वर्ष से अधिक समय से लंबित रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी की देनदारियों में भी राहत दी जाएगी। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
6: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मॉनसून के लिए राजधानी की तैयारियों और शहरी बाढ़ से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने पानी जमा होने वाले चिन्हित हॉटस्पॉट पर क्षमता तुरंत बढ़ाने और दिल्ली में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल हैवी ड्यूटी पंपों को हर समय चालू रखने, लोगों की प्रतिक्रिया और जमीनी हालात की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत पर भी बल दिया। श्री संधू ने जानकारी दी कि पानी जमा होने वाले चिन्हित स्थानों की संख्या वर्ष 2024 में 194 से घटकर वर्ष 2026 में 34 रह गई है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास सभी संबंधित विभागों की लगातार प्लानिंग, तालमेल के साथ काम करने और निरंतर मॉनिटरिंग के असर को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
6: दिल्ली नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज आनंद विहार के अंतर्गत योजना विहार में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निगम ने कहा कि ये विकास कार्य क्षेत्र में बेहतर सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य स्थानीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि हाल ही में बिछाई गई 900 मिलीमीटर व्यास वाली ख्याला मेन लाइन को दो जगहों पर जोड़ने के काम के कारण पंजाबी बाग, नारायणा, इंद्रपुरी और मोतीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बृहस्पतिवार से शुक्रवार तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा ने आज प्रदेश के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अनुमति और विचार विमर्श के बाद जारी सूची में उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई है। श्री मल्होत्रा ने बताया कि प्रदेश संगठन में 10 नेताओं को उपाध्यक्ष

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम ने आज जवाहर नगर क्षेत्र में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने कहा कि ये केंद्र क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को समयबद्ध और नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराएगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ट्रैफिक पाठशाला आयोजित की। ये कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने और छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा आज मादक पदार्थ नष्ट करने के 10वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 1450 किलो के से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 897 करोड़ रुपए है। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त HGS धालीवाल की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पुलिस ने बताया कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रग फ्री भारत को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करने और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति तय करने के बाद शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल असेंबली में ऐतिहासिक बम विस्फोट कर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले बटुकेश्वर दत्त का अद्वितीय साहस, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रभक्ति हर देशवासी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
5: हेलो जी, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज का शो बहुत ही खास है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास जो दूर से मेहमान जुड़ने वाले हैं आपकी शाम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। 23 जून की इवनिंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एंड इस शो में मैं बिल्कुल भी आपके साथ अकेला नहीं हूँ। ऑफकोर्स आई हैव विद मी, कौन है? हेलो जी, हेलो,
6: मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और आज हम आ गए आपकी शाम को और भी शानदार
5: बनाने। लेकिन प्राची, तूने ये नहीं बोला हाय ब्यूटीफुल माय पीपल।
6: ओ, ये तो मैं भूल गई थी, पर थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल।
5: यस यस,
6: हाउ आर यू ऑल डूइंग?
5: एब्सोल्युटली, सब लोग बहुत ही फैंटास्टिक हैं, और हम लोगों की बकवास सुनने के लिए सब रेडी हैं। तू रेडी है सुनाने के लिए?
6: मैं रेडी
5: हूं। हमारे पास बहुत सारी अच्छी बातें हैं, डोंट वरी। आज एक स्पेशल गेस्ट है, पता है प्राची, हमारे शो में।
6: हाँ हाँ, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए, लोगों से इंट्रोड्यूस करने के लिए।
5: एब्सोल्युटली, ट्रू ट्रू। बट एक काम करते हैं, पहले एक अच्छे से गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर उनको मिलवाते हैं, राइट? चलो जी, आप कहीं मत जाओ, तब तक के लिए हम जो एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, आप सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6। आते हैं लौट के जरा सी देर में। हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू, रेडियो
6: बजाती रहिए, गुनगुनाती रहिए।
5: वेरी गुड।

0: वेलकम बैक है। गाने के बाद आपका स्वागत अभिनंदन है। आप जुड़ चुके हैं आनंद एंड प्राची के साथ और हमने जैसे कि वादा किया था आपसे कि आज हम आपको मिलवाएंगे एक स्पेशल गेस्ट से जो आज हमारे शो में हमारे बीच एज आरजे आने वाली है रोल निभाने। अपने आवाज में आप सभी को करेंगी ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज देंगी, बहुत सारी आपकी शाम को अच्छा अच्छा बनाएंगी, बहुत सारी बातें करेंगे आई मीन टू से। और शी इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट लेडी और बहुत ही अच्छा होस्ट करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी शेर और शायरी भी करती हैं। ये कौन हमारे साथ जुड़ी हैं ये तो प्राची को भी नहीं पता है, इट्स सस्पेंस ना।
1: नो ऐसा कुछ नहीं है जो प्राची को नहीं पता है।
0: चलो
1: हमारे साथ है आरजी पूनम।
0: अरे वाह क्या बात है। हाय पूनम हाउ यू। हेलो
2: आई एम वेरी फाइन। हाय हाउ आर यू। गुड इवनिंग है सभी दोस्तों को। मैं हूँ आपकी
0: सब बहुत बढ़िया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने तो आके धड़ धड़ मेरी और प्राची की लाइन ही काट डाली, सब कुछ तो आप ही ने बोल दिया। वेरी गुड। सो पूनम आप बताओ कैसे हालचाल है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं हमारे रेडियो श्रोताओं के सामने, बिल्कुल है ना।
2: जी हाँ बिल्कुल। और रेडियो जॉकी जब तीन रेडियो जॉकी मिलते हैं ना तो
0: खिचड़ी तो नहीं पकेगी बातों की, कुछ और ही होगा बहुत बड़ा सा है ना।
2: हाँ जी हाँ जी, बहुत मस्ती धमाल हो जाती है जब हम सब एक साथ मिलकर बातें करते हैं तो। और क्या मस्ती धमाल होने वाला है ये तो आपको रेडियो चौकी आनंद जी और प्राची जी बताएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी रेडियो चौकी है ऐसे बोल के हमें जो है शर्मिंदा ना करें। क्यों प्राची
1: आपकी शीर और शायरी जो हमने सुनी पहले, हम तो बिल्कुल आपके फैन हो गए और हम चाहते हैं हमारे रेडियो लिसनर्स को भी प्लीज आप अपनी कोई शायरियाँ सुना दीजिए।
0: अभी तो नहीं सुनवाऊंगा मैं इतनी जल्दी कैसे सुनाने के लिए मौका दूंगा। पूनम थोड़ा इंतजार करवाएंगे ना लिसनर्स को, है ना।
2: जी हाँ बिल्कुल। और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए श्रोताओं।
0: बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस। अच्छा तो पूनम एक बात बताओ, अभी थोड़ा सा आपसे पहले बतिया लेते हैं आपके यहाँ का मौसम का हालचाल बताओ कैसा हो रहा है।
2: कि हमारे यहाँ का मौसम तो बहुत ही क्या ही बोले अब आनंद जी, बहुत गर्म मौसम है और बारिश हो नहीं रही है, बस बारिश का इंतजार है। जैसे कि आप सब इंतजार करते हैं वैसे हम भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बस बारिश हो जाए।
0: क्या बात है क्या बात है। और बाकी कानपुर के ठगू के लड्डू तो बहुत खा रही हो आजकल आप, हमें सुनने में आया है।
2: ठगू के लड्डू तो क्या ही कहना आनंद जी, आइए आप दोनों आइए, मैं बिल्कुल ठगू के लड्डू खिलाऊंगी। और
0: तुम्हें पता है प्राची कानपुर में ठगू के लड्डू बहुत फेमस है, प्राची से पूछ लेते हैं जरा।
1: अरे नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता है की ठगू के लड्डू क्या होते हैं, प्लीज आप हमें पूनम जी बताइए क्या होता है।
2: प्राची जी एक बार खाएंगी ना तो बार बार खाएंगी।
0: अरे वाह
1: अच्छा, कुछ रेसिपी शेयर करिए।
0: वो रेसिपी शेयर नहीं करेगी, वो बहुत फेमस लड्डू है, उसकी रेसिपी थोड़ी शेयर कर देंगे हम सस्ते में, है ना क्यों पूनम।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: मेन मेन इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए।
0: हाँ हाँ ये हो सकता है कि ठगू के लड्डू में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो इसको जानना है।
2: अच्छा जी तो वो तो फिर ठगू के पास चलना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली
0: कानपुर का दिस इज वेरी पॉपुलर लड्डू पता है। हाँ या जैसे आगरा का पेठा फेमस है ना, वैसे ही कानपुर के ठगू के लड्डू दिस इज वेरी।
1: लड्डू का नाम जो ठगू रखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है, इसकी क्या कहानी है।
0: इसकी कहानी हम बाद में सुनाएंगे, क्यों पूनम एक गाना सुने फिर अच्छा सा।
2: हाँ जी बिल्कुल, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस गीत के बाद पूनम और प्राची की हम आपस में गिराएंगे क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं किया, एक दूसरे से बात नहीं की।
1: और मैं आपको बताऊंगी पूनम और प्राची में खास कनेक्शन।
0: एब्सोल्युटली। तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
0: क्या बात है, एक ब्यूटीफुल ट्रैक। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ पूनम के साथ और साथ में प्राची भी दे रही है मेरा साथ। सो चलिए वापस चलते हैं अपनी प्यारी सी दोस्त पूनम के पास। पूनम क्या कर रही है, वो सो तो नहीं गई हमारी बातें सुन के? हेलो
1: हेलो,
0: मुझे लगा पूनम सो गई होगी। वेलकम बैक है पूनम जी। हाँ जी,
1: बिल्कुल शुक्रिया है बहुत आपका।
0: पूनम पूरा मुरादाबाद आपकी आवाज सुन रहा है आज की शाम। पहले तो ये बताओ कैसा फील कर रही हो
1: जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं और हमारी आवाज को भी सुन रहे हैं, तो सभी लिसनर बताएंगे कि लिसनर को कैसा लग रहा है कार्यक्रम सुनकर।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में सबको बहुत आनंद आ रहा है और जैसे कि मैंने कहा था कि पूनम और प्राची की थोड़ी बातचीत कराएंगे, तो पूनम जी मैं चाहूंगा हमारी प्राची जो होस्ट है उनसे भी आप थोड़ी बातचीत करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो प्राची जी।
2: हेलो पूनम जी, कैसी है आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम एक साथ तीन इकट्ठा हुए रेडियो जॉकी। तो बताइए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है प्राची जी बात करके और कार्यक्रम में जुड़ के?
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम ठीक कहा कि हमें बहुत मजा आ रहा है कि हम तीन आज एक साथ जुड़े और हम बहुत सारा फन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं और जैसा
1: खिचड़ी पका रहे हैं हम,
2: हाँ,
1: है ना?
2: और पूनम जी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपकी और मेरे नाम में एक खास कनेक्शन है, इसको हम अभी बता देते हैं अपने लिसनर्स को कि जो पूनम नाम है वो मेरी मम्मी का नाम है। तो जब मैंने आपका नाम सुना ना कि आपका नाम पूनम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
1: क्योंकि आपका नाम प्राची, मम्मी का नाम पूनम और मेरा नाम पूनम, क्या कनेक्शन है यार।
2: और वो विवाह मूवी वाली पूनम याद आ जाती है ना
1: प्राची जी। तो हम दोनों का देखिए कितना बढ़िया कनेक्शन है और कितना बढ़िया सहयोग है आज कि हम तीनों इकट्ठा है एक साथ।
2: और वैसे हमारे लिसनर्स, आप बताइए कि जो पीपी नाम की गर्ल्स होती है उनका जो होता है वाइब्स ज्यादा मैच करती है। मेरी अब तक जितने भी पी नाम वाली फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरी वाइब्स बहुत मैच करती है। तो लिसनर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतना पूनम पूनम हो गया है हमारी शादी में। पूनम जी, वो गाना तो डेफिनेटली लगता है,
2: प्ले करना पड़ेगा
0: प्ले, है ना?
2: हमारी शादी को
0: अभी हफ्ते हैं बाकी, 400 बरस लगे, कुछ ऐसे गाना है। पूनम जी, इतना पूनम पूनम हो गया है तो ये विवाह फिल्म का गाना तो सुनना बनता है। हो पूनम हो पूनम हो प्राची हो पूनम, अच्छा गाना है ये ना।
1: अच्छा, आप भी गुनगुना रहे हैं?
0: हाँ जी हाँ जी। तो पूनम जी, कुछ लाइनें हो जाएं इस गाने से पहले, हम चाहेंगे कि कुछ इरशाद अर्ज किया है पूनम जी आपने हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल, तो मैं सभी लिसनरों के लिए बोल देती हूँ एक अच्छी सी लाइन और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आनंद जी,
0: जी जी,
1: ध्यान से सुनिएगा और मैं अब अर्ज कर रही हूँ। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते।
0: वाह।
1: फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते, बस जाते हैं वो एक दिल में आकर जो दिल से कभी नहीं जाते।
0: वाह।
2: अरे वाह।
1: तो फिलहाल ये जो लाइनें हैं, लिसनर आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी इसके लिए।

0: बहुत शुक्रिया। आप सभी को हम बोलेंगे और आप सभी सुन रहे हैं FM मुरादाबाद और बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी आप सुनने वाले हैं प्राची के साथ, आनंद जी के साथ और साथ साथ
1: इसी बात पे हम भी कहना चाहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। वाह तो कर दो कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। प्राची, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, कि लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। पूनम जी, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता,
0: लेकिन हमारे लिसनरों की तरह कोई अनमोल नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच में। इसी बात पे गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस मिलते हैं। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
2: Good morning.

0: Excuse me.
1: Excuse me, tea, coffee?

0: Fasten your seat belt, sir.
1: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
0: वेलकम बैक यू लिसनर, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आप जुड़े हैं प्राची आनंद और पूनम जी के साथ।
2: बिल्कुल, और पूनम जी हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज के शाम, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ठगू के लड्डू की स्टोरी प्राची को जाननी थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने इसको ठग लिया बातों बातों में, है ना पूनम?
3: हाँ, तो कानपुरिया का यही तो काम है ना, कानपुरिया जो होते हैं ना, वो पहले बातों बातों में ठग लेते हैं।
2: बेचारी प्राची सीधी साधी लड़की, उसको क्या पता कि कानपुरिया बहुत कंटाप मारते हैं।
3: बिल्कुल,
2: बहुत भौकाल मारते हैं, पता
0: अच्छा
2: है?
0: तो पूनम जी, यही स्टोरी है क्या जो मतलब इसलिए लड्डू का नाम ठग्गू पड़ गया?
3: नहीं नहीं, ये तो वैसे स्टोरी नहीं है, और स्टोरी तो कुछ और ही है ठग्गू लड्डू की। फिलहाल तो फिर कभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर जानेंगे क्या स्टोरी है।
0: जब से आपने मुझे ठग्गू के लड्डू के बारे में बताया ना, तो मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि ठग्गू लड्डू ठग्गू कैसे बन गया।
2: प्राची की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और मेरे अंदर की श्वाय बाहर निकल गई है, क्या मैं सुना जू?
3: जी बिल्कुल सुना दीजिए।
2: ठीक है, मेरी शायरी है कि भैया आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए आप हमारे साथ अपना साथ, आपसे ही तो हमारे शो की जान है।
0: अरे बाबा, और इस शायरी को हम डेडिकेट करते हैं अपनी आरजी पूनम जी को, क्योंकि आज उन्होंने हमारे शो में आके हमारा जो मतलब एनर्जी लेवल है
2: और अलग कर दिया,
0: बहुत हैपनिंग कर दिया है, और हम सच में बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं।
2: तो पूनम
0: आपके साथ आरजी पूनम जी, तो थैंक यू सो मच
2: फॉर कमिंग ऑन आवर शो।
3: बिल्कुल, मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ सभी श्रोताओं के लिए, और शायरी कुछ इस तरह से है। कश्ती खोज हुए किनारों का पता खोज लेती है, कश्ती खोज हुए किनारों का पता खोज लेती है, आए हुए तूफानों का रुख मोड़ देती है। जिंदगी इस तरह से बदलती है, जिंदगी कुछ इस तरह से बदलती है कि जहाँ भी मोड़ो जिंदगी और मुड़ जाती है।
2: वाह वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब आनंद आ गया जिसको पढ़कर। अब मुझे लगता है कि प्राची भी कुछ सुनाने वाली है पूनम जी इसी बात पर।
3: जी हाँ बिल्कुल, अब प्राची भी बिल्कुल सुनाने वाली है और हम सब सुनने वाले हैं।
2: वेरी गुड,
0: थैंक यू सो मच पूनम जी कि आप मेरी शायरी सुनने के लिए इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। तो आपके लिए और हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मुझे याद आ रही है। दिल की बात जुबान तक आती है, दिल की बात जुबान तक आती है, और जुबान से गीत बन जाते हैं, और जुबान से गीत बन जाते हैं। आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, यही सर महफिल मुस्कुराहट बन जाती है।
2: वाह वाह वाह वाह, दोस्तों अभी फरमाइश मत भेजिएगा, क्योंकि अभी हम आपकी प्ले नहीं कर पाएंगे फरमाइश। प्राची ने इसमें फरमाइश का जिक्र कर दिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी बात है, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी बातों की, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी प्यारी शेरो शायरी की, वो हम पढ़ेंगे, उनको हम शामिल करेंगे। गाने तो आप सुनते ही रहते हैं, क्यों प्राची?
0: बिल्कुल सुनते रहते हैं।
2: तो पूनम, इस पे कुछ कहना चाहोगी इस शायरी पे आप?
3: जी मैं तो बस यही कहूंगी कि श्रोताओं, इतनी अच्छी चीज जो शेरो शायरी आप सब सुन रहे हैं ना, और बातों की जो खिचड़ी हम सब पका रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। और आप सभी को शेरो शायरी जैसे कि हम सब कह रहे हैं वैसे ही याद आ रही हूँ, तो आप भी शेरो शायरी भेज सकते हैं और अपने अंदाज में, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी बात में मैं पूनम जी आपके लिए कहना चाहता हूँ कि दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर निभाने का।
3: बिल्कुल,
2: मैं चाहूंगा इसी पर दो लाइनें आपकी भी हो जाएं पूनम जी।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो इसी बात पे मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बोलते हैं, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, देखते हैं बस आपको एक झलक, दिल हो जाता बेचैन है।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात पर एक गाना तो निकल रहा है हमारे दिल की तरंगों से, एक बेहतरीन ट्रैक, आपके लिए निकल रहा है पूनम जी, हम आपके लिए गाना भेजते हैं, ठीक है
3: जी जी।
2: और श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, पूनम जी हमारे साथ बनी रहेंगी इस प्रोग्राम में। अगर आप भी कुछ ऐसी प्यारी बातें करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कहाँ पर मैसेज करेंगे प्राची?
0: आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 9837896896 पर।
2: चलो एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद आप

0: वेलकम बैक है खूबसूरत ट्रैक। आज 23 जून है, आनंद के साथ हैं, साथ में प्राची है और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। यस, आज हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हैं कानपुर से, जो अपने आप में एक बहुत ही बेमिसाल और कमाल की आर्टिस्ट हैं। रेडियो जॉकी भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करती हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। प्राची, उनकी आवाज कितनी मजेदार लग रही है ना, तुझे जेन्युइनली बता।
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे पूनम जी की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे सच में पूनम जी की वाइब्स हमसे इतना मैच कर रही हैं कि हम जो हमारा शो है और जो हमारा जो एंजॉय जब भी हम शो करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, अच्छा फील करते हैं, पर आज पूनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो हमारा जो ये एंजॉयमेंट का जो लेवल है वो और भी हाई हो गया है। सो थैंक यू सो मच आरजी पूनम जी कि आपने आके हमारे शो को और भी मजेदार बना दिया है और हमारी लिसनर्स को भी 100% बहुत बहुत मजा आ रहा होगा।
0: बिल्कुल पूनम, तो अब आप बताइए पूनम, इतनी सारी तारीफ लेके आप कहाँ जाएंगी, कानपुर जाएंगी या सीधा लखनऊ या मुरादाबाद आना चाहोगी?
2: मैं उड़ूंगी, मैं आसमान में उड़ूंगी।
0: नहीं, आसमान में मत उड़िए। हाँ हाँ हाँ बोलो।
2: इतनी सारी तारीफ जब हमें मिलती है ना, तो मैं ऊपर आसमान में उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है।
1: पूनम जी, सच में ये तारीफ नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बटरिंग नहीं है, ये हमारे दिल के सच्चे अल्फाज हैं आपके लिए।
2: जी जी जी, थैंक यू।
1: इन्हें आप संभाल के रखिएगा प्लीज।
2: थैंक यू
1: सो मच।
0: बहुत बढ़िया, आप ऊपर उड़ोगी तो हम आपको खींच लेंगे उड़ते बादल से। पूछो कहाँ गई है पूनम।
2: अच्छा, तो आप पता पूछ लेंगे उड़ते बादल से।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो पूनम जी, मुरादाबाद की तमाम जनता इस वक्त गाड़ियों में आपको सुन रही है, तो आपके मन में नहीं ख्याल आता कि कभी मुरादाबाद जाना चाहिए, मुरादाबाद की जनता से मिलने? क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल पूनम जी, मुरादाबाद की जनता और मुरादाबाद की आरजीज आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेताब हैं। आप कब आएंगी?
2: हाँ तो मैं मुरादाबाद बहुत जल्द आऊंगी। सब जो जितने भी हमें पता सुन रहे हैं ना, सभी को एक सरप्राइज मिलेगा जब मैं आऊंगी मुरादाबाद में। और सबसे पहले तो मैं आनंद जी आपसे मिलने आऊंगी, प्राची जी से।
1: थैंक यू,
2: क्योंकि आपकी आवाज और आपका जो अंदाज है ना, मुरादाबाद को सच में हिला के रख देता है।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच। और आप भी और आपके ठगू के लड्डू भी जो है हमें हिलाने को तैयार बैठे हैं।
1: प्लीज आप ठगू के लड्डू लेकर आइएगा, क्योंकि ठगू के लड्डू हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे हमें ठगा हुआ फील
2: के लड्डू तो क्या है इसके पीछे, क्योंकि कितने जो है ना
1: कैसा टेस्ट आता है,
2: बहुत मन हो रहा है खाने का।
0: नाइस नाइस। लेकिन ये तो कानपुर में हर जगह पर मिलते हैं, कुछ ही जगहों पर फेमस है।
2: जी हाँ बिल्कुल, हर जगह पर हम ठगू के लड्डू खा सकते हैं, कानपुर भर में ही खा सकते हैं बस।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अलावा और लखनऊ वगैरह में नहीं मिलेंगे ना?
2: नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे ठगू के लड्डू, बस एक ही दुकान है कानपुर में, वहाँ पे जाके खा सकते हैं।
0: ओके ओके ओके, मतलब काफी स्पेशल वाली कह सकते हैं वाइव है ना लड्डू की, और कहीं मिल ही नहीं पाएंगे वो।
2: जी जी जी, और कहीं वो लड्डू मिल ही नहीं सकते हैं।
0: ओके तो पूनम जी, लड्डू मिले ना मिले, आपकी शायरी तो मिले मेरे मुरादाबादी को, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, कुछ हो जाए प्यारी सी शेर व शायरी।
2: हाँ बिल्कुल, तो बड़ी देर से इंतजार हो रहा है मेरी शायरी का, चलिए मैं सुना देती हूँ एक बहुत प्यारी सी शायरी है। भूल गया हमको ये जहाँ, मगर इस जहाँ को ना हम भूल पाए। भूल गया इस जहाँ, भूल गया हमको ये जहाँ, मगर हम इस जहाँ को ना भूल पाए। समझ गए हम इस प्यार को, मगर लोग हमें ना समझ पाए।
0: क्या बात है पूनम जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, रुमाल कर दिया, बहुत बढ़िया।
2: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लग रहा है आप सभी से बातें हो रही हैं और इतनी अच्छी सी सरोसारी और इतनी प्यारी सी चटपटी सी बातें सुनने को मिल रही है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा।
1: तो सच में पूनम जी, आपने अपनी शायरियों के साथ हमारी शाम को अभी शानदार बना दिया है। जितने भी हमारे लिसनर्स घर वापस जा रहे हैं, तो वो हमारी इस चैट, मतलब हम लोग जो ये चैट चैट कर रहे हैं उसे सुनकर सच में उनका भी वो होता है ना, लाइक ऑफिस से हम बहुत स्ट्रेस से आते हैं, पर हम पक्का हमारी जो बातें है ना, हम उन्होंने हमारे लिसनर्स को बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत रिलैक्स कर दिया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि इनकी बकबक में ना वो अपने सारे स्ट्रेस भूल गए होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है प्राची जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब प्राची से भी एक शेरो शायरी होनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि प्राची भी कुछ हमारे लिसनर्स को अच्छी सी शेरो शायरी सुनाए।
1: तो ये शायरी है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमसे डेली जुड़े रहते हैं।
0: हाँ, जरा सुना दो।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है,
0: वाह
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है।
0: अरे वाह क्या बात है, शान के आगे तो मेरी आरजे आनंद के नाम से पहचान है। वाह वाह
1: अरे वाह अरे
0: नहीं, तू पूरी शायरी कर
2: ये
0: दे
2: तो
0: यार,
2: बिल्कुल
0: मैं बीच
2: अच्छा
0: में।
2: जोड़ दिया आनंद जी आपने।
0: अरे नहीं यार,
2: जी
0: पहले उनकी शायरी सुनने देते
2: मुस्कुराहट की
0: हैं।
2: शान से तो आरजे आनंद जी की पहचान है।
1: अरे वाह, वैसे आरजे आनंद जी जो है ना, ये मतलब ऑन द स्पॉट एकदम बढ़िया राइम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। चलिए फिलहाल,
0: बैक टू शायरी, बैक टू शायरी ना।
1: चलिए फिलहाल हम अपनी शायरी पे वापस आते हैं।
0: जी
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, आपसे ही तो हमारी शो की जान है, आपसे ही तो हमारी शो की जान
0: तो
1: है।
0: आज शो की जान तो पूनम है ना।
1: हाँ, बिल्कुल आप पूनम जी, आप हमारी शो की जान है।
2: नहीं, हमारे श्रोता शो की जान है, बिल्कुल हमारे जो लिसनर है, जो दिल के करीब है और हमेशा साथ निभाते हैं एफएम मुरादाबाद का, सभी
0: बिल्कुल
2: हमारे श्रोता इस शो की जान है।
1: वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरजी पूनम
0: पूनम
1: जी,
0: जी
1: पर
0: मैं आपसे एक
1: आपसे
0: सवाल
1: जब
0: पूछ
1: गेस्ट
0: सकता
1: आ
0: हूँ?
1: जाते हैं ना तो हमारा शो
0: हाँ,
1: और
0: पहले
1: बेहतर
0: प्राची
1: सिंगर
0: की बात
1: जाता
0: पूरी
1: है।
0: हो जाए फिर मैं पूछूंगा। क्या कह रहे हो, स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं?
1: पर जब आरजी पूनम जी जैसे स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं तो हमारे शो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना।
0: एब्सोल्युटली गॉट इट। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि पूनम जी इतनी अच्छी आवाज लेके घूम रही है, खाती क्या है, पूछेंगे इनसे कौन सी चाय का ये कमाल है या कौन सी रोटी ये खाती है, पूछेंगे जरूर
2: फिलहाल मैं
0: इनसे।
2: बता दूं,
0: हाँ
2: मुझे दाल चावल जो देसी खाना है ना, दाल चावल वही मैं खाती हूँ और मुझे बहुत
0: हम भी
2: पसंद
0: जो है
2: है।
0: पूनम जी देसी खाना खाते हैं, हम चाइनीज बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम भी इंडियन
2: जी
0: खाते हैं। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल, पर आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है,
2: आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है, बिल्कुल प्राची जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बताइए।
0: आपकी बातों में, मेरी बातों में ऐसा कुछ होना हो, लेकिन आपकी बातों में है दाल चावल का स्वाद और मेरी बातों में है लाल मिर्च का स्वाद।
2: ये तो आनंद जी ने बात को टाल दिया प्राची जी ने।
1: हाँ, पर उसमें तो आनंद जी एक्सपर्ट है।
0: बिल्कुल। देखो यार, ऐसा है, एक्सपर्ट की जो है बहुत टांग खिंचाई हो रही है, तो हम एक गाना सुन लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तो एक प्यारा सा गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन सा स्टेशन सुन रहे हैं?
1: हम सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद
0: 89.6, रेडियो
1: बजाते
0: रहो
1: गुनगुनाते
0: रहो। बहुत ही बढ़िया, चलिए मिलते हैं गाने के बाद।

0: मीडिया ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसिस फ्रेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
4: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
6: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने, मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल

कार्यकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headline.
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

नमस्कार मुरादाबाद, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आज हो रहा है थोड़ा सा मौसम मस्त, पता है साहब, पता है आप भी ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी जानी चाहिए कहीं और, मगर जाना पहले है घर, तो घर भी होके आइए साहब, फिर थोड़ा दोस्तों के साथ ड्राइव तो बनता ही है। तो मस्ती का मौसम है और मस्त भरे गाने सुनने हैं, तो FM मुरादाबाद आपके साथ है ना। हम करेंगे आज खूब सारी बातें, थोड़ी सी दिलचस्प भी, और पता करेंगे कि मुरादाबाद में आपका फेवरेट हैंगआउट प्लेस कौन सा है, कौन सी ऐसी जगह जो मुरादाबाद में आपको बहुत पसंदीदा है, और अगर मुरादाबाद के आसपास भी हैं तो भी बताइए साहब कि आपकी पसंदीदा जगह कहाँ पर है जहाँ थोड़ा सा सुकून मिलता है और मन करता है कि जब भी मौका मिले एक बार तो मैं घूम ही आऊँ। या फिर कोई स्पेशल पर्सन या कोई दोस्त आपका कि उसके साथ ही उस जगह पे मज़ा आता है आपको घूमने का, तो हमें करें फटाफट व्हाट्सएप का नंबर तो बता देता हूँ 9837896896, और इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल करके ज़रूर बताएं, अपना मनपसंद गाना भी बताएं हमें कि अगर आप आज उसी जगह पे हैं इत्तेफाक से आपकी फेवरेट जगह पे, तो आपका फेवरेट गाना भी बजेगा बॉस। हाँ, क्या पता प्रेम वंडरलैंड के पास हो या फिर रेलवे स्टेशन के पास हो या फिर रामगंगा में कहीं ना कहीं चटोरी गली के आसपास घूम रहे हो। हर शहर की एक पहचान होती है, हर गली की एक मुस्कान होती है, जो यादें किसी खास जगह से जुड़ जाए वही जगह जिंदगी की जान होती है। तो चलिए करते हैं तब तक एक बढ़िया सा गाना प्ले, थोड़ा सा एंजॉय, और आप फटाफट मिलाएं कॉल या करें SMS 9837896896 पे।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां जाती है ना मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। किसी को शॉपिंग पसंद है तो किसी को अपने पास में गली में पनवाड़ी पसंद है, तो किसी को भैया लॉन्ग ड्राइव भी पसंद है अपने शहर में, और किसी को स्ट्रीट फूड भी। तो स्ट्रीट फूड तो सच में कहते हैं ना कि जैसी मन उठा भैया चलो आज वहीं पे चल के आज एक खा लेते हैं पिज़्ज़ा या खा लेते हैं चाप, चलो फटाफट MDA। या फिर किसी को अपने के साथ सिर्फ एक जगह साइलेंटली बैठना पसंद है, उसका एम्बियंस इतना अच्छा लगता है ना कि भाई बैठे रहो थोड़ी देर, थोड़ी सी टेंशन अपनी रिलीज कर दो। हमारे पास अभी मैसेज किया है तनिषा जी ने सिविल लाइन से, मुझे प्रेम वंडरलैंड जाना बहुत पसंद है, बचपन की बहुत यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। क्या बात कही तनिषा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बचपन की यादें ना जो हैं कभी भी पुरानी नहीं होती। हमारी भी यादें हैं प्रेम वंडरलैंड के साथ, जब नया नया ओपन हुआ तो हमने भी खूब मस्ती करी। सिर्फ एक वाटर साइड, मतलब होता है ना कभी कभी जाने से पहले एक दिन पहले जब प्रोग्राम बन जाता है कि भैया कल जाना है, संडे में जाना है, तो उससे एक दिन पहले सपने भी वैसे आने लगते हैं कि हाँ आज तो ये वाली स्लाइड भी आके ट्राई करेंगे, ऐसे ही होता है। तो भैया गाड़ी में बैठे बैठे भी, घर में पहुँचते पहुँचते भी कई सारे सपने जो है ना एकदम आँखों के सामने आ जाते हैं कि ये ऐसे चल रहा है, ये इसको ऐसे चलना था, और घर पर जाके

0: से होना है। बचपन की गलियों में जब भी लौट जाते हैं चेहरे पर मुस्कान खुद ही आ जाती है। यादें कभी बूढ़ी नहीं होती, बस और भी खूबसूरत हो जाती है। तो चलिए अपने हम पहले लिसनर से बात करते हैं कि क्या वो बचपन की यादें लेके और कौन सी मुरादाबाद की जगह उन्हें पसंद है। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप और कौन बोल रहे हैं, जरूर बताएं हमें। धैर्य, कैसे हैं आप, पढ़ाई सही चल रही है आपकी? आवाज कम आ रही है, क्या बात, कहीं मतलब आज डिनर टाइम पे हो गया या अभी डिनर हुआ नहीं है?
1: अभी हुआ नहीं है, होने वाला है।
0: अभी होने वाला है, तो आज ऐसा तो नहीं हुआ कि सुबह तैयार हुए और इस आस में सोच रहे होंगे कि अब एक मैसेज आ जाए स्कूल से और आज रेनी डे डिक्लेयर हो जाए? हुआ आज ऐसे? नहीं हुआ तो कैसा लगता है? मतलब कभी कभी लगता है अच्छा है कि यार आज हो ही जाता रेनी डे, इतनी बारिश हो रही है, गली में तो पानी भर गया, मगर मेरे स्कूल के आसपास क्यों नहीं पानी भरता? हाँ भाई साहब, सोचे आज ही सारी पढ़ाई होनी है, आज ही सारे टीचर्स भी स्विमिंग करके पहुंच जाएंगे और स्टूडेंट्स भी छलांग मार के पहुंच जाएंगे, है ना? तो बताओ मुरादाबाद में अपनी कोई फेवरेट प्लेस या मुरादाबाद के आसपास कोई तुम्हारी पसंदीदा जगह?
1: मेरी फेवरेट प्लेस तो वो है
0: कौन सा मॉल? वेव मॉल? वेव मॉल
1: नहीं, थिएटर। थिएटर?
0: थिएटर?
1: वेव, वेव, वेव।
0: वेव का थिएटर? थिएटर सिनेमा, वेव सिनेमा। तो ये आपकी पसंदीदा जगह है या पसंदीदा पिक्चर देखने के लिए जाते हो इसलिए पसंदीदा जगह है?
1: दोनों।
0: दोनों ही? तो कौन सी मूवी देखी थी लास्ट वेव सिनेमाज में?
1: लास्ट तो मेरे को बहुत पहले देखी थी,
0: अच्छा। तो एक बात और बताओ, वेव सिनेमाज के अलावा भी इतने सारे सिनेमाज हैं, मेगलानी भी है, पीवीआर भी है, तो वेव क्यों पसंद है इतना, क्या रीजन है? हाँ, तो इसका मतलब आप वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का साउंड एंजॉय करते हो इसलिए आपको वेव सिनेमाज ज्यादा पसंद है।
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई जगह मुरादाबाद में इसके अलावा जो पसंद हो, जहाँ या मम्मी पापा को पसंद हो कि मम्मी पापा को वो जगह बहुत पसंद है और मुझे वहाँ पे ले जाते हैं घुमाने?
1: नहीं है।
0: अच्छा, मम्मी पापा की कोई पसंदीदा जगह ही नहीं है मुरादाबाद में? ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि चलो आज एक जगह पीली कोठी के पास आइसक्रीम खाने चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना?
1: हाँ,
0: सही है, तुम साइकिल बहुत चला रहे हो आजकल।
1: हाँ।
0: सही है, तो बहुत अच्छा लगा आज आपने कॉल करी और अपनी पसंदीदा जगह बताई। अब ये बताओ पसंदीदा गाना कौन सा सुनोगे?
1: वो आज की मूवी थी नाच नाचो।
0: तो नाचते भी हो नहीं या सबको नचाते हो घर पे? सही है, दोनों ही काम सही कर रहे हो फिर तुम तो, बहुत ही ओबीडियंट बच्चे हो, बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद धैर्य, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े, आपने बताया कि कहाँ मस्ती लगती है आपको, कौन सी जगह मुरादाबाद में अच्छी लगती है। बाय बाय। और जल्दी से खाना खा लो और सो जाओ, फिर सुबह टाइम से जाना है स्कूल। तो जनाब हमारे साथ तो जुड़े थे धैर्य साहब, जो कह रहे हैं कि आज छुट्टी होते होते बज गई, रेनी डे के पूरे आसार थे और इनकी फेवरेट प्लेस जो है ना मुरादाबाद में वो है वेव सिनेमास। जहाँ जाते हैं मूवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उस मूवी के पार्ट ही बन गए हैं। अगर एक आध विलन ने घुसा मार दिया तो इसका मतलब ये तो पड़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे और पर्दे पे जाके लगा देंगे एक दो दो तीन घूसे। तो जनाब तब तक करते हैं इनके गाने का एंजॉय, जो इनका पसंदीदा गाना है नाचो नाचो। आशीष जी का मैसेज आया है रामपुर उत्तर प्रदेश से, कहते हैं करनी नहीं आती मोहब्बत फिर भी करते हो, पाना भी नहीं चाहते और खोने से भी डरते हो। क्या बात है आशीष कुमार जी, बहुत ही बढ़िया आपने लाइनें लिखी हैं और ज़रूर आपके पसंदीदा गाना भी प्ले होगा। बस जुड़े रहिए और हमसे ट्यून अप रहिए, 9837896896 पे कॉल करिए।

पटका है ये देसी घमेला, कैसा रहा ये का यकी, नाचो नाचो नाचो।

arriba.

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो अब तक तो आप अपनी फेवरेट जगह पे पहुंच ही गए होंगे और फेवरेट गाना भी सुनना चाहते होंगे, तो करो रमेश 9837896896 पे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो गाना सुन लो ना, वो अपने मन का म्यूजिक सुन लो तो मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे पास हमारे एक लिसनर हैं रोहित जी, उनका मैसेज आया है, हम हर संडे फैमिली के साथ गांधी पार्क जाते हैं। क्या बात है रोहित जी, फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त ही असली इन्वेस्टमेंट होता है। और गांधी पार्क हम भी बचपन में बहुत घूमते थे, हमारा भी घर गांधी पार्क के पास ही था। अब तो गांधी पार्क और भी अच्छा हो गया है पहले से, और झूले वूले भी बढ़िया लग गए हैं। हमारे पास आफ्ताब जी की शायरी आई है, आफ्ताब जी ने शायरी में लिखा है, सफ़र वही खूबसूरत होता है जहाँ अपने साथ चल रहे होते हैं, जगह नहीं लोग याद रहते हैं और वही यादें जिंदगी बन जाती हैं। क्या बात है आफ्ताब जी, बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने। चलिए अब कनेक्ट करते हैं अपने लिसनर्स के साथ, देखते हैं वो क्या कहते हैं और हमसे क्या बात शेयर करते हैं।

0: हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं बताइए?
1: माधवा जुपिटर एंबिशन जेठालाल।
0: जेठालाल जी, कैसे हैं आप?
1: अरे साहब बढ़िया, आपने मौसम इतना बढ़िया करा दिया है, बस कुछ कहने ही नहीं मिलता है आपके।
0: तो आज इस मौसम पे कोई पहले शायरी सुना दीजिए, फिर करते हैं आगे की बात आपसे।
1: मौसम पे क्या शायरी सुनाएंगे सर, हम तो
0: अपनी
1: अपने तो
0: कोई
1: बच्चे
0: अपने
1: थे।
0: यहाँ अपनी कोई पसंदीदा शायरी सुना दीजिए आज जेठालाल जी। हाँ, गाना भी सुनवाएंगे आपका। आपके आपकी कोई शायरी अगर आपको याद है तो शायरी जरूर सुनाएं।
1: जिसे चाहा था वो किसी और का हो गया,
0: जिसे चाहा था वो किसी और का हो गया।
1: मेरी किस्मत का सितारा कहीं और खो गया, मैं हाथ चलाए खड़ा ही रह गया, वो बिना मांगे किसी और को और को मिल गया।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, बड़ा दर्द है इस शायरी में। और इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं सर,
0: तो
1: और
0: अगर
1: क्या
0: हमारा
1: तैयारी
0: प्रोग्राम
1: करनी
0: सुन रहे हैं
1: बाकी।
0: तो बताइए कोई अपनी फेवरेट जगह मुरादाबाद, आप मुरादाबाद के आसपास या मुरादाबाद की कोई जगह जहां आप कभी कभी घूमने चले जाते हैं।
1: कंपनी आ रहे सर घूमने के लिए, और तुम्हारे डियर पार्क है जी,
0: डियर पार्क में जाते हैं आप अभी?
1: और इधर क्या नाम है ये लालबाग में काली का मंदिर सर बहुत फेमस है।
0: आपका आपको कौन सी जगह ज्यादा पसंद है इन सब जगहों में से?

0: क्या बात करिए आपने, बहुत बढ़िया। तो कौन सी जगह है जहाँ पे आपको अपनापन और सुकून मिल जाता है?
1: सबको एक जगह सुकून मिलता है, वो है अपना मंदिर।
0: बहुत बढ़िया। तो मतलब अपने घर पे पहुंच के आपको सुकून मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे जेठालाल जी आज आप? भूलना तो चाहा लेकिन बुलाना
1: पाए।
0: तो जरूर जरूर जरूर साहब जरूर। तो और बताइए साहब, बाकी सब बढ़िया? मौसम के बाकी आनंद लिए जा रहे हैं? हाँ, आज आनंद जी भी यहीं कहीं हैं, अभी जो हैं आसपास पार्टी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो भी अपनी कहीं फेवरेट प्लेस में घूम ही रहे होंगे। अच्छा, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चलिए रणवीर जेठालाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका ये तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाए जरूर प्ले करते हैं और थोड़े बहुत मस्ती भी करते हैं। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ जेठालाल जी, जो कह रहे हैं कि मुझे जहाँ सुकून मिल जाता है, जहाँ मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है, मैं ज़रूर वहाँ घूमने जाता हूँ, एक घर और एक मंदिर। तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है और बहुत ही बढ़िया जगह आपने बताई। हाँ, जब परिवार के साथ होते हैं तो थोड़ा सा तो कहते हैं वही आपकी फेवरेट प्लेस बन जाती है। तो उन्हीं में से एक है जेठालाल जी की फेवरेट प्लेस, और उनका फेवरेट गाना भी सुनते हैं, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए। और हमसे जुड़े रहिए और हमें कॉल करें 9837896896 पे। कभी बिजी जा रहा होता है, कभी वेटिंग में होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि साहब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। और आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर मैसेज कर सकते हैं। हो कोई बर्थडे या फिर एनिवर्सरी, वो ही बता सकते हैं। कहीं ना कहीं तो उस समय फेवरेट प्लेस पर आप भी घूम ही रहे होंगे। आज वैसे खुशी जी का बर्थडे है, हम सब की तरफ से खुशी जी को बहुत बहुत जन्मदिन दिवस की शुभकामनाएं, और पार्टी तो हम उनसे लेके रहेंगे, चिंता नहीं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे ही हो तुम

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ आपका अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो जी हाँ, अभी तक आपसे बातें हो रही थी आपकी पसंदीदा जगह की। सुन तो लिया ही है सभी ने, और क्या पता कुछ लोग अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ के गाने भी सुन रहे हैं। थोड़े से इमोशंस भी कहते हैं ना निकल आते हैं जब आपकी पसंदीदा जगह पे आपका पसंदीदा गाना प्ले हो जाए। तो हमें मैसेज करें और कॉल भी कर सकते हैं। अभी हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, सुनते हैं उनसे ही बात। मगर उससे पहले अनुराग जी ने एक शायरी भेजी है, बहुत बढ़िया सी, सुनाता हूँ मैं आपको। दिल को सुकून मिल जाए जहाँ, दिल को सुकून मिल जाए जहाँ, वही जगह अपना घर लगती है, वही

0: वहाँ का साकिब अल्लाह की जारत के नीचे से नदी में थे मोहम्मद उस्मान और शाह गुप्ता।
1: अरे पूरा गूगल मैप, आज तो आपने पूरा गूगल मैप बता दिया उस्मान भाई। तो उस्मान जी कहाँ जाते हैं, अगर कभी कभी मुरादाबाद में आपको कहीं घूमने का मन करता है तो आप कहाँ जाते हैं
0: घूमने? हम कहीं नहीं जाते हैं, बहुत से बहुत जारत पे हुई है या बहुत बहुत यार दोस्त के साथ में पार्क में बैठ कर कहीं किसी मदद कर दी, कुछ भूखा उसे पिला दिया, ये चाय पिला दी, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया।
1: ये काम तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कभी भी किसी भी भूखे
0: जी।
1: बहुत बढ़िया, कहीं हाथों हाथ वहीं अपने कपड़े उतार के नहीं दे देते?
0: सबसे बढ़िया पैसे तो अपना घर होता, अपना बच्चों में रहना चाहिए।
1: हाँ ये बात बिल्कुल सही कही आपने। तो वैसे वैसे वैसे अगर कभी कहा जाए कि चलो जी मुरादाबाद में कभी कोई मेहमान आए आपके और आप कहो जी मुरादाबाद में कहीं घुमाने लेके जाओ, तो कहीं तो लेके गए होंगे?
0: इतना चांस नहीं मिलता क्योंकि काम से आते हैं तो आदमी घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, फिर बहुत से बहुत सड़क पे घूम जाते हैं या पार्क में जाके बैठे हैं।
1: तो घर की सड़कें जो हैं आसपास सही हैं, ठीक हैं, कहीं गड्ढे वड्ढे ज्यादा तो नहीं हो रहे?
0: गड्ढे वड्ढे नहीं तो ये चेहरा याद आ गया, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं, फूल है गुलाब का खुशबू तो लीजिए, खाते हैं मुझ गरीब का जवाब तो दीजिए।
1: क्या बात है, इतना बढ़िया सुनाया,
0: जिंदगी की टूटे ना लड़ी,
1: ऐसा शेर सुनाया आपने, ऐसा शेर सुनाया कि शेरनी भी नहीं पकड़ पाएगी उसे।
0: ये सब आपकी मेहरबानी है क्योंकि आप तो प्रोग्राम सुनते तो हमसे रह ना जाता।
1: कहाँ रहा नहीं जाता आपसे, घर में रहा नहीं जाता या गली में रहा नहीं जाता है?
0: जहाँ भी होंगे आपके प्रोग्राम के दौरे आ जाएंगे,
1: एकदम प्रोग्राम एकदम खिंच के आ जाते हैं
0: जी।
1: तो ये गाने
0: आवाज बुलाती है,
1: हमारी आवाज बुला लेती है आपको?
0: जी सर, ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से हम प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं
1: उस्मान,
0: मतलब
1: कोई और खींचा चला आए ना आए, मगर मैं भी अब आगे से याद रखूंगा कि अगर मैं कहीं हूँ तो उस्मान भाई जो हैं वो खींचे चले आ जाएंगे। अब आपको मुरादाबाद में ही घुमाऊंगा, आपको एक बार रामलीला मैदान जरूर घुमाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शायरी भी अच्छी थी और बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़ के। तो श्रोताओं हमारे साथ उस्मान जी जुड़े थे, कह रहे थे कि मैं जो हूँ कभी घूमने नहीं निकलता हूँ, इतना मुझे घूमने की शौक है नहीं, इसलिए मेरी कोई फेवरेट प्लेस है नहीं, मगर आसपास पार्क मुझे अच्छे लगते हैं और ज़ारत पे आके बैठ जाता हूँ, कोई भी अगर कोई मदद के लिए गुहार लगाता है तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता हूँ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल हैं उस्मान जी आप, और बहुत ही कहते हैं ना कभी कभी मदद करने से थोड़ा सा सुकून मिलता है और वही शायद आपकी जगह बन जाती है। तो जगह तो आपने बनाई ली है, अपनी फेवरेट प्लेस आपने मुरादाबाद की बताई दी है और आपने अपना फेवरेट गाना ही बता दिया, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, बहुत ही बढ़िया उस्मान जी। उससे पहले हम पे एक मैसेज आया है नेहा जी का, नेहा जी कहती है मेरी फेवरेट प्लेस मुरादाबाद में मेरे घर के पास एक चाय की टपरी है जहाँ मेरी हस्बैंड से पहली मुलाकात हुई थी। क्या बात है नेहा जी, ये तो मतलब आपकी तरफ से ऐसा मैसेज आया, वरना तो मैं सोचा था कि शायद आपके हस्बैंड की तरफ से ऐसा मैसेज आना चाहिए था कि मैं चाय की टपरी के पास बैठा रहता था और नेहा जी वहाँ से गुजरती थी और मेरी मुलाकात हो गई नेहा जी से। तो बड़ा ही अच्छा है, मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत की कहानियाँ भी वैसे कहूँ तो अक्सर किसी ऐसी जगह से शुरू होती है जहाँ पे इंसान चाय की चुस्की ले रहा होता है, या तो कहीं चाय की दुकान होती है या फिर कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट से। तो कहीं ना कहीं आपकी भी कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई ऐसा क्रश तो रहा होगा आपकी ही फेवरेट जगह पे, भले ही हुआ नहीं पूरा मगर थी तो आपकी जगह ना फेवरेट। तो चलिए बताइए, और जो भी बताइए जल्दी बताइए क्योंकि आपकी कॉल होगी आखिरी कॉल जो हम लेने वाले होंगे, उसके बाद हम भी चलेंगे साहब और करेंगे कल की तैयारी। उससे पहले एक सुनाते हैं बढ़िया सी शायरी, एक कप चाय और तुम्हारा साथ, बस इतनी सी ख्वाहिश है, मोहब्बत महलों में नहीं मिलती, कभी कभी एक छोटी सी दुकान में मिल जाती है। तो हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कहीं तो टच कर गई होगी, अगर नहीं भी करिए कोई बात नहीं भाई साहब, घूमो मस्ती करो, मौसम का मज़ा लो और इस गाने का आनंद लो, और फिर मिलते हैं इस गाने के बाद आपकी ही पसंदीदा जगह।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त आता है बाहर से और मुरादाबाद में उसे कोई एक जगह दिखानी हो तो कौन सी जगह होगी, ज़रूर हमें मैसेज करें और बताएं, और जो बेस्ट आंसर होगा उसे मिलेगा एफएम मुरादाबाद की तरफ से एक स्पेशल ऑन एयर मेंशन और एक वाउचर भी। शहर तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें अपने लोग रहते हैं, और यादें तभी अमर होती हैं जब दिल से जुड़ी होती हैं। तो इसी तरीके से हमसे भी आप लोग जुड़े हुए हैं और इतनी कॉल करते हैं, इतने मैसेजेस करते हैं, तो एक कहते हैं ना अपनापन एहसास होता है। हमारे लिए तो बेस्ट प्लेस हमारा स्टेशन है साहब, जहाँ पे हम आपकी पसंद के गाने प्ले कर देते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं अपने एक नए कॉलर से और बात करते हैं अपने इस लक्की और लास्ट कॉलर से कि वो कौन सी जगह है जो उन्हें बहुत ही पसंद है मुरादाबाद में। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका, जरूर बताएं सभी को।
1: सर मेरा नाम आकाश चौधरी है और मैं रहने वाला क्षेत्र ग्राम फूलपुर मठनपुर का हूँ।
0: तो सर इस समय मौसम कैसा हो रहा है वहाँ पे?
1: सर इस टाइम में आपके शहर के अंदर बारिश के मौसम से थोड़ा सा बाहर निकला।
0: तो आप लॉन्ग ड्राइव पे निकले मतलब शहर में हैं?
1: यहाँ मेरी भी लॉन्ग ड्राइव है सर, ड्यूटी करके।
0: तो इस समय अकेले हैं या दोस्तों के साथ हैं?
1: नहीं सर, अकेला।
0: अकेले चल रहे हैं
1: घर के लिए।
0: तो बिल्कुल बढ़िया है रास्ता, कोई ज्यादा पानी भरा हुआ तो नहीं मिला आपको कहीं?
1: नहीं सर, मैं तो हाईवे चलता हूँ, नेशनल हाईवे पे हूँ।
0: अरे तो बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया।
1: आप जब हरिद्वार जाएंगे तो हमारे घर के आगे बंद कर के जाएंगे।
0: क्या बात है साहब, जरूर आपके घर के आगे से निकल के जाएंगे और आपसे मिल के भी जाएंगे। तो बताइए
1: इस टाइम यानी कि हमारे राग लाइन पार आप आए हैं और हमने उस समय छोड़ दिया जब हम बहुत छोटे हुआ करते।
0: तो बताइए कौन सी छोटेपन में कौन सी आपकी फेवरेट जगह रही है यहाँ आसपास, ये अभी भी आपकी बहुत पसंदीदा है?
1: छोटेपन में ज्यादा मुरादाबाद में मैं रहा नहीं, मेरा मकान था लाइन पार में।
0: अच्छा,
1: दादा जी रहा था।
0: अच्छा।
1: और अब मैं रहता हूँ कार क्षेत्र में, मेरे गांव से बिलोंग करता हूँ, डेली मुरादाबाद जॉब करने के लिए आते हैं फोन और डेली घर टू बैक टू। और आज की डेट में सबसे बेस्ट प्लेस लगता है मेरा नया मकान, नया मुरादाबाद
0: में जो आपका नया मकान है।
1: जी बिल्कुल सर,
0: बहुत ही बढ़िया साहब, बहुत ही बढ़िया। कहते हैं ना एक जगह ऐसी हो जाती है आपके शहर में कि आपको अच्छी लगती है, तो वो आपका अपना ही घर है और वो भी नए मुरादाबाद में, तो ये तो और भी अच्छी बात है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली आकाश जी, बहुत ही बिल्कुल एकदम सटीक बात बोली आपने।
1: मैंने अपनी लाइफ के हर सपने को साकार किया है,
0: बहुत ही बढ़िया।
1: अपने पैसे से ली मकान, अपने पैसे से लिया, अपनी फैमिली अपने आप से सेटल है।
0: चलिए साहब, मगर जहाँ भी हैं वो भी बहुत खुश हैं और बहुत ही मतलब कहते हैं ना सारी जो दुआएं हैं उनके साथ पूरी हैं, और आप आज ऐसी ही बढ़ते रहें और बहुत ही बढ़िया हमसे भी ऐसी कनेक्ट होते रहें और बताते रहें अपने दिल की बात भी। तो कोई शायरी सुनाना चाहेंगे आकाश जी, शायरी का शौक रखते हैं?
1: शायरी का शौक नहीं रखता मैं तो, आज आपके खुशी जी को दिन में विश करना बहुत चाहा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे खुशी जी को करना चाहूंगा।
0: तो आपका ये मैसेज हम जरूर खुशी जी के पास पहुंचाएंगे, एक उनके लिए बर्थडे सॉन्ग भी प्ले करेंगे आराम से।
1: मैसेज जो है मैंने मैं उनके थ्रू भी भेज दिया था, वैसे दीना जी के थ्रू, 5 बजे के बाद, क्योंकि वो मैसेज था उनका शो होता है तो मैसेज वाले में उन्हें डाल दिया था मैंने।
0: चलिए कहीं ना कहीं अगर खुशी जी सुन रही होंगी आपको तो उसी खुशी जी आपको हैप्पी बर्थडे वाला बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आकाश जी की भी तरफ से, हम सब की तरफ से भी। और अगर आप अभी नहीं सुन रही होंगी तो कोई बात नहीं, हम ये मैसेज आपके पास कल फिर से विश करके और पार्टी लेके मना लेंगे। ठीक है आकाश जी, पक्का पक्का, जो भी पार्टी लूंगा मैं जरूर बताऊंगा। पक्का पक्का बताइए कौन सा
1: सर, अगर हो सके तो वो एक सॉन्ग है उसमें गुड़गांव में डेयरी खुलवाएंगे।
0: सर मुरादाबाद में भी खुलवा दो सर, मुरादाबाद में भी बहुत जरूरत है डेयरी की। तो
1: सर मुरादाबाद में तो अपनी कई सारी है।
0: ये वाली गुड़गांव में खुलवाएंगे आप?
1: आपके लाइन पार में है जी, अपने नए इधर नए मुरादाबाद इधर एमडीए में अपनी चावल डेयरी के नाम पे कई सारी डेयरी है।
0: चलिए साहब जरूर ये वाला भी गाना प्ले करेंगे, पक्का पक्का पक्का। धन्यवाद आकाश जी आज जुड़ने के लिए और आपने इतनी अच्छी बात बताने के लिए,
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे आकाश जी, जो कह रहे हैं उनकी फेवरेट प्लेस है नए मुरादाबाद में उन्हीं का घर। तो होता है और यही कहते हैं ना, जहाँ सुकून मिले वही आपकी फेवरेट प्लेस बन जाती है। तो बहुत ही बढ़िया बात कही है, आज उन्होंने खुशी जी को बर्थडे विश किया है। हाँ जी, खुशी जी का आज बर्थडे है और वो इस समय कर रही हैं पार्टी। तो भैया कहते हैं ना, गिफ्ट दो और फिर पार्टी लो, तो कोई बात नहीं खुशी जी, हम भी एक गिफ्ट दे के पार्टी ज़रूर लेंगे, आपसे छोड़ेंगे नहीं। सभी की तरफ से हैप्पी बर्थडे आपको एक बार फिर से। और ये गाना सुनते हैं जो डेडिकेट किया है आकाश जी ने सभी को आज बर्थडे पे। चलिए साहब और हमें भी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल ठीक 9 बजे आपको इसी समय FM स्टेशन पे आपके 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और आज के शो ने, आज के हमारे इस टॉपिक ने आप सभी को आपकी फेवरेट प्लेस तो याद दिला ही दी और ये भी बता दिया कि भैया वो जो जगह है ना वो हमारी यादों का घर है। अगर आज तक आपने अपनी फेवरेट जगह पर काफ़ी टाइम से या कहते हैं काफ़ी दिनों से विजिट भी नहीं किया ना, तो इस वीकेंड ज़रूर जाना और एक बार देखना कि वहाँ पर ना कुछ नया सा, कुछ नए लम्हे आपको मिलेंगे और आप बनाओगे भी और उसे लेके भी अपने साथ घूमोगे। यादों की किताब में एक नया सफा जोड़ते चलिए, यादों की किताब में एक नया सफा जोड़ते चलिए, मुस्कुराहट का हर लम्हा दिल में छोड़ते चलिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, हर दिन किसी अपनी जगह को फिर से जीते चलिए। तो हाँ, ऐसी ही आपको अपनी जगह तो इसे जीते हुए चलनी है। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, आपसे अभी ज़्यादा चाहता हूँ, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शायराना अंदाज में और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो, बजाते रहें और गुनगुनाते रहें।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: प्लीज शादी।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: Mixing in the house.

आबशार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: यो यो यो यो करनौजला।

0: 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077